0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: सुबह के 6 बजे हैं।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज रविवार 14 जून के पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप से शुरू करते हैं। विश्व फुटबॉल कप 2026 के अंतर्गत कल रात ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड का स्कोर ड्रो रहा, फिर सुबह 2 बजे ब्राजील और मोरक्को आमने सामने आए, ये भी स्कोर ड्रो रहा। अभी फिलहाल एक मैच चल रही है, यानी कि 5 बजे खेले गए ग्रुप सी के मैच हाइटी स्कॉटलैंड जो है अभी खेल रहे हैं। तो अब फिलहाल के लिए स्कोर है हाइची 0 स्कॉटलैंड 1, जहां पर 28वें मिनट पर मागिन ने अपना स्कोर डाला। और बीच बीच में जो स्कोर है विश्व फुटबॉल कप के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आपको याद दिला देते हैं कि ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया तुर्की की जो मैच हैं वो सुबह 8 बजे, और ग्रुप ई में जर्मनी कुरासाओ जो है रात 9 बजे आज के लिए निर्धारित हैं। और अन्य खबरों में मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यू में एक हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों की सब्सिडी व्यवस्था में सुधार को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी। और उधर ईरान इसराइल संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। मॉरिशस में विकास दर घटने और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मॉरिशस में प्रसूति

0: एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों का दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों के कौशल को मजबूत करना और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। और आज विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर नियमित रक्तदान के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज बनाने की मांग उठी है। संगोष्ठी में रोजगार, आत्मनिर्भरता और सोशल इंक्लूजन पर भी जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित शांति समझौता जल्द अंतिम रूप ले सकता है। मध्यस्थ देशों और दोनों पक्षों के नेताओं ने वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया है। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: मौसम का हाल, आम हालत। पूर्व से आने वाले अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिर लाएंगे और वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर दिन के दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सरहदी प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात के दौरान साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त आज शाम 5:37 पर।

0: फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला, हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত।
1: नमस्कार, सुबह की ये बेला है, भोर की ये बेला है। इस समय सुबह के 6:06 हुए हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं आज रविवार 14 जून की इस भोर की बेला में। सुबह की बेला आप लोगों के लिए मंगलमय रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से। नई सुबह, नई किरणें नई ऊर्जा लेकर आती हैं और ये नई ऊर्जा आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के मन में हमेशा हिम्मत बनकर बरकरार रहे। आइए हम सुबह की इस बेला को आरंभ करते हैं वैदिक वाणी कार्यक्रम के साथ और आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी को।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। हमारा सौभाग्य है कि आज स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत से पधारे हुए श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी। आप खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और हैं अभी तक, और पूर्व प्रोफेसर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार के वेद विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रोफेसर जी सुवक्ता हैं, पूरे भारतवर्ष में आपके व्याख्यान होते रहते हैं।

0: बहुत अच्छे लेखक हैं। अब तक 20 पुस्तकों का आपने प्रणयन किया हुआ है, ईशोपनिषद पर, रामायण पर, वेद पर, संस्कृत विषय कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। हम स्टूडियो में प्रोफेसर जी का स्वागत करते हैं और श्रोताओं, आज का वैदिक संदेश आप प्रोफेसर जी द्वारा सुनिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी।
1: ॐ अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना।

सा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों और बहनों, छात्र छात्राओं, ये जो मैंने मंत्र पढ़े हैं ये अथर्ववेद के तीसरे कांड के मंत्र हैं। हाउ टू लिव इन अवर लाइफ, हमें अपने जीवन में कैसे रहना है। हमारे संस्कृति में चार आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे रहना है। आजकल माता पिता ये कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसके बारे में बहुत अधिक चिंतन किया है। इस वेद मंत्र में कहा गया है कि अनुव्रतः पितुः पुत्रः, हमारे बेटे बेटियां हमारे अनुव्रती बने। पेरेंट्स, माता पिता को चाहिए कि वो अपना आइडियल प्रस्तुत करें अपने परिवार के अंदर। जैसे जैसे बड़े आचरण करते हैं वैसे वैसे छोटे ही उनका अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के अंदर लिखते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनका अनुकरण ही छोटे लोग करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ इस वेद मंत्र में कहा अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, हमारे बच्चे कैसे हों, हमारे माता पिता के साथ समान मन वाले हों। जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शंतिवाम, हम आपस में जब भी डिस्कशन करें, बातचीत करें, तो हमारा एक दूसरे के प्रति संवाद बहुत मधुर शैली में हो, बहुत मधुर भाषण हो, मीठा हम सब एक दूसरे के साथ बोलें। बच्चों को यदि माता पिता के साथ बोलना है तो बहुत मधुर भाषण करें। बच्चे यदि माता पिता से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो बहुत मीठे ढंग से उनको बात करनी चाहिए। यहाँ पर ये वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि आपस में कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, ईर्ष्या की भावना आ जाती, द्वेष की भावना आती है, तो वेद भगवान कहते हैं इस मंत्र के माध्यम से, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, बेटियों, बेटो, कि कभी भी आपस के अंदर माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई के साथ द्वेष की भावना न रखें, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या न हो। आप देखिए, राम को देखिए, उनका जीवन कितना ऊँचा था, उन्होंने अपने भाइयों को कितना प्रेम दिया, और इसीलिए आज हम उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास उनको हुआ, कितने कष्ट माता सीता ने उठाए, राम ने कितने कष्ट उठाए, लेकिन उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ आश्रम कैसे होता है उसके बारे में हमें जीवन का एक मार्ग हमारा प्रशस्त किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे गृहस्थ भाई बहन हैं, जो भी हमारे परिवार हैं, वो कैसे हम आगे उनको बढ़ा सकते हैं। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े ग्रेट फिलोसोफर, बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा शादी विवाह तो सब करते हैं, लेकिन विवाह करने का जो पर्पज है, लक्ष्य है, वो उत्तम संतान की प्राप्ति करना है। इसलिए महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि हमारे जो संतान हो कैसी हो, उनके लिए हम कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वे बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता बहुत धार्मिक है, वेल कल्चर्ड है, वेल एजुकेटेड हैं। तो इस प्रकार से यदि वेद के अंदर देखा जाए तो आचार्य चाणक्य भी इस बात को सहमति देते हैं, कहते हैं सानंदम सदनम, घर तभी जो है वो आनंद के साथ रहता है जब उस घर के अंदर ये कुछ बातें हों। अगली बात कहता है चाणक्य, सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रिया लापिनी, हमारी कैसी हो घर का एक आदर्श, घर कैसे हम स्वर्गमय बना सकते हैं, तो सबसे पहले कहे घर में आनंद का वातावरण होना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, वेल कल्चर्ड हो, वेल एजुकेटेड हो, उत्तम संस्कारवान वाले हों, और पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम से बातचीत करने वाले हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितिरति स्वाज्ञा परा सेवका, हमारे मित्र फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे हो, हमें डुबाने वाले ना हों, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले।

हों, किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यसन हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए, दुर्गुण नहीं होना चाहिए, दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए, तभी तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वेद का मंत्र कहता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ, नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। हमारे ऋषि ये प्रार्थना किया करते थे कि हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हो, वो माता पिता के आज्ञाकारी हों, ये सारी सन्मित्रम सुधनम, और हम मेहनत करने वाले भी बने, धनवान भी बने। वेद के अंदर प्रार्थना है, वयम श्याम पतयोरिणाम, हम धनेश्वरियों के स्वामी बने। स्वयोषितिरति स्वाज्ञा परा सेवका, और आपस में हम एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार से रहें, स्नेह से रहें, किसी को हीन न समझे, ये बड़ा है ये छोटा है, वेद इसका निषेध करता है। हम सब बराबर हैं, हम सब जितने भी हैं भगवान की संतानें, वो सब एक ही हैं, पुत्र पुत्रियाँ। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हमारे अंदर कोई बड़ा नहीं, न कोई ज्येष्ठ है, न कोई छोटा है, सब ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर हैं। और भगवान का यह आदेश है कि तुम अपने गृहस्थ जीवन में कैसे रहो, तो कहते हैं सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितिरति स्वाज्ञा परा सेवका। आगे कहते हैं आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, हमारे घर में कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, तो हम उनका आदर करें, सम्मान करें। और ये हमारे जो पांच यज्ञ हैं जो इकोलॉजी सिस्टम को ठीक रखते हैं, ब्रह्म यज्ञ हैं, चाहे देव यज्ञ हैं, पितृयज्ञ, पितृयज्ञ का मतलब ही है कि जो हमारे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम उसका उनका रिस्पेक्ट करें। कल मातृदिवस के उपलक्ष्य में पूरे हम सब भाई बहनों ने मिलकर के मातृदिवस मनाया, तो मातृदिवस का मतलब संदेश यही है कि हम एक दिन न करें, पूरे समय में हमेशा हम अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों के प्रति, उनके प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखें, आदर की भावना रखें। हमारे यहाँ तो तभी कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, रिस्पेक्ट यूअर मदर, रिस्पेक्ट यूअर फादर, रिस्पेक्ट यूअर टीचर, ये सब संदेश हमारे लिए कहा। कहते हैं आचार्य चाणक्य, ये गुण जिन परिवार के अंदर रहते हैं, ऐसा परिवार जो है वो स्वर्गमय वातावरण में रहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सब भाइयों से, बहनों से, कि हमारी जो परिवार की परंपरा है वो कितनी सुंदर परंपरा है। वेद के अंदर ये बताया गया है कि मिल के चलो, मिल के बोलो, मिल के रहो, और एक दूसरे के प्रति हमारा सबका सम्मान की भावना हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। इस मंत्र के अंदर आदर्शमय गृहस्थ कैसे हो सकता है, आदर्शमय गृहस्थ की प्रस्तुति इस मंत्र के अंदर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। इसलिए हमारे परिवार अच्छे बने, हमारे परिवार में से जो हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो सब आज्ञाकारी हो, विनम्र हो, सुशील हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, ऐसी बात वेद भगवान के सिवा और कौन कह सकता। कितनी सुंदर प्यारी बात इस वेद मंत्र के अंदर बताई गई है। हम जब घर से निकले तो मधुर वाणी के साथ जाएं, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम। घर के अंदर जब हम आए तो बच्चे हमसे डरे नहीं, हम उनके प्रति नमस्ते करें, हम उनके प्रति उनको कहें कि भाई आपका मैं आदर करता हूँ। हम ये ना देखें कि हम बड़े हैं परिवार में तो हम नमस्ते क्यों करें। नमस्ते का मतलब ही है परमात्मा से, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मस्तिष्क के विचार, हमारे हाथ में जो कर्म करने की शक्ति है, वो बच्चों तुमको लग जाए, तुम ज्ञानवान बनो, तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो। और ये इस प्रकार का गृहस्थ का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से अथर्ववेद के तीसरे कांड के अंदर इन मंत्रों के अंदर बताया गया है। तो मैं चाहता हूँ हमारा सबका परिवार, कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अच्छे बने, कौन नहीं चाहता है कि हमारा परिवार बहुत अच्छा बने, कौन नहीं चाहता हमारा परिवार सुख शांति और आनंद से युक्त रहे, उसके लिए कुछ ये बातें बताई गई है कि हम कैसे रहें परिवार के अंदर, माता पिता के प्रति हमारा क्या व्यवहार हो, बच्चों का माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति। ए मेरे छात्र छात्राओं, दुनिया के अंदर सक्सेस, सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, और अपने परिवार में जो अपने से अग्रज हैं, ज्येष्ठ हैं, उनका हम सम्मान करें। हमारे ऋषि तो ये कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मेरे छात्र छात्राओं, यदि आप सक्सेस करना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। उठ करके अपने माता पिता को नमस्ते करो, माँ नमस्ते, पिताजी नमस्ते, आचार्य जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको भी कहो नमस्ते,
कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, ये कितनी सुंदर बात है। इसलिए हमारे ऋषि कहते थे

0: मातृदेवो भव रिस्पेक्ट युवर मदर, पितृदेवो भव रिस्पेक्ट युवर फादर, रिस्पेक्ट युवर आचार्य। इन्हीं शब्दों के साथ गृहस्थ जीवन हमारा कैसा हो, ये कुछ शब्द मैंने आपके सामने रखे, आशा है आप इनका पालन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने आदरणीय प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी को सुना। कार्यक्रम को सजाया श्रीमती अंजू ने, आपने सुना, सबको धन्यवाद। नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: और आज आप सुन रहे थे डॉक्टर धर्मेंद्र जी को।
4: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
3: इस समय सुबह के 6:19 हुए हैं और हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर। चलिए आप लोगों के लिए हम पढ़ते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओकुले के निवासियों को सूचित करता है कि ओकुले के एक भाग में यानी कि कात्र कारो, बिस्नाट रोड, मारियामेन टेम्पल रोड, कारो लेन, ऑंग्रिकाटन और आसपास के इलाकों में आज रविवार 14 जून को सुबह 8:30 से शाम के 5 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अंगेता के निवासियों को सूचित करता है कि कॉम्बुले में आज रविवार 14 जून को सुबह 9 से दिन के 11:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर उत्तर प्रांत के हॉलीडे प्रोमो मोसेलमा ले व्यू बान्यों और बालाक्लावा के रावेनाला होटल के आसपास के इलाकों में आज रविवार 14 जून को सुबह और 8 से 9 तक, फिर दोबारा दिन के 2 से 3 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। गांबे के इलाकों में ये भी सूचित करता है कि रुई महात्मा गांधी मोसेलमा बुकों जो रेस्टोरेंट ले पोलो के सामने का रीजन है और रेजिडेंस गाजादो गांबे के आसपास के इलाकों में आज रविवार 14 जून को सुबह 9 से दिन के 12 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही इन सभी जगहों में काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतजाम कर लेने की मांग करती है। इस समय 6:21 हुए हैं। चलिए जरा सुने हम आज का सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित विशेष कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस की पंडिता गुरीबाजी की प्रस्तुति में।
5: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

प्रिय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृत स्रोत सत्यात्र प्रकाश के निर्माता युग पुरुष महर्षि दयानंद जी का अमर ग्रंथ है। विश्व को अज्ञान अंधकार से निकालना, प्राण प्राण में सत्य जीवन की गति भरना, सभी की जीवन यात्रा में सत्य का आलोक भरना, विद्या अविद्या, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय

न्याय आदि का बोध कराना स्वामी जी का ध्येय था। यही कारण था कि उन्होंने अपने कालजयी ग्रंथ के अंतिम भाग में यानी अपने स्वमंतव्यामंतव्य प्रकरण में प्रकाश डाला। बंध मुक्ति और मुक्ति के साधन विषय पर स्वामी जी ने अपना मंतव्य देते हुए बंध विषय में यह कहा कि बंध अविद्या निमित्त से है। अविद्या, अज्ञान, पाप कर्म, ईश्वर से भिन्न उपासना आदि के कारण मनुष्य सब दुखों का फल भोगता है, इसीलिए इसे बंध या बंधन कहती है। मनुष्य इन दुखों की इच्छा नहीं करता, फिर भी इनको भोगना पड़ता है। स्वामी जी अपने इस ग्रंथ में बताते हैं कि मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, देव, मानव और दानव। दानव वह है जो दूसरों को दुख देता है अपने सुख के लिए। ऐसे लोग सदा पाप कर्म करते हुए एवं सांसारिक सुखों को भोगते हुए अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। ऐसे लोग सदा बंधनों में रहते हैं। मानव वह है जो मननशील हो, जो भी कर्म करता है वह सोच विचार करके करता है, वह अपने और दूसरों के सुख के लिए कर्म करता है। ऐसे मानव प्राणी की कोशिश रहती है मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनना, धर्मानुसार कर्म करते हुए देवत्व को पाना। मनुष्य साधारण कोटि का है, वह जीवन में आधा अच्छा और आधा बुरा कर्म करता है। अपनी अल्प बुद्धि को विकसित करने के लिए वह विद्या का सहारा लेता है, वह परमात्मा से याचना करता है, ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चो पासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। सत्य विद्या अर्थात आध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करते हुए वह अपनी बुद्धि का विकास करना चाहता है। जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य पाना चाहता है, वह परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए देवता का काम करता है। ऐसे मानव प्राणी कामदेव कहलाता है। आगे देव पुरुष मानव कल्याण के हितैषी बनता है। वह पूर्ण ज्ञान युक्त होता है और सांसारिकता से रहित होकर सब बंधनों से छुटता चाहता है। ऐसे प्राणी पूर्ण देव बन जाता है और मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। श्रोतागण, मुक्ति विषय के संबंध में स्वामी जी का मंतव्य है कि सब प्रकार के दुखों से छूट जाना और परमात्मा की सृष्टि में स्वेच्छापूर्वक विचरना और मुक्ति के आनंद को भोगना ही मुक्ति कहलाता है। मुक्ति के आनंद को भोगने वाला मुक्त आत्माएं होती हैं। मुक्त आत्माएं वे हैं जो पाप रहित और ज्ञान से परिपूर्ण है। मोक्ष में भौतिक शरीर वा इंद्रियां जीवात्मा के साथ नहीं रहती, लेकिन स्वामी जी का मानना है कि जब मुक्त आत्माएं सुनना, स्पर्श करना, देखना, चखना, संकल्प विकल्प आदि करना चाहती है, तब अपनी सामर्थ्य शक्ति से सब कुछ करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भौतिक शरीर अपनी इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ भोगता है, वैसे ही मुक्ति में अपनी शक्ति से सब आनंद को भोगता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि मुक्त जीवों के लिए एक अवधि होती है। जीव ब्रह्मानंद को तब तक भोगता है जब तक महाकल्प न हो, और महाकल्प के पश्चात मुक्त आत्माएं परम धाम को छोड़कर पुनः संसार में जन्म लेकर आती हैं। इसी प्रकरण में स्वामी जी मुक्ति को प्राप्त करने के कई साधन बताए हैं। सर्वप्रथम जीवात्मा को ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और योगाभ्यास करना चाहिए। धर्मानुष्ठान अर्थात चोरी का त्याग, धैर्य धारण, सत्य भाषण, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य व्रत पालन अर्थात वेदादि सत्य ग्रंथों को पढ़ना और

स्वाध्याय करना, आप्त पुरुषों का संग अर्थात जो सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी हो, सत्य विद्या ग्रहण करना यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान, मोह माया से परे रहना, सुविचार लाना माने बुराई को भलाई से जीतना, पक्षपात रहित न्याय करना और धर्म से पुरुषार्थ करके ज्ञान की उन्नति करना ही मुक्ति के साधन है। श्रोताओ, जीवात्मा के मुक्त होने के साधन में योग सूत्र का प्रमाण देते हुए लिखते हैं, अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः पंच क्लेशाः, अर्थात चित्त की पांच वृत्तियों को यथावत रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से पांच क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या की जननी अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, मिथ्या भाषण आदि दोषों से है, जो मूर्ख जीवों को अंधकार में फंसाकर जन्म मरण आदि दुख के सागर में सदा डुबोती है। पर जब विद्वानों और धर्मात्माओं का सानिध्य पाते हैं, तब सत्य विद्या के प्रकाश से अविद्या अंधकार को नष्ट कर देता है। जब सब दोषों से मुक्त होके जीवात्मा ज्ञान की ओर झुकता है, तब कैवल्य मोक्ष धर्म के सागर से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। जब तक बंधन के कामों में जीव फंसता रहता है, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना असंभव है। निष्कर्षतः स्वामी दयानंद जी ने अपने मंतव्यों में बंध, मुक्ति और मुक्ति के साधन विषयों को समझाने के लिए स्पष्ट प्रमाण दिया है। मानव प्राणी की शंका दूर करने में वे सिद्ध हुए हैं। श्रोताओ, सत्यार्थ प्रकाश में बताए गए सत्य के आलोक में हम प्रविष्ट हुए और संसार में अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण करने में प्रयत्नशील हुए। ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।

0: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:30 हुए हैं। रविवार 14 जून 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विश्व फुटबॉल कप 2026 के अंतर्गत कल रात ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड का स्कोर ड्रॉ रहा, फिर सुबह 2 बजे खेले गए मैच ब्राजील मोरक्को आमने सामने आए जब ये भी स्कोर ड्रॉ रहा। 5 बजे खेले जा रहे अभी ग्रुप सी में हाइची और स्कॉटलैंड अभी जो है उनका स्कोर है फिलहाल के लिए स्कॉटलैंड 1 हाइची 0। और अन्य सुर्खियों में मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यूआ में हिंसक झड़प ने एक युवक की जान ले ली जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों की सब्सिडी व्यवस्था में सुधार को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था January 2027 से लागू होगी। इसराइल ईरान संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। मॉरिशस में विकास दर घटने और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई है। मॉरिशस की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों का दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों के कौशल को मजबूत करना और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर नियमित रक्तदान के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्ष

0: शांति समझौता जल्द अंतिम रूप ले सकता है। मध्यस्थ देशों और दोनों पक्षों के नेताओं ने वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत ग्रुप बी कतर स्विट्जरलैंड का जो स्कोर रहा वो है ड्रॉ, यानी कि 1-1। 2 बजे खेली गई मैच में ब्राजील मोरक्को आमने सामने आए और ये भी स्कोर रहा ड्रॉ, यानी कि 1-1। 5 बजे खेली जा रही फिलहाल ग्रुप सी में हाइटी और स्कॉटलैंड का स्कोर है 0-1, यानी कि हाइची 0 और स्कॉटलैंड 1, जहां पर मगीन ने 1 गोल दागा है। गौरतलब है कि हाइची 52 सालों के बाद विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। 1974 में आखिरी बार इसकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए खेला था। और ज्यादा विस्तार से आप स्पोर्ट्स संबंधी जानकारियों में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अन्य खबरों में मॉरिशस के रेजिडेंस लाकिया क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प दुखद घटना में बदल गई। बिजतोंबो निवासी 28 वर्षीय गायल सादाल की कल शाम रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट में हुई एक घटना में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। एक संदिग्ध स्थिति की सूचना देने वाली गुमनाम कॉल मिलने पर वालिदिपैत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। उन्हें तुरंत जीतू अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और बाद में पुलिस निगरानी में भर्ती किया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पुलिस अब तक उनका बयान दर्ज नहीं कर सकी। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि इसी घटना में घायल सादाल की घायल हुए थे। एक चिकित्सक ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। उनकी मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बीच पोर्ट लुइस नॉर्थ की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन इस दुखद घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है। मंत्रिमंडल ने ग्रांट इन एड स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त निजी प्री प्राइमरी स्कूलों को दी जाने वाली सब्सिडी प्रणाली में सुधार को मंजूरी दे दी है। इस सुधार का उद्देश्य सरकार पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करना, योजना में देखी गई कुछ अनियमितताओं को दूर करना और मौजूदा नौकरियों को सुरक्षित रखना तथा निशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्थाएं जनवरी 2027 से लागू होंगी। इस पर ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट पर टीना बुद्धा के विवरण के साथ।
1: ये सुधार शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया है, जो स्कूल प्रबंधकों, स्टाफ प्रतिनिधियों और संबंधित यूनियनों के साथ कई परामर्शों के बाद तैयार की गई है। मुख्य उपायों के तहत सरकार ग्रांट इन एड प्राप्त करने वाले स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जारी रखेगी। हालांकि जिन संस्थानों में 20 तक विद्यार्थी है, वहां एक नया प्रबंधन मॉडल लागू किया जाएगा। मैनेजर का पद हटाकर टीचर मैनेजर का पद बनाया जाएगा। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को नेशनल रेम्यूनरेशन बोर्ड के नियमों के अनुसार शिक्षक का वेतन मिलेगा। साथ ही प्रबंधन जिम्मेदारियों के लिए प्रति महीना 5,000 रुपये का अलाउंस भी दिया जाएगा। समिति के वर्तमान में कार्यरत मैनेजरों के लिए धीरे धीरे योग्यता बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही असिस्टेंट टीचर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि शिक्षक छात्र रेशियो धीरे धीरे 1:15 के रेशियो से बढ़ाकर 1:20 का रेशियो किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के मामले में 20 या उससे कम छात्रों वाले 33 स्कूलों के लिए 5,000 रुपये प्रति महीना तक रेंटल चार्जेस जारी रहेगी, लेकिन 117 स्कूलों में जो इस सीमा से अधिक है, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। संचालन खर्च के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को आधा कर दिया जाएगा और सिस्टम में दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी और नियंत्रण नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा। अंत में

0: 106 निजी नर्सरी स्कूलों को दी जाने वाली प्रति छात्र 400 रुपये की सब्सिडी भी समाप्त कर दी जाएगी। ये पूरी सुधार योजना लगभग 740 मिलियन रुपये की लागत से जुड़ी है।
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। गुरुवार को ये कहा गया था कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता होने के करीब है, जबकि उससे कुछ घंटे पहले लगातार तीसरी रात होने वाले हमलों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इस संघर्ष का सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मॉरिशस के लिए तस्वीर चिंताजनक बताई जा रही है। MCB की पहली के अनुसार देश की आर्थिक की पहली रिपोर्ट के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर में कमी, महंगाई में बढ़ोतरी और पर्यटन क्षेत्र में सुस्ती देखी जा रही है। इसका असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की क्रय शक्ति, होटलों और घरेलू खर्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी प्रणव विहारी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा के विवरण के साथ।
2: 10 जून को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बैंक ने मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को घटा दिया है। पहले जहां 5.5% वृद्धि की उम्मीद थी, अब उसे घटाकर इस वर्ष 2.9% कर दिया गया है। इस बदलाव का मुख्य कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष बताया गया है, जिसने वैश्विक व्यापार मार्गों को बाधित किया है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ला दी है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पर्यटन है। साल 2025 में लगभग 1.4 मिलियन पर्यटकों के साथ रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद अब रुझान उल्टा हो गया है। मार्च से मई के बीच पर्यटकों के आगमन में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई है। हवाई टिकटों की कीमतों में औसतन 25% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे बुकिंग में भी कमी आ रही है। महंगाई भी फिर से बढ़ने लगी है। ईंधन, गैस, रोटी और बिजली जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। MCB के अनुसार दिसंबर तक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 5.7% तक पहुंच सकती है। ये संकट केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं है। सेशेल्स में मार्च में पर्यटकों के आगमन में 37% की गिरावट दर्ज की गई। मडागास्कर में अप्रैल में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई। वहीं मालदीव्स में इस वर्ष आर्थिक वृद्धि घटकर 2.5% रहने का अनुमान है। ये सभी द्वीपीय यानी टापू अर्थव्यवस्थाएं एक ही चुनौती का सामना कर रही हैं, आयात और पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे वे वैश्विक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
1: हर वर्ष आज 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित करने के लिए समर्पित हैं जो रक्तदान के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचाने में योगदान देते हैं। साथ ही ये अवसर नियमित रक्तदान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, ताकि मरीजों की लगातार बनी रहने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई गंभीर बीमारियों के उपचार और जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। मॉरिशस ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद हुसैन ने अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि जनसंख्या के बढ़ते वृद्धावस्था अनुपात यानी एजिंग पॉपुलेशन को देखते हुए रक्त की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके लिए नए रक्तदाताओं की आवश्यकता है। शबनी जुजिया की रिपोर्ट पर एक बार फिर तीना बुदना का विवरण।
0: आज हम सब का फर्ज है कि इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाएं, ताकि हम रक्तदान करने वालों, ब्लड बैंक के आयोजकों, स्टाफ और उन सभी लोगों का धन्यवाद कर सकें जो इस नेक काम में अपना योगदान देते हैं। उनके सहयोग और मदद के कारण ही जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए रक्त उपलब्ध हो पाता है। साथ ही ये अवसर लोगों को जागरूक करने का भी है। आजकल हम जनसंख्या के वृद्ध होने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम युवाओं से विनम्र अपील करते हैं कि वे आगे बढ़कर रक्तदान करें, ताकि भविष्य में रक्त की कमी न

0: हो और इस बढ़ती हुई चुनौती का सामना किया जा सके।
1: रक्तदान एक सरल मानवीय और अनमोल सेवा है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्वास्थ्य प्रणाली के रीढ़ की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित रक्तदाता संजीव बुदन का कहना है कि रक्तदान केवल दूसरे

0: बल्कि ये अपनी सेहत का ध्यान रखने का भी एक अवसर है, क्योंकि प्रत्येक रक्तदान से पहले आवश्यक स्वास्थ्य जांच की जाती है। संजीव बुदन को सुनते हैं।
1: जब लोग रक्तदान करते हैं तो वे एक नेक काम करते हैं और किसी की जान बचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही उनकी अपनी सेहत को भी लाभ होता है। रक्तदान से पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी सेहत की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा अपने को स्वस्थ महसूस करता हूं। हर बार रक्तदान करने के बाद मुझे बहुत हल्का और अच्छा महसूस होता है।
0: मॉरिशस के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट ने स्वास्थ्य पेशेवरों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने दूसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। डॉक्टर जीतू अस्पताल की गायनेकोलॉजी विशेषज्ञ और संघ की सचिव डॉक्टर वंदना बक्तावो के अनुसार, भारत, फ्रांस और अफ्रीका से आए कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रही हैं। वे प्रसूति एवं स्त्री रोग के क्षेत्र में नवीनतम सिफारिशों और सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धतियों को साझा कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मॉरिशस में महिलाओं को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा महिला स्वास्थ्य देखभाल को और बेहतर बनाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के आदान प्रदान के माध्यम से ये सम्मेलन मॉरिशस के स्वास्थ्य पेशेवरों को नई जानकारी और आधुनिक चिकित्सा ज्ञान प्रदान करेगा, जिनका सीधा लाभ महिलाओं के स्वास्थ्य को मिलेगा। निर्मा नारायण रेड्डी की रिपोर्ट पर एक बार फिर तीना बुद्धा को सुनते हैं।
1: हमारी संस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य है, हम मॉरिशस में प्रसूति यानी ऑब्स्टेट्रिक्स और स्त्री रोग यानी गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स आयोजित करते हैं ताकि हम अपना ज्ञान और कौशल बढ़ा सके, अपने करियर में आगे बढ़ सके और गर्भवती महिलाओं तथा स्त्री रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रही महिलाओं की देखभाल को और बेहतर बना सके। हमारे पास गाइडलाइंस है, लेकिन वे अभी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंची है, इसलिए हम अपने दरवाजे खुले रखते हैं ताकि मॉरिशस के सभी गायनेकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग मिल सके, वे अपना करियर आगे बढ़ा सके और पीपल सेंटर्ड मेडिसिन की दिशा में बेहतर काम कर सके।
0: बीस वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देख के असुविधाओं की चुनौतियों पर केंद्रित संगोष्ठी का आयोजन कुदा आउट सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, देखभालकर्ताओं और अधिकारियों ने मिलकर एक अधिक समावेशी मानवीय और आत्मनिर्भर समाज की आवश्यकता पर जोर दिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: किसने कहा कि 20 साल की उम्र के बाद एक विकलांगता के साथ जीने वाला व्यक्ति काम की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सकता। हाँ, मुश्किलें हैं, लेकिन उन्हें भी हर किसी की तरह जीने, काम करने और आगे बढ़ने का अधिकार है। आज लगभग 50 एनजीओ ने इस मजबूत संदेश को आगे बढ़ाया। उनमें से एक है मारी फ्रांस वियोलेट फॉयी डे ला ट्रिनिटे की अध्यक्षता, जो कई सालों से विकलांगता के साथ जीने वाले लोगों का साथ देती आ रही है। हम ऐसे बच्चों को भी लेते हैं जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और जो अब विशेष स्कूलों में नहीं जाते, ताकि उनके आगे के विकास, ट्रेनिंग और कामकाज की तैयारी के लिए कुछ और मदद मिल सके। जॉन मारी मालेपा फाउंडेशन जॉर्ज शार्ल के मैनेजर एक दिल को छू लेने वाली हकीकत की याद दिलाती है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये लोग अपने परिवार के सहारे के बिना रह जाएं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए और उन्हें बिना डर के दुनिया का सामना करने के लिए तैयार किया जाए। हमारे लिए ये सही नहीं है कि जैसे ही कोई विद्यार्थी 20 साल का हो जाता है उसे समाज में अकेला छोड़ दिया जाए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास जरूरी व्यक्तिगत कौशल हो ताकि वे जीवन को समझ सके।

0: सके और आगे बढ़ सके। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और अधिक कर्मचारियों की जरूरत है, खासकर युवाओं की। एसोसिएशन जन इन अडाप्टे दे क्यूपीप की सिंडी पामा बताती है कि एक विकलांग व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर कई सहायकों की मदद की आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ा ज्यादा काम होता है क्योंकि इन बच्चों को ज्यादा देखभाल यानी केयर की जरूरत होती है, लेकिन इस क्षेत्र में और युवाओं को भी नौकरी मिल सकती है क्योंकि यहाँ स्टाफ की कमी है। और हर संघर्ष के पीछे एक सरल सी इच्छा है, सम्मान के साथ जीना, काम करना और समाज में हर किसी की तरह स्वीकार किया जाना, क्योंकि असल में सबसे बड़ा अवरोध अक्सर विकलांगता नहीं बल्कि समाज की सोच, नजरिए और वे रुकावटें हैं जो समाज उनके सामने खड़ी करता है।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के नेताओं तथा वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित शांति समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। कूटनीतिक वार्ताएं अब एक ऐसे समझौते पर केंद्रित हैं जो दोनों देशों के बीच जारी तनाव और संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के मसौदे के अंतिम पाठ पर सहमति बन चुकी है और अगले चरणों को अंतिम रूप देने पर काम जारी है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि समझौता अभी अंतिम रूप से हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, जबकि दोनों पक्षों ने बातचीत में प्रगति स्वीकार की है। अधिकारियों के अनुसार समझौते को लेकर आशावाद बढ़ा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है। यदि ये समझौता संपन्न होता है तो ये क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाएगा। चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि स्पेस एक्स के शेयर्स में बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद आई भारी तेजी के चलते एलन मस्क के दुनिया के पहले खरबपति यानी ट्रिलियनेयर बनने का दावा किया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक वित्तीय और कारोबारी जगत का ध्यान आकर्षित किया है तथा एक बार फिर एलन मस्क की संपत्ति और उनके व्यावसायिक साम्राज्य को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर। अमहालत पूर्व से आने वाले अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दक्षिण पूर्व सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरेंगे और बारिश होगी। समुद्र प्रवाहरेखा के पास सामान्य रहेगा, 2 मीटर की लहरें उठेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर रात के दौरान न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। चलते चलते हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। कंसल्ट पर हमारे सहयोगी कादर हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। आपको हम याद दिला देते हैं कि फिलहाल हाइची और स्कॉटलैंड के बीच खेली जा रही मैच का स्कोर अभी 1-0 है, यानी स्कॉटलैंड के मैगिन ने अपना स्कोर 1 किया है और गोल दागा है। और आपको याद दिला देते हैं कि आज ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की खेलेंगी एक दूसरे के साथ सुबह 8 बजे, और रात के 9 बजे जर्मनी और क्यूरासाओ आमने सामने होंगे, और साथ ही रात 12 बजे नेदरलैंड्स का सामना होगा जापान के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और साथ रहिए। कुछ ही देर में बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रेलवे रोड सेमिशेल बिलियम में 75

साल के 75 ओल्ड के श्री धर्मपियाल बुदिया मुलिको, श्री धर्मपियाल बुदिया मुलिको जिन्हें लालबो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर सैन मिशेल बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बूशोंग शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टिडी एट 3 PM। ब्रांच रोड मोनाक्यो में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय बुदन जिन्हें ताके के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती छाया देवी बुदन के घर बोनाकै से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टिडी एट 2 PM। बैंक रोड गुडलैंड्स में 26 साल के 26 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिषेक सोमाय जिन्हें अभिषेक के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनकी माँ सुनीता नालहंग के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टिडे एट 11 AM। कल्पुलेन रॉसबेल में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरस्पदी सुंदरम पैदाशी नाम गायाकुचियो जिन्हें राजीन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पिता गोइनसामी गायाकुची के घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रेलवे स्ट्रीट मोगोश में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री राम सजो जिन्हें देवानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर मोगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेमोटेक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। ड्यूब्रा न्यूग्रोव में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रीदम धनंजय जिन्हें अजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1 बजे उनके बेटे केशव श्रीदम के घर न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। एडगो अडोल्फ मोगाविये में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री भुवनेश्वर रामदो और जिन्हें धनजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो त्रिवेणी स्टो बोबासें के मालिक थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनके घर मोगाविये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। ऋषि दयानंद रोड जुबॉय में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गीता रत्नु पैदाशाम गनू और जिन्हें अनीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके बेटे गणेश रत्नु के घर जुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमान्यो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। ब्रांच रोड न्यूग्रोव में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अमिका देवी संपत जिन्हें अमिक के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके बेटे शकील संपत के घर न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियोग शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रॉय रोड मालेंगा सैंपिया में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश गुरुदयाल जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गुरुदयाल मालिनी के घर मालेंगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैंपिया शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। लिजाले बोंबू मोंटायोरी मोका में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेंद्रनाथ जरी जिन्हें देवेंद्रनाथ के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर मोंटायोरी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपियक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। केदन लेन फ्लोरियाल में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोहिनी केदन पैदाशाम जगरूप और जिन्हें ज्ञानती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी मंगलवार को दिन के 12:30 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन ट्यूजडे एट 12:30 PM। रॉय रोड ब्रिजेवेजिया में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री देवनंदन रामकिसुन जिन्हें देवनंदन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती रामकिसुन के घर ब्रिजेवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोंजी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। सिटी रामफोर कॉम्बेटू ब्रिटानिया में 77 साल की 77

0: यसोल की श्रीमती चंद्रमणि भुजावन, श्रीमती चंद्रमणि भुजावन पैदाश्रम बिहारी और जिन्हें दादी लाकोचिन अमृता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके घर ब्रितानिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तयाग की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: ए, qui peut arriver? Tu es allé au terrain toi? Jesse, foulard, saucette, moulton, dîner, café?
3: Mais qui te met quoi? Moi, pas envie au jeu pour Coupe du Monde, moi. Mon fini prend, me dit STV Stream Code Mighty. Tous les 104 matchs, exot highlights, tout en anglais. Zis pour 390 roupies.
2: Hé, hey, mais moi, mon compte en suivi football en français.
3: Mais ça aussi, Mighty, y'en a. Prends ton pack New World Sport, zis pour 300 roupies. Vivez l'ambiance du stade directement dans votre salon avec Mighty. Abonnez-vous au DSTV Stream ou New World Sport selon votre préférence et profitez d'un mois gratuit et recevez un cadeau Panini. Appelez le 8902. Termes et conditions applicables.
2: Mighty? Mighty, c'est ça!
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: सुबह के ठीक 7 बजे हैं।
5: स्पोर्ट्स न्यूज़।
4: सुनने वाले को विकास रंधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है और ये स्पोर्ट बुलेटिन हमेशा की तरह वर्ल्ड कप से आरंभ करते हैं। जब से वर्ल्ड कप आरंभ हुआ है तब से नींद नहीं आ रही है और सुबह सुबह रात तक भी कई मैच खेले जा रहे हैं। USA, कनाडा और मेक्सिको में इसी समय अभी हेटी और स्कॉटलैंड के बीच एक मुकाबला चल रहा है। मैच अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड 1-0 से अभी आगे हैं और इंजरी टाइम चल रहा है 8वां मिनट। सो किसी भी समय ये मैच समाप्त हो सकता है। हेटी 0 स्कॉटलैंड 1। जॉन मैकगिन का ये गोल खेल के 28वें मिनट पर और स्कॉटलैंड अपना पहला मैच जीतने की कगार पर है। हेटी ने काफ़ी कोशिशों के बावजूद अभी स्कॉटलैंड 1-0 से आगे हैं। बता दें कि आज सुबह 8 बजे एक और मैच खेला जाएगा। आज सुबह ही 8 बजे ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला टर्की से होगा। फिर आज रात 9 बजे ग्रुप ई में जर्मनी के द नेशनल मानचाफ मैदान पे उतरेंगे, जर्मनी वर्सेस क्यूरासाओ। आज रात ग्रुप ई का ये मैच रात 9 बजे। फिर आज ही मध्य रात्रि के 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स टक्कर लेंगे जापान से। ये भी एक काबिल तारीफ मैच है, देखने लायक मैच है। सो कल के मैचों में भी कमाल हो गया, खासतौर पे ग्रुप सी में जब ब्राज़ील के ला सिलेसाओ और मोरक्को के शेरों के बीच जमकर मुकाबला हुआ ग्रुप सी में और ये मैच 1-1 पर संपन्न हुआ। मोरक्को ने कह सकते हैं डोमिनेट किया ब्राज़ील के ला सिलेसाओ को और विनीशियस जूनियर ने ये इक्वलाइजिंग गोल स्कोर किया फर्स्ट हाफ में ही। इससे पहले साइबारी का एक गोल, मोरक्को 1-0 से आगे। फिर 32वें मिनट पर विनीशियस जूनियर का एक गोल, मैच 1-1 पर समाप्त हुआ और काफ़ी कठिनाइयां भी हुई ब्राज़ील के ला सिलेसाओ को मोरक्को के सामने। मोरक्को अफ्रीका का चैंपियन है, ब्राज़ील 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है लेकिन साल 2002 से अभी तक एक और वर्ल्ड कप की तलाश में है। विनीशियस जूनियर ने एक सुंदर गोल स्कोर किया और साबित किया कि अभी भी उससे उम्मीदें की जा सकती हैं लेकिन ब्राज़ील वो ब्राज़ील अब नहीं रहा। हालांकि याद रहे आपको कि पिछले वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने अपना पहला मैच हारा था सऊदी अरब के विरुद्ध और यही अर्जेंटीना आगे जाकर चैंपियन भी बना था वर्ल्ड कप 2022 में साल 2022 में। और इस प्रकार ये वर्ल्ड कप 48 देशों का वर्ल्ड कप है, इसलिए ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। ब्राज़ील 1-1। इससे पहले कैटा और स्विट्जरलैंड ने भी मैच ड्रॉ किया 1-1। कैटा ने वर्ल्ड कप में अपना पहला अंक कमाया। विश्व कप 2022 में अपने ही घर में कैटा अपने सभी मैच हार गया था लेकिन इस बार पहले ही मैच में उसने एक पहला अंक हासिल किया। स्विट्जरलैंड की ओर से 17वें मिनट पर ही फर्स्ट हाफ में ब्रिल एम्बोलो का गोल पेनाल्टी पर

और इंजुरी टाइम में जाकर मुहिम ने इंजुरी टाइम में ये गोल स्कोर करके कत्याओ को एक अंक दिलवाया, कत्याओ एक स्विट्जरलैंड एक। और कल सुबह इसी समय जो मैच खेला गया था उसमें यूएसए ने पराग्वे को 4-1 से परास्त किया था। सो इतना सब कुछ कल के मैचों को लेकर। बता दें कि आज सुबह बल्कि इसी समय जो मैच खेला जा रहा है अभी मैच समाप्त हो गया। सो फाइनल रिजल्ट फुल टाइम रिजल्ट हेइटी 0 स्कॉटलैंड 1। आज सुबह 8 बजे अब ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला टर्की से, रात 9 बजे ग्रुप ई में जर्मनी वर्सेस क्यूरासाओ, और आज ही मध्य रात्रि के 12 बजे नेदरलैंड का मुकाबला जापान से होगा। वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हो रहा है, बता दें कि अभी कल भी कई मैच खेले जाएंगे, इन सब पर आपको हम समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। फुटबॉल में बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड कप के अलावा, ट्रांसफर बाजार भी अभी हिलने लगा है। लिवरपूल की ओर से ब्रैडले बाकुला का नाम लिवरपूल में गुनगुनाया जा रहा है। पेरिस सेंट जर्मेन से क्या वो लिवरपूल में आएगा, सुनते रहिए। और इस बीच लिवरपूल से भी कई खिलाड़ियों के जाने की भी खबर हो रही है, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान और वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ तय हो सकता है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बात करें अब फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की, जिसमें कल शाम बार्सिलोना एंड कैटालोनिया ग्रैंड प्री के फाइनल स्प्रिंट में कल जॉर्ज रसेल पहले स्थान पर आया, यानी कि जॉर्ज रसेल आज रेस पोल पोजीशन से शुरू करेगा। स्प्रिंट के आखिर में रसेल ने लेविस हैमिल्टन को पार किया। अभी तक जनरल स्टैंडिंग में किमी एंटोनेली पहले स्थान पर है। क्रिकेट की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कल जो मैच खेला गया उसमें कोई मैच ही नहीं था, यानी कि अफगानिस्तान भारत को मैच नहीं कर पाया, और ऐसे में भारतीय टीम ने उसे 7 विकेट से परास्त किया बहुत ही आसानी से। टीम अफगानिस्तान केवल 24 ओवरों में ही आउट हो गई 194 रन बनाकर, और भारतीय टीम ने केवल 3 विकेट के नुकसान पर ये लक्ष्य पूरा कर लिया। और ऐसे में भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा रन आउट हुआ 16 रनों में, और शुभमन गिल 84 पर नॉट आउट रहा। केवल 24 ओवर में ही अफगानिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई, और भारतीय टीम की जीत हुई इस पहले वनडे मुकाबले में। एक और वनडे मैच अभी बचा हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच। सो आज सुबह 8 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की सबको देखने का मौका मिलेगा। आज रविवार है, आज सुबह भूलेगा नहीं 8 बजे। फिर आज रात 9 बजे जर्मनी वर्सेस क्यूरासाओ, और आज ही मध्य रात्रि के 12 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस जापान। अभी ही कुछ ही सेकंड पहले, कुछ ही मिनट पहले हेइटी की हार हुई, स्कॉटलैंड ने हेइटी को 1-0 से परास्त किया। कल रात आज सुबह ही ब्राज़ील और मोरक्को के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1, और कल कत्याओ ने स्विट्जरलैंड के साथ अपना मैच ड्रॉ किया 1-1। कत्याओ ने भी अपना पहला अंक हासिल किया विश्व कप के इतिहास में। सुनते रहिए और हम आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: रविवार 14 जून को सुबह 9 से 12:30 बजे तक कांस्यादी रिविया जुपस्त ओम शक्ति काली माता मंदिर में काली पूजा होगी। रविवार 14 जून को बोना के आर्य समाज शाखा नंबर 33 में फ्लैक आर्य सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन द्वारा सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन का आयोजन किया गया है सुबह 9:30 से 12 बजे तक। रविवार 14 जून को सुबह 8 बजे त्रेबों काली माता मंदिर द्वारा श्री काली यात्रा और पूजा का आयोजन किया गया है। रविवार 14 जून को सुबह 9:30 बजे शुमे एसएसएस लालूसी बिल्डिंग बेलेरिवेसेश के श्री आदिपत्ति मारियामन परिवार वन देवी वनधम द्वारा महाकाली पूजा का आयोजन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 14

14 जून को लासोजीन आर्य समाज में सुबह 9 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: Legacy Radio, 24 hours a day.
1: इस समय सुबह के 7:09 हुए हैं. हम आप लोगों के लिए पढ़ते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पेचित रिविया के निवासियों को सूचित करता है कि ननलो लेन, प्रिंसेस मार्गरेट और ब्लैक रिवर रोड के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 14 जून को सुबह 8:30 से 10 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे. इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी. इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें. ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से.
2: On the hour, every hour, Radio Marches.
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर.
1: इस समय 7:10 हुए हैं हमारा आपका साथ और रेडियो मॉरिशस पर कुछ एंटरटेनिंग बातें, कुछ डिटेल्स हमारे प्रोग्राम के और कुछ भाव भरी बातें और कुछ सोचने योग्य बातें, मनन करने योग्य बातें. चलिए हमारा आपका साथ इसी प्रोग्राम में रहेगा और सुबह का नजराना कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं सुबह की इस बेला में. बस इतनी उम्मीद करते हुए कि सुबह की जो नई किरणें हैं आपके मन में नई उमंगें जगाए, आपके मन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपके जीवन में बहुत सारी प्रगति लेकर आए. गानों का भी सिलसिला होगा, सो चलिए एक गाना आपके नाम करते हैं एंटरटेन करने के लिए. आपको अलका याग्निक की आवाज़ का ये गाना है, मैडम एक्स का मूवी का ये गाना एक ज़माने में इतना मशहूर हुआ था कि उसकी मशहूरियत आज भी हमारे कानों में, हमारे दिल में गूंजती है. चलिए इसी गुंजन को सुनते हैं हम.

इतने के अलग अलग तरीके होते हैं, ज़रा मिठास से बोल लीजिएगा, हर किसी का दिल जीत लेंगे आप। मिठास अगर आपकी वाणी में होगी तो मिठास चारों तरफ भी महसूस कर पाएंगे आप। चलिए, इस समय 7:18 हुए हैं, सुनते हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी की प्रस्तुति में आज का प्रोग्राम।

0: प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। मनुष्य अक्सर प्रश्न करता है कि ईश्वर है कि नहीं, और यदि है तो उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं। आइए हम इस पर विचार करें। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, हे महात्मन, मैंने सुना है कि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, क्या आपने कभी परमेश्वर को देखा है? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं प्रतिदिन परमात्मा को देखता हूँ, उनसे मैं रोज बात करता हूँ, उनके साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मुझे परमात्मा से मिलवा सकते हैं? महात्मा बोले, हाँ, मैं आपको अवश्य मिलवा सकता हूँ, परंतु जब किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए समय मांगा जाता है, तब मिलने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपना परिचय देना होता है। मुझे ईश्वर को भी आपका परिचय देना होगा। आप हमें बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम मोहरलाल बलदेव है। महात्मा ने पूछा, मोहरलाल बलदेव तो आपके शरीर का नाम है, क्या इस शरीर में आने से पहले भी आपका नाम मोहरलाल बलदेव ही था? यह प्रश्न सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया, जन्म से पहले वह किस नाम से जाना जाता था, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह चुप रहा। व्यक्ति को मौन देखकर महात्मा ने कहा, अच्छा छोड़िए इस बात को, यह बताइए कि आपकी उम्र क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं 50 साल का हूँ। महात्मा ने कहा, इस शरीर में जब से आपका जन्म हुआ तब से आप 50 साल के हुए हैं, परंतु क्या आप केवल शरीर हैं या फिर शरीर के अलावा भी कुछ हैं? व्यक्ति ने कहा, शरीर के अलावा मेरी आत्मा भी है। महात्मा ने पूछा, तो आप अपनी आत्मा का परिचय दीजिए। व्यक्ति चकित हो गया, आत्मा का परिचय कैसे दिया जाता है, इसके बारे में उसने कभी विचार नहीं किया था। वह सोच ही रहा था कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दे, तभी महात्मा ने दूसरा प्रश्न किया, आप अपनी आत्मा को जानते हैं कि नहीं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मेरे शरीर के भीतर आत्मा है, आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर का अंत हो जाएगा। महात्मा ने कहा, जिस आत्मा के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं, क्या उस आत्मा को कभी आपने देखा है? व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने आत्मा को कभी नहीं देखा है। महात्मा ने समझाया, सच तो यह है कि जिस आत्मा के होने से ही आपका अस्तित्व है, उस आत्मा को जब तक आप देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक न परमात्मा को देख पाएंगे न उन्हें जान पाएंगे। श्रोताओं, मनुष्य का ध्यान अपने शरीर पर इतना टिका रहता है कि वह अक्सर शरीर को ही अपना परिचय मानता है। आत्मा के बिना तो न शरीर होगा और ना ही मनुष्य। आत्मा बहुत बड़ा सत्य है और परमात्मा सबसे बड़ा सत्य है। आत्मा को जानना परमात्मा को जानने के बराबर है। एक व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था। वह जहाज में अपनी बगल में बैठे यात्री से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान व्यक्ति ने बगल वाले यात्री से पूछा, आप कितने साल के हैं? यात्री ने उत्तर दिया, मैं 5 साल का हूँ। व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, लेकिन आप तो 40 साल के लगते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप 5 साल के हैं? बगल वाली यात्री ने समझाया, असल में मेरा जन्म जब से हुआ तब से 40 साल बीत गए हैं। इनमें से मैंने 35 साल पढ़ने लिखने कमाने संसार के सुखों को प्राप्त करने और खाने पीने में लगा दिए। 5 साल पहले एक गुरु से मेरी भेंट हुई। उनके मार्गदर्शन में मैंने ईश्वर का नाम स्मरण करना आरंभ किया। तभी से मुझे अपनी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हुआ। उससे पहले मेरे जीवन के 35 साल यूं ही पानी में चले गए। इसीलिए मैं उन सालों की गिनती नहीं करता हूँ और मैं यह मानता हूँ कि मैं केवल 5 साल का हूँ। श्रोताओं, जिस दिन से मनुष्य को अपनी आत्मा की पहचान होने लगती है उसी दिन से वह परमात्मा को भी जानने लगता है और सही अर्थों में उसी दिन से उसके जीवन की शुरुआत होती है। हम शरीर के सुखों के पीछे जीवन को व्यर्थ ही न जाने दें, अपने आत्मस्वरूप को हम पहचानें और परमात्मा को प्राप्त करें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

इस समय 7:25 हुए हैं मंगल विचार कार्यक्रम के बाद। चलिए बढ़ते हैं हम एक गाने की ओर। वैसे ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, इस ज़िंदगी में जो पल मिलता है हमको उस पल को बहुत ही प्यार से गुजार लीजिए, बहुत ही गहराई के साथ गुजार लीजिए। न जाने ये पल फिर मिले न मिले, कल को आप अगर पीछे मुड़कर देखें तो आपको लगे कि हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे पल जिए थे जिनको याद करने योग्य बना सके थे हम। हर गली अपनी नहीं होती, कुछ गलियों को छोड़ना पड़ता है और उन गलियों को छोड़कर दिल जब रोता है तो बस उन गलियों में बिताए हुए अच्छे पलों को भी याद करता है। इन यादों के सहारे हम इन गलियों को याद करते हैं।

7:30 बजे हैं, चलिए ज़रा देखते हैं गानों गानों में क्या फ़र्क होता है। कहीं पर दिल टूटा हुआ नज़र आता है, कहीं पर दिल जुड़ा हुआ नज़र आता है, और कहीं पर दिल बस सदाएं दिया करता है। चलिए इसी रोमांटिक सदा को सुनते हैं, इन रोमांटिक बातों को सुनते हैं। चित्रा और शान की आवाज़ें हैं, वाह ये है गाना मैं प्रेम की दीवानी हूँ मूवी का।

0: झलकियां
1: झलकियां लहरा के आई है ये सुबह लेकर आई है बहुत सारी खुशियाँ, लेकर आई है बहुत सारी उम्मीदें। तो इन्हीं उम्मीदों को आप खरा उतारने की कोशिश कीजिए। सुबह की ये बेला आपके लिए बहुत मंगलमय रहेगी और सुबह से लेकर रात्रि तक हमारा आपका साथ रहता है, रेडियो मॉरिशस का साथ रहता है हमारे श्रोताओं के बीच। तो चलिए, रेडियो मॉरिशस पर रखे गए हैं कौन से कार्यक्रम, इस पर ज़रा चर्चा करते हैं हम। अभी तो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए सुबह का नजराना। 8 बजे आप सुनिएगा भोजपुरी समाचार, उसके बाद लेकर आएंगे आपके लिए हम पैगाम आपके नाम, और आप इस प्रोग्राम में अपने अपनों के लिए अपने मैसेजेस ज़रूर भेज सकते हैं। 5251-7005 हमारा नंबर है जिसके ज़रिए आप मैसेजेस भेज सकते हैं, वो तो आप अभी से ही भेज सकते हैं। फिर 9 बजे संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद 9:03 पर मंगलाचरण कार्यक्रम होगा संत कबीर जयंती के अवसर पर। आज ये कार्यक्रम सुनिएगा कबीर मंदिर द्वारा, जिसे प्रस्तुत करेंगी नीतूषा। फिर 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद उर्दू कार्यक्रम निसार की प्रस्तुति में होगा, और 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के

आज तमिल प्रोग्राम सुंदरम पेश करेंगे और राजेंद्र पेश करेंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम 12 बजे, 1 बजे शिरीष पेश करेंगे मराठी प्रोग्राम और 2 बजे चाइनीज प्रोग्राम जिनकी प्रस्तुति में होगा। 3:30 बजे गुजराती कार्यक्रम रंगारंग रत्ना लेकर आएंगी और पूजा लेकर आएंगी। 6 से 5 बजे तक हम और आप कार्यक्रम, 5 से 6 बजे तक तो हर पसीन कार्यक्रम। 6 बजे समाचार बुलेटिन और 6:30 बजे आप सुनिएगा आज का चाइनीज प्रोग्राम होंग होंग की प्रस्तुति में। युवा हासन लेकर आएंगे आज का तमिल कार्यक्रम 7 बजे और 7:30 बजे आप सुनिएगा तेलुगु प्रोग्राम वंदना से। शिरीष लेकर आएंगे गीत गंगा प्रोग्राम 7:50 पर। 8:10 पर रोशनी भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम लेकर आएंगे और समीर पेश करेंगे आज का उर्दू कार्यक्रम महफिल शब 8:40 पर। फिर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम की बारी आएगी 9 बजे से 11 बजे तक रात्रि में और 11 बजे से 12 बजे तक पुराने गानों का प्रोग्राम, पुरानी यादों की सैर, सुनहरे पल कार्यक्रम आप सुनिएगा गिनीशा से। तो भाई हमारे आपके बीच में तो बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, आप जरूर साथ देते रहिएगा। ये है रेडियो मॉरिशस आप लोगों की सेवा में। चलिए जरा इन डिटेल्स के बाद हम आप लोगों का मनोरंजन आगे बढ़ाते हैं और लेकर आते हैं आप लोगों के लिए मैं हूं ना मूवी का ये गाना। चलिए अगर आपको आपका मूड थोड़ा थोड़ा सा ऑफ हो तो बात ये मान लीजिएगा कि हम हैं यहाँ पर आपका मूड ठीक करने के लिए, आपके मूड को बहुत प्यारा बनाने के लिए। चलिए मैं हूं ना प्रोग्राम, मैं हूं ना मूवी का ये गाना सुनिएगा और इस प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। इस प्रोग्राम से आपके एंटरटेनमेंट का जो जिम्मा हमने उठाया है वो तो हम ज़रूर पूरी करेंगे। श्रेया घोषाल, सोनू निगम की आवाज़ें, थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आपकी भी सुनाई दे रही हैं, आप भी गुनगुना रहे हैं, हो लीजिएगा।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
2: खुशियों की दुआएं ही करते हैं आपके लिए, संतुष्टि की दुआएं ही करते हैं आपके लिए। इस जहां में मिलती नहीं है सिर्फ खुशियां, मिलते हैं गम भी। बस इन गमों को हम बदल दें खुशियों में, यही हमारी कोशिश रहे तो ये सारा जहां खुशगवार हो जाए। चलिए ज़रा उन सपनों की ओर बढ़ते हैं जो हर कोई देखता है, एक छोटा सा घर, एक प्यारा सा परिवार और

एक अच्छा सा कोना इस जहां में मिल जाए तो हमारी मुट्ठी बहुत ही भरी पूरी नजर आए। लव स्टोरी का ये गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाज़ है।

0: सी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: अरे बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही।
2: आकाश कुछ करो।
1: अरे मैं क्या करूं, कुछ करो।
2: अरे बोलो गा रही।
1: अरे खेता नहीं बंद हो रही।
2: बात कर, बात कर।
1: आपका ब्रश ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, शुरू हो गई, शुरू हो गई, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
0: रविवार 14 जून को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे 2010 की हिंदी मूवी अनजाना अनजानी रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्म आई गई अनजाना अनजानी।
3: अनजाना अनजानी सुनकर कुछ अनजाने शब्द हमें याद आते हैं और अनजाने ऐसे शब्द जो हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमारे सोचने के अंदाज को बदल देते हैं और ऐसे शब्द कुछ कहानियों में भी होती हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक युवा लड़की थी जो जीवन से थक चुकी थी और परेशान भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह मदद के लिए अपने पिता के पास गई। उनके पिता मुस्काए और बोले, मुझे एक अंडा, एक आलू और कुछ चाय की पत्तियां ला कर दो। लड़की असमंजस में थी, लेकिन वह उन्हें लेकर आई जरूर। फिर उसके पिता ने अंडे, आलू और चाय की पत्तियों को उबलते पानी के 3 अलग अलग बर्तनों में डाल दिए। कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और लड़की से अंडे और आलू को छीलने तथा चाय की पत्तियों को छानने के लिए कहा। लड़की ने ऐसा ही किया और एक दिलचस्प बात उसने नोटिस की। अंडा जो अंदर से पहले मुलायम था, अब सख्त हो गया है। आलू जो पहले से कड़ा था, सख्त था, अब मुलायम हो चुका है। चाय की पत्तियों ने पानी का रंग भी बदल दिया है और उसमें खुशबू भी पैदा करती है। तभी पिता ने बेटी को समझाया, जिस तरह ये चीजें उबलते पानी से गुजरी हैं, उसी तरह हम भी जिंदगी की कठिनाइयों से गुजरते हैं, पर कठिनाई को लेकर हर किसी की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। अब चुनना तो हमको ही है कि हम अंडे की तरह मजबूत बनेंगे या आलू की तरह कमजोर पड़ जाएंगे, या फिर कठिनाई में भी चाय की खुशबू की तरह दुनिया को बदलना चाहेंगे। बेटी को संदेश समझ में आ गया। आप भी तो समझ गए होंगे ना, जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन हम कठिनाइयों के प्रति अपना रिएक्शंस कैसे रखते हैं, ये हमें खुद चुनना होता है। ये होगा आपके लिए लव मैरिज का गाना शब्बीर कुमार अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में। इसके साथ साथ हम रोकेंगे हमारे इस सेगमेंट को। 8 बजे सुनिएगा भोजपुरी समाचार आशिता से, उसके बाद लेकर आते हैं हम आपके लिए पैगाम आपके नाम।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हरी मिला ले जब फजूर के 8 बजे बाटे। आठ बजे के भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करा जाता, सब लोग के नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बताया। उपजा फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेल गल मैच के स्कोर इस प्रकार बाटे। ग्रुप बी में कतौ स्विट्जरलैंड के स्कोर रहल 1-1 यानी कि ड्रो। आज फजीर के 2 बजे ब्राजील के सामना भेल मोरक्को के संगे आर हियो परी स्कोर रहल 1-1। आर 5 बजे फजीर के खेल गल ग्रुप सी में हाइची स्कॉटलैंड मैच के स्कोर रहल बाटे। हाइची 0 स्कॉटलैंड 1 गोल डाले हुला रलन खिलाड़ी मागिन। आपके ये भी बता दे विलाजा कि 52 बरिस बाद यानी कि 1974 के बाद 2026 में हाइची विश्व कप खातिर क्वालिफाई हो रहल। आर अभी ग्रुप डी में यानी कि 8 बजे से ऑस्ट्रेलिया के सामना हुआ था तुर्की के खिलाफ। ग्रुप ई में जर्मनी खेली क्यूरोसाओ के संगे आर ई एगो दिलचस्प मैच रही। आज रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान रही आर ग्रुप ई में काल फजीर के 3 बजे आइवरी कोस्ट खेली इक्वाडोर के खिलाफ। दूसरा समाचार में मंत्रिमंडल ग्रांट इन स्कीम के अंतर्गत निजी प्री प्राइमरी स्कूल के जिक्रा सहायता मिलेला ओ लोग के देवल जाए होला सब्सिडी प्रणाली में सुधार आने के मंजूरी दिली बाटे। इस सुधार के उद्देश्य सरकार व पड़े होला वित्तीय दबाव के कमती करे के योजना में दिखल गत कुछ अनियमितता के दूर करे के और मौजूदा नौकरी के सुरक्षित करे के संगे संगे निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा के निरंतरता सुनिश्चित करे के हम नवा व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू हो। मॉरिशस के रेजिडेंस लाकुए क्षेत्र में भेल एगो हिंसक झड़प दुखद घटना में बदल गल। बिजिटोंबो के रहे होला 28 बरिस के गायल सादाल काल सांझ के रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट में भेल एगो घटना में ओकरा बहुत घाव लगल आ जेकर बाद ओकर मृत्यु हो गल। एगो संदिग्ध स्थिति के सूचना मिलला के बाद वालीदीपेट पुलिस मौका यानी कि स्थल पर पहुंचल जहां पर ही 22 बरिस के मोहम्मद शेख बुलाकी भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सीमा पर पड़ रहल। ओकरा तुरंत जीतू अस्पताल ले जावल गल जहां ओकर सर्जरी भेल आर बाद में पुलिस निगरानी में ओकरा भर्ती करल गल। ओकर स्वास्थ्य स्थिति के देखत पुलिस अभी ओकर कोनो बयान नहीं लेली बाटे। जाँच के बखत पुलिस के ई भी पता चलल कि इही घटना में गायल सादाल भी घायल हो रहल। ई एगो चिकित्सक ओकर मृत्यु के पुष्टि करलन। ओकर मृत्यु के सटीक कारण के पता लगाए खातिर राज फजीर के पोस्टमार्टम करल जाए। ई बीच पोर्ट लुइस नॉर्थ के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ई दुखद घटना के सब पहलू के जांच करी और मामला के वास्तविक परिस्थिति के पता लगाए में उ लोग जुटल हवन जा। बीफे के ई बोला गल रहल कि ईरान के संगे युद्ध समाप्त करे खातिर एगो समझौता हो के करीब बाटे जबकि उसे कुछ घंटा आगे लगातार तीसरका रात के होई होला हमला के रद्द करल गल रहल। हालांकि इस संघर्ष के सीधा असर दुनिया भर के अर्थव्यवस्था पर पड़ता और हिंद महासागर क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं बाटे। मॉरिशस खातिर तस्वीर एकदम ही चिंताजनक बाटे। एमसीबी के पहला रिपोर्ट के अनुसार देश के आर्थिक वृद्धि दर में कमी, महंगाई बहुत बढ़ल बा और पर्यटन क्षेत्र में सुस्ती देखल गल। एकर असर खाली आंकड़ा ले सीमित नहीं बा बल्कि आम आदमी के क्रय शक्ति यानी कि किने के जो शक्ति रहेला होटल और घरेलू खर्चा पर भी पड़ता। हर बरिस आज 14 जून के विश्व रक्तदान दिवस मनावल जाला यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनावल जाला। ई दिन उ सब महिला और पुरुष लोग के सम्मानित करे के है जे रक्तदान करे में समर्पित हवन जा और रक्तदान के माध्यम से कई गो आदमी के जान बचैले हवन जा। एकर संगे ई अवसर नियमित रक्तदान के आवश्यकता पर भी रेखांकित करेला जेकर से मरीज लोग के लगातार बनल सब जरूरत के पूरा करल जा सकेला। रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई गो गंभीर बीमारी के उपचार और जटिल चिकित्सा प्रक्रिया खातिर बहुत आवश्यक है। ब्लड डोनर्स मॉरिशस ब्लड डोनर एसोसिएशन के अध्यक्ष देवानंद हुसैन जस्ती से जस्ती आदमी के रक्तदान करी खातिर आगे आए के मांग कर ली हवन। वो बोला हवन कि जनसंख्या के बढ़त वृद्धावस्था यानी कि हमने के जो बढ़ जना के बढ़त संख्या बाटे जिन पॉपुलेशन बाटे ओकरा देखत रक्त के मांग लगातार बढ़ती जाता और एक खातिर नवा रक्तदाता के भी आवश्यकता पड़ता। मॉरिशस के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्ट्रिशन आर स्वास्थ्य पेशेवर की दक्षता बढ़ाए के उद्देश्य से अपन दूसर का वार्षिक सम्मेलन के आयोजन कर ले बाटे। डॉक्टर जीतू अस्पताल के गायनेकोलॉजी विशेषज्ञ संघ के सचिव डॉक्टर वंदना बक्तावा के अनुसार भारत फ्रांस और अफ्रीका से आए हुआ कई गो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ली हैं जा जो न प्रसूति और महिला लोग के रोग के क्षेत्र में हाल की जो सिफारिश और सर्वोच्च चिकित्सा पद्धति के साझा करें जा। 20 वर्ष से कमती आयु के दिव्यांग व्यक्ति लोग खातिर डे केयर सुविधा की चुनौती पर केंद्रित एगो संगोष्ठी के आयोजन खुदा और सेंटर में कर रगल। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन देखभाल करे होला आर अधिकारी लोग मिल के एगो जस्ती समावेशी मानवीय आर आत्मनिर्भर समाज के आवश्यकता पर जोर देलन जा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हवन कि अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करे खातिर समझौता पर आज दिमास के हस्ताक्षर होए की उम्मीद बाटे। हालांकि अभी ले ईरान इस समझौता के बखत के लिए के सतर्क रुख अपनाई ले बाटे और बोले बाटे कि अंतिम तारीख के अभी पुष्टि नहीं होल बाटे। और चलते चलते हमने ई भी बोल देवी लाजा कि स्पेस एक्स के शेयर में बाजार में सूचीबद्ध होइला के बाद आल भारी तेजी के चलत एलन मस्क दुनिया के पहला खरबपति यानी ट्रिलियनेयर बन गल हवन। अभी आर ई घटना वैश्विक वित्तीय कारोबार जगत के ध्यान आकर्षित कर ले बाटी और एक बार फिर उसे एलन मस्क के जो संपत्ति बाटी और ओकर व्यावसायिक साम्राज्य के मुद्दा के केंद्र में अनले बाटे। तो यही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से साथ दे लौका खाती धन्यवाद। संगे रह अभी बढ़ब जा मन्नी के समाचार देने।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: मंडी के समाचार सुना। रॉयल रोड लावांचो में तिरालीस बरिस के दुकोड़ी तीन बरिस के 43 इयर्स ओल्ड के श्रीमती रामेश्वरी सीतल पैदाशनाम जोहला जिनकरा मनीषा के नाम से भी आदमी जाना थलन जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी काल 2 बजे इनकर पति मदन सीतल के घरे लावांचो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौदेमास के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। ऋषि दयानंद रोज बॉय में 64 बरिस के 3 कोड़ी 4 बरिस के श्रीमती गीता रत्नू पैदाश्रम गनुआ जिनकरा अनीता के नाम से भी अदमी जान थलन जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज 12 बजे इनकर पति श्री धनराज रत्नू के घरे जुबई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पैनमानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट नून। सीतेला

c'était renfort quand bientôt Britannia mais c'était renfort quand bientôt Britannia mais 77 बरिस के 3 कोड़ी 17 बरिस के श्रीमती चंद्रमणि बुजावन श्रीमती चंद्रमणि बुजावन पैदाशी नाम बिहारी और जिनकरा दादी लाकोचिन अमृता के नाम से बीएन में जिस जहां था जाके मृत्यु हो गई बाटी इनका अर्थी आज फजीर के 11 बजे इनका घड़ी ब्रितानिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तायाक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू दिया 11 AM रॉयल रोड ब्रिजेवेजिया में रॉयल रोड ब्रिजेवेजिया में 91 बरिस के 91 ईयर्स ओल्ड के चार कुरी 11 बरिस के श्री देवनानन रामकिशुन जिनका देवनानन के नाम से बेद भी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज 11 बजे इनकर पत्नी श्रीमती लीलावती रामकिशुन के घर ही पर जब जैसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर पोम्बोजे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे 11 AM खेदन लेन फ्लोरियाल में 80 बरिस के चार कोरी बरिस के 80 ईयर्स ओल के श्रीमती सोहिनी खेदन पैदाशम जगरूप और जिनका ज्ञानती के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटे इनका अर्थी मंगर के दिन के 12:00 AM का घरी फ्लोरियाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बीघा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे एट 12:30 PM लेजाले बॉम्बू मोतायोरी मुका में 69 बरिस के 69 ईयर्स ओल्ड की 3 कोड़ी 9 बरिस के श्री देवेंद्रनाथ झरी जिनकरा देवेंद्रनाथ के नाम से बेदमी जैसे जाना जाके मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज 2 बजे इनकर घरे मौका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकुंसा सैपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 2 PM रॉयल रोड मालेंगा सैपिया में 62 बरिस की 3 कोड़ी 2 बरिस के श्री जगदीश गुरुदयाल जिनकरा सुनील के नाम से भी आदमी जिस जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज फजीर के 10:00 AM इनकर पत्नी श्रीमती गुरुदयाल मालिनी के घर ही मालेंगा सैपिया से उठा के अंतिम संस्कार का 30 सैकड़ों सैपिया की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 12:10 AM ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 77 बरिस की 77 ईयर्स ओल्ड के 3 कोड़ी 17 बरिस के श्रीमती अमिका देवी संपत जिनकर अमिक के नाम से भी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी आज 2 बजे इनकर बेटा शकील संपत के घर ही निकोड़ से उठा के अंतिम संस्कार का तीर गोबियों के शमशान भूमि ले जावल जाए मिशन टीरिया 2 PM ऋषिदयानंद रोड एदगो आदोल्फ मो ग्रावियर में 65 बरिस के 65 ईयर्स ओल्ड की 3 कोड़ी 5 बरिस की श्री भुवनेश्वर रामदोवा जिनकरा धनजय के नाम से भी आदमी जैसे जाते हैं जा जो आगे बोबासा के त्रिवेणी स्टो के मालिक रलन की मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी काल 12 बजे इनकर घरे मौगावी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शिबल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट नून ड्यूब्रा न्यू ग्रोव में 60 बरिस की 3 कोड़ी बरिस के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रीदम धनंजय जिनकरा अजय के नाम से भी अदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज 1 बजे इनकर बेटा केशव श्रीदम के घर ही न्यूग्रोव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मागीजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 1 PM रेलवे स्ट्रीट मोगोश में 61 बरिस के 3 कोड़ी 1 बरिस के श्री राम सुजो जिनकरा देवानंद के नाम से भी अदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज 1 बजे इनकर घर ही मोगोश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मौत के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 PM कल्पू लेन रोजबेल में 57 बरिस के 2 कोड़ी 17 बरिस के श्रीमती सरस्वती सुंदरम पैदाशम गाया कुचिया जिनकरा राजीन के नाम से भी अदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर भाई गोइंसामी गाया कुची के घरे रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर यूनियन पार्क के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 1 PM बैंक रोड गुडलैंड्स में 26 बरिस के 1 कोड़ी 6 बरिस के 26 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिषेक सुमाय जिनका अभिषेक के नाम से भी आदमी जिसे जानते हैं जाकर मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज 11 बजे फजीर के उनकर माँ सुनीता नलहंग के घर गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 11 AM ब्रांच रोड बोनाक्वे में 54 बरिस के 2 कोड़ी 14 बरिस के श्री अजय बुधन जिनकरा ताके के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ था जाकर मृत्यु होकर बने इनकर अर्थी आज 2 बजे इनकर माँ इनकर पत्नी छाया देवी बुधन के घर बोनाक्वे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के

0: शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रेलवे रोड से मिशेल बिलियम में रेलवे रोड से मिशेल बिलियम में 75 बरिस के 3 कोरी 15 बरिस के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मप्याल बुदिया मुली को श्री धर्मप्याल बुदिया मुली को जिनका लालबोगी नाम से बेदमी जिसने जाने थलन जाकर मृत्यु हो गल बट इनकर अर्थी आज सांझ 3 बजे इनकर घरे बिलिया से मिशेल से उठा के अंतिम संस्कार का तीर भूषों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबल इस सब परिवार के प्रति हमने के दिली संवेदना बाटे।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप 1, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप 2, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।

सो इस समय 8:21 हुए हैं, हमारे आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर हैं, हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और अभी से 9 तक आप लोगों के लिए हम पैगाम आपके नाम प्रोग्राम लेकर आए हैं। आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में अपने पैगाम भेजिएगा। अगर कोई इवेंट हो फैमिली में तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में अपनी फैमिली को उस इवेंट के लिए बेस्ट विशेस भेजिएगा। हम आपके मैसेज आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए ज़रूर पढ़ेंगे। मैसेजेस भेजने के लिए आप 5251700 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ़ोन करने के लिए 4028085 पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए, मैसेजेस का सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। मैसेज हमें भेजा है माला सुमाहू जी ने। हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया है, वे हमारा साथ दे रही हैं सुबह से, बहुत पहले, बहुत ही सुबह से उन्होंने हमें मैसेजेस बहुत स्वीट मॉर्निंग का भेज दिया है और बहुत बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज शर्मा सजादा जी त्रियोले से हैं, वे भी हमारा साथ दे रहे हैं बहुत सुबह से। मौदालबिया की अनीता जी, करुणा और अमृता जी के साथ मिलकर हमारे साथ साथ हैं। और इधर माला झड़ी जी हमारा साथ दे रही है, उन्होंने होम्स और अस्पताल में जितने लोग हैं उन सब के लिए मंगल कामनाएं प्रकट की हैं। उनका ये मानना है कि वे अपने दिल से अगर दुआएं देंगी, बहुत हर कोई अपने दिल से अगर दुआएं देगा इन सभी लोगों को, तो ज़रूर उनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। भगवान उन लोगों को बहुत ही अच्छी राह दिखाएंगे और इसी तरह बहुत ही प्यार से उन लोगों के लिए एक कोई ना कोई दोस्त ज़रूर देंगे। भगवान की दुआ रहेगी, भगवान की दया रहेगी, हमारी दुआ रहेगी उन लोगों के साथ। पेचित खत से माला झरी जी ने पूरे झरी परिवार की तरफ से बहुत सारी दुआएं भेजी हैं इन सब के लिए।

सो हमारा साथ रेडियो मॉरिशस पर दे रही हैं विश्वानी दुमन जी, और उन्होंने हम सब को गरम गरम चाय के लिए इनवाइट किया है. सो चलिए हम सब आ रहे हैं विश्वानी जी आपके यहाँ. चलिए ज़रा हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं प्यारी सी अदिति को. इनफैक्ट हमें सरिता जी ने कथोबोन से मैसेज भेजा है कि आज उनकी नातिन अदिति का फर्स्ट बर्थडे है. बहुत प्यार से पूरा परिवार अदिति जी के अदिति की सालगिरह मना रहा है, और बहुत सारे दुलार के साथ उन्हें विशेज़ भेजे जा रहे हैं. उनकी मामा करिश्मा, पापा आकाश, मामू कविश, दादी ललिता और चाचा प्रीतम की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, लंबी उम्र की दुआएं दे रहा है पूरा परिवार गुड़िया से अदिति को. ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे अदिति, और प्यारी प्यारी बातें करें, प्यारे प्यारे अंदाज अपनाएं और सभी का मन जीत ले. चलिए हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से.

पैगाम आपके नाम, आपके अपनों के नाम भेजिएगा पैगाम अगर कोई ऐसा मौका हो जहां पर बेस्ट विशेस तो भेजना बनता है। आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें विशेस भेजिएगा। ये है पैगाम आपके नाम 5251700 नंबर है मैसेजेस का और 4028085 है नंबर कॉल करने का। अभी चलिए ज़रा हम हैप्पी बर्थडे सुदेवी जी को कहते हैं। वाकवा की सुदेवी जी जो हमेशा हमारे प्रोग्रामों में भाग लेती हैं, उनका जन्मदिन 12 जून को था और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं अनुषा जी की तरफ से। मालेगा की अनुषा जी सुदेवी जी को, फूफू सुदेवी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं, साथ में बेस्ट विशेस मिल रहे हैं सुदेवी जी को किरण की तरफ से, केशनी, कृषय, प्रणीता, पुपु सुनीता, शोभा, ललिता, बेटे वंश, वैभव, विजयन, अंजू, ऑस्ट्रेलिया के विमल, वर्षा, निया, वीर, राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, कुआहो, मल्लू और गुरन सिंह तथा हृदय परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं सुदेवी जी को। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी पूरी टीम की तरफ से। हमेशा खुश रहिए, हमेशा साथ देते रहिए।

सुनीता जी की ओर से। सुनीता जी जो दागुचिया रहती हैं, उनका कहना है कि शुभम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे परिवार के सदस्य, दादी विद्वंती, मामा सीता, पापा सुधीर, शान, श्यामल, दुशिका और श्रेय, फूफू सुनीता, संदीप, प्रिया और श्रवण, अक्यूपिप के पूरे सूरत परिवार की ओर से, दागुचे के बिहारी परिवार की ओर से शुभम को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू शुभम, हमारी पूरी टीम आपको कह रही है।

और इंदिरा लोटन जी ने हमें भेजा है मैसेज, कहना है उनका कि उनके बेटे का है बर्थडे आज, और उनके बेटे विश्वराज गोपी जी को बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं इंदिरा जी, बहुत सारा प्यार दे रही हैं इंदिरा जी, और बहुत सारे प्यारे प्यारे विशेज विश्वराज जी के बेटे और बेटी की तरफ से भी आई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की मंगल कामनाएं विश्वराज जी, आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिले, ज़िंदगी की हर तरक्की मिले, जो भी चाहा है दिल ने आपका वो सब मिले आपको।

आज हमारा साथ दे रही हैं साधना जी भी, जो कि व्यक्ति क्रियोल की हैं, और उन्होंने हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे विश किया है। उनके यहाँ तो बारिश हो रही है, यानी कि उनके यहाँ तो रेनिंग संडे है। सो अपनी गर्म गर्म अपने गर्मा गर्म चाय के साथ हमारा साथ दे रही हैं साधना जी, रिवेरे खेओल की बेटी, दामाद, नाती, नातिन और मौदालवे के बेटे बहू नीतीश, कविना नाती और क्रियाना तस्वीक और यूनियन पार्क के बेटे बहू कुशल, समीता बेटी मंशा और दुबई के उनके पूरे जीवन परिवार के लिए मंगल कामनाएं, हैप्पी संडे विश कर रही हैं अगिव्या देखे उनकी साधना जी। और चांदनी पुरुषोत्तम जी अपनी माँ चौटी को मंगल कामनाएं दे रही हैं। कल मासिक शिवरात्रि थी और माँ मासिक शिवरात्रि की मंगल कामनाएं अपनी माँ को दे रही हैं चांदनी पुरुषोत्तम जी। और आज फर्स्ट बर्थडे मना रही हैं अलीज़ा। अलीज़ा अपने फर्स्ट बर्थडे पर तो बहुत खुश खुश ठमक ठमक कर चल रही हैं, और इस फर्स्ट बर्थडे पर नाना आज़ाद, नानी रेहाना, खाला जीनत फी और खाला नूज़ा, गुलाम हुसैन परिवार, ईदू परिवार और पूरे परिवार के मेम्बर्स न्यू ग्रोव से प्यारी सी गुड़िया सी अलीज़ा को हैप्पी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं।

सो पैगाम आपके नाम में हमारा साथ दे रही हैं अनीता जी फ्लिकॉन्फ्लैक्स से, फातमा जी न्यूगोल्फ से, और फातमा जी न्यूगोल्फ से उन सभी को बर्थडे विश भेज रही है, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कह रही है, जिनका है जन्मदिन आज। तो फातमा जी की तरफ से ये विशेज आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा रहे हैं हम इस प्रोग्राम के ज़रिए, पैगाम आपके नाम के ज़रिए। और बर्थडे विशेज मिल रहे हैं इकराम, अकील और फायाज को। इन तीनों का जन्मदिन मना रहा है पूरा परिवार, पोंपाले के बिहारी परिवार। बिहारी परिवार की तरफ से इकराम, अकील और फायाज को सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सफलता, समृद्धि, खुशियों की दुआएं मिल रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी सालगिरह।

और हमारे कार्यक्रम के अंतिम चरण पर आ गए हैं हम, पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में। हम निवेदिता जी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। निवेदिता जी जो रहती है गुडलैंड्स, उनको शुभकामनाएं उनके पति आश्विन जी की तरफ से मिली है, उनके बेटे सुजय की तरफ से और बेटी निमृता की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो आपका अपना जन्मदिन निवेदिता जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं। बस यही दुआ करते हैं आपके लिए कि आप हमेशा खुश रहें, प्रगति करें और ज़िंदगी में जो भी चाहा है आपने आपको हासिल हो जाए।

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम दे रहे हैं गोविंद जी को। गोविंद जी जो रहते हैं लागोजा, उनकी उनको जन्मदिन की मंगल कामनाएं उनके भाई राघव की तरफ से और उनकी मामा रेणुका की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद बड़े भैया और अम्मा ने दी है आपको। गोविंद जी आपको ज़िंदगी में खुशियाँ मिले, आपको ज़िंदगी में संतुष्टि मिले, यही दुआ आपके पूरे परिवार की तरफ से। और हमारा साथ देने वालों में हैं शामिल आकाश चेतन मनसुख जी जो बॉम्बू के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार को मंगल कामनाएं भेजी हैं। मामा प्रीति, पापा क्रिश, बहनें उर्वशी और विशनी, जीजू विनेश और नेफ्यू केहान को, अपने दोनों दोस्तों को दिशाल और युदीन को मंगल कामनाएं भेजी हैं आकाश चेतन मनसुख जी ने, और साथ में बॉम्बू के पूरे मनसुख परिवार को मंगल कामनाएं भेजी हैं। बस यहीं पर हमारी आपकी मुलाकात पैगाम आपके नाम कार्यक्रम के साथ समाप्त होती है। और इस मुलाकात में जितना प्यार हमको मिला उतना प्यार हमने भी बांटा आपके साथ। बस इस प्यार के साथ हमें विदा कीजिएगा। हम आपसे आज्ञा चाहेंगे अगली बार हम ज़रूर लेकर आएंगे एक पैगाम आपके नाम आपके लिए और साथ आपका मिलेगा, यही उम्मीद रखेंगे। 9 बजे आप सुनिएगा संक्षिप्त समाचार आशिता से, उसके बाद आज का मंगलाचरण कार्यक्रम आप नीतुषा की प्रस्तुति में सुनिएगा। आपके लिए ये संडे बहुत मंगलमय रहे। हैप्पी संडे, मंगलमय संडे आपके लिए। नमस्ते।

0: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेले गए मैचों का स्कोर रहा, ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड ड्रॉ, आज सुबह 2 बजे ब्राजील का सामना हुआ मोरक्को के साथ, स्कोर रहा 1-1 यानी कि ये भी ड्रॉ। और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में हाइची स्कॉटलैंड मैच का स्कोर रहा हाइची 0 स्कॉटलैंड 1, गोल डालने वाला रहा मैकिन। गौरतलब है कि हाइची 52 सालों यानी 1974 के बाद 2026 में ये विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ था। और अभी ग्रुप डी में 8 बजे से ऑस्ट्रेलिया का सामना हो रहा था तुर्की के खिलाफ। ग्रुप ई में जर्मनी खेलेगा क्यूरासाओ के साथ, ये कह सकते हैं एक दिलचस्प मैच होगा। और रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान, तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। मंत्रिमंडल ने ग्रांट इन एड स्कीम के तहत सहायता प्राप्त निजी प्री प्राइमरी स्कूलों को दी जाने वाली सब्सिडी प्रणाली में सुधार को मंजूरी दे दी है। इस सुधार का उद्देश्य सरकार पर पड़ रही वित्तीय दबाव को कम करना, योजना में देखी गई कुछ अनियमितताओं को दूर करना और मौजूदा नौकरियों को सुरक्षित रखना तथा निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्थाएँ 1 जनवरी 2027 से लागू होंगी। मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यूर क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प पर दुखद घटना में बदल गई। बिजोंबो निवासी 28 वर्षीय गायल सदाल की कल शाम रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट पर हुई एक घटना में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। एक संदिग्ध स्थिति की सूचना देने वाली गुमनाम कॉल मिलने पर वाली दिप्रत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। उन्हें तुरंत जीतू अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और बाद में पुलिस निगरानी में भर्ती किया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पुलिस अब तक उनका बयान दर्ज नहीं कर सकी। को ये भी बता देते हैं कि जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि इसी घटना में घायल सादाल भी घायल हुए थे। एक चिकित्सक ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। उनकी मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बीच पोर्टलेस नॉर्थ की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन इस दुखद घटना के सभी पहलुओं की जाँच कर रही है और मामले की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर होने यानी कि आज हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हालांकि ईरान ने समझौते के समय को लेकर सतर्क रुख अपनाते हुए कहा कि अंतिम तारीख की अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। राय रोड लावंतुआ में, राय रोड लावंतुआ में 83 साल की 43 साल की श्रीमती रामेश्वरी सीतल, श्रीमती रामेश्वरी सीतल पैदाशम जोहरा, जिन्हें मनीषा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनके पति मदन सीतल के घर लावंचा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिट गांव दिमास के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो रात 2 PM। अवनी लातानी कैट्रोबोन में, अवनी लातानी कैट्रोबोन में 74 साल के 74 साल के श्री मिथिलेश्वर बानी मांडब, श्री मिथिलेश्वर बानी मांडब जिन्हें मिथिल सीनियो लेक्चरर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो MGI में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके घर कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
2: रेडियो मॉरिशस।

0: मंगलाचरण समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। मंगलाचरण कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन है। कबीर जयंती के संदर्भ में बुंदिया बाकवा के कबीर मंदिर द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। कबीरदास की जीवनी, उनके दोहे, उनकी भक्ति, मानवता के प्रति उनका क्या संदेश रहा, इन सब पर चर्चा करने हेतु हमारे समक्ष हैं आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज। आचार्य जी करजोर प्रणाम। साहेब बंदगी।
1: साहेब बंदगी।
0: आचार्य जी, संत कबीरदास भारतीय संत परंपरा के सबसे महान संतों और कवियों में से एक माने जाते हैं। कृपया उनके जन्म से जुड़ी कौन सी प्रसिद्ध लोक कथा प्रचलित है बताने की चेष्टा करें।
1: ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम श्रद्धालु श्रोतागण, आप सबको मेरा सादर साहेब बंदगी। नीतुषा जी, आपको भी मेरा साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब का प्राकट्य दिवस अभी आ रहा है, 29 जून को
0: जी।
1: बड़े ही धूमधाम से हम सब मनाएंगे, और मॉरिशस में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ दुनिया में कबीरपंथी लोग हैं
0: जी।
1: भारत में, और भारत उनकी जन्मभूमि ही रही है
0: जी।
1: इसके अलावा ट्रिनिडाड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, अनेक देशों में कबीरपंथी लोग हैं, और कबीर साहब को बहुत ही श्रद्धा और भाव से मानते हैं
0: जी।
1: सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन पर अगर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं तो सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जन्म और प्रकट होना दोनों में अंतर है।
0: अच्छा।
1: हम लोग कबीर साहब का प्राकट्य दिवस मनाते हैं, न कि उनकी जयंती मनाते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जन्म तो हम आप जैसे लोगों की होती है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य हम इन अर्थों में कहते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सदगुरु कबीर साहब भी स्वयं कहते हैं कि जीव दुखी देखे जग माही ता कारण पगुधारा हो। जीवों को दुखी देख करके मैं इस संसार में आया हूँ
0: जी।
1: ये शब्द अपने आप में जन्म नहीं, एक प्रकट होना को दर्शाता है। काशी के लहर तराब में संबत 1456 को सदगुरु कबीर साहब कमल पुष्प पर अवतरित हुए
0: जी।
1: और वहीं से ही सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, भाईचारा का संदेश पूरे दुनिया में सदगुरु कबीर साहब ने दिया। उनके जन्म से जुड़ी हुई कुछ किंवदंतियाँ हैं हमारे सामने। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से प्रकट हुए, लोकलाज के भय से किसी ने तालाब के किनारे उनको छोड़ दिया था
0: जी।
1: और लेकिन हम सब अधिकतर जो कबीरपंथी लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। अब क्या है उसको तो हम आप नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक लोक मान्यता है कि सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए कमल पुष्प पर
0: जी।
1: संत गरीब साहब हुए, उनकी एक बहुत सुंदर वाणी है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माहि पौढ़न किए दो दिनन के पीर। कहते हैं कि बाबा नीरू नीमा को गौना करा करके ले जा रहे थे, रास्ते में नीमा को प्यास लगी, तो उस समय कोई नल हैंडपम्प तो होता नहीं था
0: जी।
1: लहर तारा तालाब के किनारे जब वो पहुंची तो प्यास बुझाने के लिए तालाब पर नीचे उतरी गई, तो देखा कि एक छोटा सा बालक कमल पुष्प पर पड़ा हुआ था, मंद मंद मुस्कुराते हुए शोभायमान हो रहा था। उसको देख करके नीमा माता से रहा नहीं गया और उसने झट से उसको उठा लिया और अपने गोद

0: उठा करके अपने घर को ले आए हैं।
1: जी
0: आज भी उस जगह का नाम, जहाँ पर नीमा और बाबा नीरू रहते थे, उस जगह का नाम आज हम काशी में कबीर चौरा के नाम से हम उसको जानते हैं।
1: जी
0: जी, तो इस तरह से कबीर साहब का जीवन है। आज के लोग भले ही इसको चमत्कार कहते हैं,
1: जी,
0: लेकिन ये चमत्कार नहीं था। इसको हम चमत्कार नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी महापुरुष होते हैं, उनके जीवन दर्शन उनके न रहने के कुछ वर्षों के बाद लिखी जाती है।
1: जी,
0: उनके रहते हमें बहुत उनके व्यक्तित्व के बारे में या उनके जीवन आदर्शों के बारे में उनका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन न रहने पर उनके महिमा को हम समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, बाद में समझ पाते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इस समय आप मंगलाचरण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं। आचार्य जी, आप हमें बताएं कि कबीरदास जी ने धर्म और भक्ति के बारे में किस प्रकार की सोच को बढ़ावा दिया?
0: सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन को हम देखते हैं तो किसी विशेष धर्म से वो नहीं जुड़े थे।
1: जी,
0: उनका जो धर्म था वो सत्य धर्म था। उनका धर्म था प्राणी मात्र पर, जीवों पर दया करना उनका धर्म था। उनके वक्तव्यों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो समझ आता है कि चारों वेदों को पढ़ना सरल है, लेकिन जिसने किसी की वेदना को पढ़ लिया वो सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है।
1: अच्छा,
0: वेदों को ना पढ़ करके वेदना को जिसने पढ़ लिया।
1: जी,
0: यद्यपि वेद हमारे अपौरुषेय ग्रंथ है, हमारे जीवन का आधार है।
1: जी,
0: सद्गुरु कबीर साहब ने सत्य को ही सबसे बड़ा अपना धर्म कहा। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। ये तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं।
1: जी,
0: कबीर साहब भी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, सत्य के बराबर ये संसार में उसके समान कुछ नहीं
1: कुछ
0: है,
1: नहीं है। जी,
0: सत्य कहूँ सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य एक छोड़ सब बनी जब व्यापार है, सत्य के विचार बीनु बूढ़े भव धार माही, ताते जग माही एक सत्य नाम सार है। तो सत्य को सबसे बड़ा सदगुरु कबीर साहब ने अपना धर्म माना और उसी के मार्ग पर आजीवन चले। मैं महात्मा गांधी जी को यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी, पहले कहा जाता था कि उसकी माँ कबीरपंथी थी।
1: अच्छा,
0: महात्मा गांधी की माँ कबीरपंथी थी, और ये बात उन्होंने स्वयं काशी में आ करके 1939 को कबीर चौरा में आकर के उन्होंने ये बात
1: कही थी
0: गांधी जी ने। तो गांधी के जीवन में भी कबीर का बहुत बड़ा प्रभाव था। पहले वो मानते थे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। तो बहुत से लोग इसमें नाराज हो जाते थे कि क्या ईश्वर ही सत्य है
1: जी,
0: क्या हमारा अल्लाह सत्य नहीं है, क्या हमारा जीसस सत्य नहीं है
1: जी।
0: तो गांधी जी ने विचार किया, गांधी जी ने सोचा कि बात तो सत्य है, तो उन्होंने इस कथन को बदल दिया। पहले वो मानते थे कि ईश्वर सत्य है
1: जी।
0: बाद में उनके दर्शन में आता है, गांधी जी के दर्शन में, कि उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। जब उन्होंने सत्य ही ईश्वर है कहा तो किसी को कोई प्रकार का कोई कठिनाई कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो गांधी जी ने भी कबीर साहब के बताए हुए मार्गों का ही अनुसरण करते हुए अपनी फिलॉसफी दी। तो सदगुरु कबीर साहब ने सबसे बड़ा अपना धर्म सत्य को ही माना।
1: जी, सत्य ही जीवन है, जैसे कि आपने कहा, और सत्य से बड़ा तो कुछ है ही नहीं।

0: आचार्य जी, जब भी कबीर साहब की बात होती है, उनके दोहों की बात होती है, तो कई दोहे जो हैं बहुत ही प्रचलित हैं, जिनमें से बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, इस दोहे का असली अर्थ क्या है?
1: सदगुरु कबीर साहब के जितने भी साखी है, दोहा है, एक सभी दर्पण के समान है
0: जी।
1: क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तो जनमानस के थे और जैसा समाज में देखते थे वैसा ही वो बोलते थे
0: जी।
1: जितने भी दोहे हैं, साखी हैं, कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मनमाए, बिन साखी संसार के झगड़ा छूटत ना है। कबीर साहब का जो कहने का भाव था या कहने का जो तात्पर्य था, एक दोहे के माध्यम से या साखी के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से कहते थे। जैसा समाज में देखते थे लोगों को, लोग एक दूसरे के प्रति खफा थे या बुरा चाहते
0: एक
1: थे,
0: एक तरह से कह सकते हैं कि समाज, ये जो दोहे थे, एक दर्पण की तरह,
1: दर्पण की तरह है
0: जी।
1: बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, तो सदगुरु कबीर साहब इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम अगर संसार को बुरा रूप में देखते हो तो वो नहीं है, क्योंकि ये दुनिया एक रिसाइकल बिन गोल चक्कर की तरह है।
0: बस नजरिए का जो फर्क,
1: नजरिए का
0: जी,
1: जी जी जी नजरिए का फर्क है। और जो हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, जस देखन तस दूसर जानी, कहें कबीर ये अखत कहानी। कहते हैं कि जो हमारे अंदर रहते हैं वही हमको बाहर भी दिखाई देता है
0: जी, जी।
1: तो साहब ये समझाना चाहते हैं कि आप बुरा व्यक्ति ढूंढने को जाओगे लेकिन दुनिया में बुरा नहीं है, अगर हम अपने दिल में झांक करके देखेंगे तो वही चीज़ हमें बाहर नज़र आता है
0: जी।
1: वस्तुतः कहते हैं कि दुख और सुख, मनुष्य के जीवन में दुख उतना बड़ा नहीं होता है, सुख भी उतना बड़ा नहीं है। दुख और सुख दोनों में से किसी को भी हम अपने मन में उसको धारण कर लेते हैं, फिर वही चीज़ भारी होना शुरू हो जाता है
0: जी।
1: और हम इसको हम दुनिया के तरफ थोप देते हैं कि दूसरे के कारण हमें सुख मिल रहा है, दूसरे के कारण हमें दुख मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के जितने भी जो वाणी हैं वो मनुष्य केंद्रित वाणी है
0: जी,
1: बाहर की वाणी नहीं है
0: जी। जी, तो अगर हम उनके दोहों के बारे में बात ही कर रही है तो आज के युग में ये जो दोहे हैं कितने प्रासंगिक हैं?
1: सदगुरु कबीर साहब के जितने दोहे हैं उस जमाने में भी प्रासंगिक है और आज भी प्रासंगिक है
0: जी।
1: अगर हम एक एक एक दोहा को ही अपने जीवन में धारण करके चलते हैं तो उसके दशा और दिशा दोनों बदल जाती है।
0: अच्छा,
1: इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे शब्दों में साहब ने ऐसे मीनार चुना है कि छोटा मोटा महल भी उसके सामने छोटाई
0: बराबर है,
1: बराबर है या छोटा दिखाई पड़ता है। उनके जितने भी दोहा है वो जीवन के प्रति एक नई दृष्टिकोण को लाता है
0: जी।
1: जैसे माटी कहे कुम्हार ते क्या तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोए। ये संसार के भौतिकवाद की क्षणिकता पर साहब कह रहे हैं कि जिसको हम अपना अपना कहते हैं वस्तुतः वो भी एक दिन अपना नहीं है
0: जी।
1: सब
0: बस
1: कुछ
0: ये मोह माया, हम लोग मोह माया की दुनिया में जी रहे हैं
1: जी। ये सब एक मोह माया की तरफ से है। व्यक्ति अपने वचन को सुधार ले, कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कहने का तात्पर्य जितने भी साखी है कबीर साहब के अगर उस पर अमल करें तो व्यक्ति का जीवन सरल, सहज और सुमधुर रहेगा
0: जी।
1: और क्योंकि साखी अपने आप में एक, जिसको हम कहते हैं मनुष्य, साखी का अर्थ है सहारा देना।
0: अच्छा,
1: तो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए जैसे लाठी की सहारा चाहिए मार्ग पर चलने के लिए, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दुनिया के कुरूतियों से बचाता है सदगुरु कबीर साहब के साखी।
0: अच्छा,
1: मैं तो ये कहूँगा कि अगर जीवन में दुख आए, कभी बहुत दुख में हो आप, तो कबीर साहब के वचनों को पढ़ लेना, आधी दुख तो तुरंत दूर हो जाएगी और आधी आपके कष्ट डॉक्टर ठीक करेंगे।
0: अच्छा,
1: इतनी कबीर साहब के शब्दों में, उनके साखी में, उनके भजनों में वजन है, ताकत है जो मनुष्य को सहज, सरल और एक हल्का प्रदान करता है
0: जी। तो कबीर साहब के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या होता है?
1: मनुष्य का सबसे बड़ा धन तो कहा गया है कि संतोषम ही परम सुखम, संग चले सो धन है संगी, छूट जाए सो माया।

0: कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक धन तो वही है जो मनुष्य के साथ में जाता है
1: जी,
0: और जो साथ में नहीं जाता है वो सब छूटने वाली धन है।
1: अच्छा।
0: अर्थात उसको माया कहा है। और एक जगह कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जितने भी गोधन हैं, गज धन है या बाज धन है, मतलब ये जितने धन दौलत हैं, ये सब होते हुए भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि अगर यही धन ही, भौतिकवादी धन ही सब कुछ होता तो बुद्ध घर को त्याग नहीं करते
1: जी। जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना मटेरियल जी,
0: मटेरियल लव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है
1: जी,
0: उसकी भी एक सीमा है। अगर यही धन ही सब कुछ वास्तविक धन होता तो ये संसार को लोग त्याग नहीं करते। जैसे बुद्ध तो राजा थे, धन की क्या कमी थी उसके पास, लेकिन फिर भी उसने जीवन के यथार्थता को समझते हुए घर को त्याग दिया। वो
1: जी
0: धनी धर्मदास साहेब, सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य, जिनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी
1: जी,
0: 56 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। गुरु के चरणों में चढ़ाने का अर्थ ये है कि 56 करोड़ की संपत्ति से उसने अपने मन को हटा लिया, अपनी तृष्णा को हटा लिया, अपने लोभ को ख़त्म कर दिया
1: जी।
0: तो कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति के जीवन में संतोषम परम सुखम, जैसे अभी 4 साल पहले कोरोना आया, कोरोना ने दुनिया को सिखा दिया कि मनुष्य के जीवन सीमित संसाधनों में भी बेहतर बन सकता है
1: जी,
0: बेहतर हो सकता है। तो कहते हैं कि व्यक्ति अगर संतोष है, संतुष्टि है, मैं क्या मेरा क्या, इससे जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा धन उसके पास और कुछ नहीं है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है।
1: ये आपने बिल्कुल सही बात कही आचार्य जी।

0: आचार्य जी, 29 जून को हम मनाने वाले हैं कबीर जयंती जी। तो कबीर जयंती मनाने का आध्यात्मिक महत्व क्या है?
1: कबीर जयंती सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव जिसको हम कहते हैं, मनाने का आध्यात्मिक कहते हैं कि हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन महापुरुषों ने हमेशा जीवन भर समाज के लिए जिया
0: जी।
1: और समाज को अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया। कहते हैं वृथा जिए वृथा मरे जो खुद के लिए जिए
0: जी।
1: जीना उसी का धर्म है जो परोपकार के लिए जिए।
0: अच्छा।
1: हम कबीर साहब की जयंती प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं ताकि उनके मूल्य, उनके आदर्श को हम अपने जीवन में धारण कर सकें और समाज को एक नई दिशा हम दे सकें
0: जी।
1: उनके शब्दों पर लोग चल करके, उनके बताए हुए रास्तों पर, मार्ग पर चल करके लोग अपना जीवन को बेहतर बना सके और एक अच्छा जीवन जी सके, यही तो मैं कहना चाहूँगा
0: जी।
1: और विशेष करके हम उनको याद करते हैं उस दिन
0: जी। तो जैसे कि आपने कहा कि कबीर साहब के जो दोहे हैं समाज का एक दर्पण जैसे हम कह सकते हैं, तो कबीर जी की किस दोहे ने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों?
1: सद्गुरु कबीर साहब के तो जितने भी दोहे हैं मनुष्य को प्रभावित करती ही है, और चूँकि मैं एक कबीरपंथी हूँ, कबीर साहब के मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए तो उनके एक एक साखी अनमोल रतन के समान है, अनमोल धन के समान है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक साखी जो मुझे बहुत पसंद है कि माटी कहे कुम्हार से
0: जी,
1: तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। एक साखी ये है, और एक तो ये है कि आपा तजे हरी भजे, नकसिख तजे विकार, सब जीव

0: जीवन से निर्भर रहे साधु मता है सार।
1: अर्थात
0: आपातजे का अर्थ है अहंकार को त्याग करना। मनुष्य कितनों भी पढ़ा लिखा हो, कितनों भी ज्ञानी हो, कितनों बड़ा पद प्रतिष्ठावान हो, लेकिन अगर उसमें अहंकार है तो सब जो नैतिक मूल्य है वो सब व्यर्थ समान है।
1: वही उसका पतन हो जाता
0: है। और अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो लेकिन अहंकारी ना हो उसमें, तो वो व्यक्ति को हमेशा ऊंचा बनाता है।
1: अच्छा।
0: तो मनुष्य को कभी भी जो थोड़ा सा हमें जीवन मिला हुआ है, जितना भी समय हमें जीवन मिला है, अहंकार रहित जिए, राग द्वेष से परे होकर के जिए और बेहतर जीवन जीने की प्रयास करना चाहिए।
1: जी,
0: तो ये सद्गुरु कबीर की साहेब की साखी मुझे बहुत पसंद है। सभी साखियाँ मुझे बहुत पसंद है, आपने पूछा तो मैंने ये बताया।
1: जी जी जी, आचार्य जी आप हमें बताएं कि कबीर साहब जी ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस साहित्यिक रूप का प्रयोग किया?
0: सद्गुरु कबीर साहब के समय में जो मध्यकालीन संत परंपरा है
1: जी,
0: उसको हम भक्ति काल की परंपरा भी कहते हैं
1: जी,
0: भक्ति में, और विशेषकर उत्तरी भारतीय संत परंपरा में कबीर हुए, सबसे पहले कबीर माने जाते हैं, फिर मलिक मोहम्मद जायसी हुए, फिर सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, सभी का माध्यम अपने शब्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक गेय के माध्यम से गा करके वो बोलते थे, गा करके, क्योंकि उस समय में इतना खौफ था, सिकंदर का पीरियड है उस समय, सिकंदर का पीरियड आता है, तो सहज रूप में डायरेक्ट आप बात अपना नहीं कर सकते थे, लेकिन भजनों के माध्यम से गा करके, साखी दोहों के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब ने आम जीवन, आम जनमानस की दिनचर्या, जीवन शैली को देखते हुए, उस समय की सामाजिक स्थिति को देखते हुए, उन्होंने ज़्यादातर गेय के माध्यम से अपने शब्दों को भजनों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, साखी के माध्यम से प्रस्तुत किया। वैसे कबीर साहब के बाद और भी हुए, स्वामी चैतन्य प्रभु
1: जी,
0: मीराबाई, ये लोगों ने भी अपने संदेश को भजनों के माध्यम से ही, चाहे वो समाज को नया रास्ता दिखाने के लिए या प्रभु भक्ति के लिए
1: जी,
0: दोनों का माध्यम उन्होंने गेय को ही चुना
1: जी। और भजन तो जैसे कहते हैं सबसे उत्तम मार्ग होता है ईश्वर तक पहुंचने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

0: तो जब हम कबीर साहब की बात कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि उनके देहांत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर कौन सी प्रसिद्ध घटना घटी थी?
1: सदगुरु कबीर साहब के समय में जैसे काशी में मान्यता थी काश्याम मरणाम मुक्ति, काशी में जो मरता है वो मुक्ति को प्राप्त
0: जी
1: करता है।
0: जी
1: लेकिन सदगुरु कबीर साहब इस चीज़ को नहीं मानते थे। कबीर साहब कहते थे कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करणी ऊंच न होए,
0: जी
1: सोवन कलश भरे सुरैया साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, उसका व्यक्ति का कर्म ऊंचा होता है। और जहाँ व्यक्ति का कर्म ऊंचा है, कर्म अच्छा है,
0: जी
1: व्यक्ति कहीं भी मरे वही उसका मथुरा और काशी है। सदगुरु कबीर साहब के समय में मगहर है, काशी से लगभग 240 किलोमीटर समथिंग, वहाँ पर एक मगहर गांव है। और कहा जाता है कि मगहर मरे सो गधा होए, राम प्रतीत भल नर सोए। मगहर में जो मरता है वो गधा को प्राप्त होता है, गधा योनि में जाता है।
0: अच्छा
1: सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि चलो हम चल करके देखते हैं कि हम गधा होते हैं कि क्या होते हैं।
0: जी
1: और कबीर साहब मगहर पहुँचे। मगहर पहुँचने के बाद आज भी वहाँ एक गुफा है, और उसी गुफा में कबीर साहब अंदर प्रवेश किए और अपने शिष्य जो हिंदू और मुसलमान, मगहर का राजा था बिजली खां पठान,
0: अच्छा
1: उस समय वहाँ का उस क्षेत्र का नवाब था, और वो भी कबीर साहब के भक्त थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपने आप को एक गुफा में कैद कर लिया, और कहते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे या 1 या 2 दिन बाद जब कबीर साहब गुफा से नहीं निकले तो हिंदू मुसलमान दोनों ने जा करके देखा वहाँ पर,
0: जी
1: कि तो वहाँ पर कहते हैं कि कुछ था नहीं, एक कमल पुष्प था और कुछ चादर था।
0: अच्छा
1: कबीर साहब वहाँ पर नहीं मिले। और जब उसके डेड बॉडी नहीं मिला, कमल पुष्प और चादर दोनों को लेकर के झगड़े हुए हिंदू और मुसलमानों ने, तो कहते हैं कि उस समय एक आकाशवाणी हुई,
0: जी
1: तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डारी, सुन के यह बानी अचरज मानी, देख निशानी सिर मारी। कहते हैं कि तुम पर्दा खोल के देखो, वहाँ कोई मुर्दा नहीं है,
0: जी
1: वहाँ कुछ नहीं है, तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वहाँ पर कुछ नहीं है। और बाद में हिंदू मुसलमानों ने उसको बांट लिया, चादर को मुसलमानों ने लिया और फूल को हिंदुओं ने लिया।
0: जी
1: आज भी पूरी दुनिया में कबीर साहब ही एक ऐसे महापुरुष हुए जिनकी 2 समाधियां बनी, हिंदुओं ने भी बनाया और मुसलमानों ने भी बनाया। वस्तुतः

इंसान की एक ही समाधि होती है, लेकिन कबीर साहब की दो समाधि, एक अद्वितीय है पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ पर बड़े बड़े जो राजनेता हैं या कबीर के मानने वाले हैं हमेशा जा कर के मत्था टेकते हैं और उस जगह का दर्शन करते हैं। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले इंदिरा गांधी जी, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी, अनेक

0: खुश हैं, आज की युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है?
1: आज के युवा पीढ़ी सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्गों से बहुत कुछ सीख सकता है। आज धर्म से लेकर के राजनीति तक
0: जी
1: कबीर साहब के शब्द गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। एक राजनेता भी कहता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुर, मैं तो हूँ, मेरा क्या, ये तो मैं जनता के लिए समर्पित हूँ।
0: जी,
1: और जितने भी कबीर साहब के जो फॉलोअर हैं या इतर दूसरे मत पंथ संप्रदाय वाले, यहाँ भी आर्य समाज में बहुत से कबीर साहब के पदों को, भजनों को, दोहों को लिखते हैं। अच्छा, अच्छी बात है यहाँ। और आज के युवा पीढ़ी यही है कि आज के समय में इतना भौतिकतावादी का युग है और इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, फिर भी मनुष्य के जीवन में शांति का अभाव है
0: जी।
1: और कहीं न कहीं लोग अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं। जैसे आजकल जुआ, ड्रग्स, चोरी, लूटपाट, इस तरह से हमारे युवा पीढ़ी को कैप्चर कर लिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन सब मार्गों को छोड़ें और एक बेहतर जीवन की तलाश में आगे बढ़ें और बेहतर जीवन की तलाश के लिए कबीर के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें।

0: तो आप हमें कृपया बताएं, वापस उनके दोहों के हम पहुंच गए हैं। कबीर जी ने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, इस पंक्ति के माध्यम से वे ईश्वर के किस रूप का वर्णन करते थे?
1: सदगुरु कबीर साहब के समय में ज़्यादातर जो झगड़े होते थे अपने अपने मजहब को लेकर के होते थे।
0: अच्छा,
1: एक कबीले दूसरे कबीले वाले लड़ते थे, एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप, और कहते थे कि एक दूसरे के मूर्ति को लोग फेंक देते थे इधर उधर।
0: अच्छा,
1: और आपस में झगड़ते थे। सदगुरु कबीर साहब ने इसको बारीकी से देखा और समझा, और एक नया रास्ता सदगुरु कबीर साहब ने दिया कि अरे भाई, तुम जिस परमात्मा को बाहर ढूंढते हो, बाहर पूज रहे हो, वो वस्तुतः बाहर नहीं है, हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो कहते हैं कि मनुष्य मृगा की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया जानत ना है। कस्तूरी मृग के नाभि में ही रहता है
0: जी,
1: लेकिन मृगा नहीं जानता कि कस्तूरी मेरे अंदर
0: जी
1: है, और उसके खुशबू को बाहर समझ करके वो बन बन इधर उधर इधर उधर भटकते रहता है
0: जी।
1: साहब कहते हैं कि इसी तरह से ये मनुष्य है, जिस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते हम बाहर थक गए, वस्तुतः बाहर मिला नहीं, वो हमारे हृदय में, हमारे दिल में है। तुर खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ पल भर की तलाश में, परमात्मा हमसे दूर नहीं है। कहते हैं कि एक बार मनुष्य देवता के पास गए कुछ न कुछ शिकायत लेकर के
0: जी,
1: कि हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भगवान ने सोचा कि आज तक मैंने जितने भी जीव जंतु बनाए कभी किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही मैंने मनुष्य को बनाया शिकायत आने लगी मेरे पास, शिकायत की पोटली आने लगी मेरे पास। देवताओं की मीटिंग बुलाई गई, देवताओं ने कहा भगवान से क्या बात है। भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य से बचना चाहता हूँ, मैं मनुष्य से बचना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि देवताओं ने कहा, किसी ने गुफा में चले जाओ, किसी ने कहा पहाड़ों पे छुप जाओ, किसी ने कहा समुंदर के गहराई पे चले जाओ, किसी ने कहा चांद पे चले जाओ। भगवान सोचता है कि इंसान इतना बुद्धिमान है कि सब जगह मुझे ढूंढ लेगा
0: जी।
1: उसी में से एक देवता ने कहा कि भगवान, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी इंसान के हृदय में बस जाओ। इंसान हमेशा बाहर ढूंढेगा आपको
0: जी,
1: लेकिन अपने अंदर कभी नहीं ढूंढेगा। और आज तक इंसान बाहर ही ढूंढ रहा है भगवान को
0: जी,
1: लेकिन भगवान कहाँ है? उसके दिल
0: अंदर में,
1: उसके हृदय में।

0: इंसान चांद पे ढूंढने चला गया, इंसान समुद्र के गहराई में चला गया, पहाड़ों पे चला गया, एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए, लेकिन अपने तक आज तक नहीं पहुंचा है। और अपने तक पहुंचने के लिए बाहर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह एकांत में बैठकर अपने अंदर की यात्रा करने की ज़रूरत होती है।
1: जी।
0: तो साहब ने यही बताया कि बाहर नहीं है वस्तुतः, हमारे दिल में है वो परमात्मा, और उसी को जानना है, उसी को समझना है। ये कबीर साहब के मूल फिलॉसफी।
1: तो अगर कबीर साहब आज हमारे बीच होते तो समाज को क्या संदेश देते?
0: सदगुरु कबीर साहब के समय में समाज की बहुत दयनीय स्थिति थी
1: जी,
0: और आज भले ही लोग पढ़े लिखे लोग हैं
1: जी,
0: लेकिन कहते हैं कि गलती वो नहीं जो बचपन में हुई, गलती तो वो है जो लड़कपन और जवानी में हुई।
1: अच्छा।
0: इस देश को खतरा, इस समाज को खतरा जितना लुच्चे लफंगों अनपढ़ लोगों से उतना नहीं हुई है, जितना कि पढ़े लिखे हुए लोग और अच्छे लोगों की निकम्मेपन से हुई है।
1: अच्छा।
0: तो आज के समाज में सदगुरु कबीर साहब के अगर हम वचनों के अनुसार से देखें तो समाज में जितने भी छुआछूत है, अंधविश्वास है
1: जी,
0: जीव निषेध है, इस पर कबीर साहब ने बहुत ही करारा प्रहार किया है।
1: तो आपको लगता है आचार्य जी कि ये जो हम कुरीतियों की बात कर रही है, आगे के ज़माने बहुत ज़्यादा थे कि अब हैं वो बढ़ चुके हैं?
0: आज भी है लेकिन उसका नज़रिया बदल गया है
1: जी,
0: आज भी है लेकिन उसका नज़रिया बदल गया है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेते ही उसको बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। तुम हिंदू हो, हिंदू में तुम इस जाति के हो
1: जी,
0: तुम मुसलमान हो, मुसलमान में तुम इस जाति के हो
1: जी,
0: तुम अमीर हो वो गरीब है,
1: वो फर्क जी
0: आज भी लोगों को सिखा दिया जाता है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें अंधविश्वास थी उस समय, और आज भी लोग देखते हुए भी अंधे बन रहे हैं
1: जी।
0: आज लोगों के पास आँख तो है लेकिन दुनिया फिर भी वो नहीं दिखाई देती है
1: जी।
0: पहले के लोग अंधे नहीं थे ना समझते, तो पहले और आज के समय में थोड़ा सा फर्क है। आज हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन की तलाश में है और सामाजिक कुरीतियों को छोड़ते हुए
1: जी
0: आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है
1: जी। तो आचार्य जी, आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जाते जाते आप अपने सभी जो श्रोता हैं, जो कबीरपंथी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सभी श्रोताओं को कबीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और 29 जून को कबीर मंदिर बोंतेर बाकवा में हम कबीर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। साथ ही साथ कबीर के वचनों को, कबीर के भजनों को हम उस दिन गाएंगे बड़े तन मन धन से, और उनके उपदेशों को भी हम लोगों को बताएंगे। हम तो यही सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आना कबीर पंथ में, खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। तो कबीर साहब के मार्ग को अनुसरण करना, जरूर ही आपका जीवन अच्छा बनेगा और बेहतर बनेगा।
1: भक्ति मार्ग सुगम मार्ग है और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: बस अपने आप और अपने ईश्वर, अपने कबीर साहब पर विश्वास बनाए रखें, सही मार्ग पर हमको ले चलेंगे। तो श्रोताओं, आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम समाप्त हो चला। कोटि कोटि धन्यवाद बुंदिया बाकवा के कबीर मंदिर, विशेषकर आपको आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज, और धन्यवाद डोमिनिक और हमारी पूरी रेडियो टीम को भी। कबीर जयंती की मंगल कामनाएं, नीतुषा का प्रणाम, शुभ दिन, साहिब बंदगी।
2: टाइम चेक सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं आशिता से संक्षिप्त समाचार। आशिता, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। हर वर्ष आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन महिलाओं और पुरुषों को सम्मान

0: करने के लिए समर्पित हैं जो रक्तदान के माध्यम से अनगिनत लोगों की जान बचाने में योगदान देते हैं। साथ ही ये अवसर नियमित रक्तदान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है ताकि मरीजों की लगातार बनी रहने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। रक्त ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई गंभीर बीमारियों के उपचार और जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मॉरिशस के एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी ने स्वास्थ्य पेशेवरों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने दूसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। डॉक्टर जीतू अस्पताल की गायनेकोलॉजी विशेषज्ञ और संघ की सचिव डॉक्टर वंदना बक्तावो के अनुसार भारत, फ्रांस और अफ्रीका से आए कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे प्रसूति एवं स्त्री रोग के क्षेत्र में नवीनतम सिफारिशें और सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धतियों को साझा कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य मॉरिशस में महिलाओं प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार करना तथा महिला स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के आदान प्रदान के माध्यम से ये सम्मेलन मॉरिशस के स्वास्थ्य पेशेवरों को नई जानकारी और आधुनिक चिकित्सा ज्ञान प्रदान करेगा जिसका सीधा लाभ महिलाओं के स्वास्थ्य को मिलेगा। और एक बार फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। आपको हम बता देते हैं कि सुबह 8 बजे ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ तुर्की के खिलाफ के साथ और स्कोर रहा 2-0, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल दागे और तुर्की 0 रहा। ग्रुप बी में हम आपको याद दिला देती हैं कि जर्मनी खेलेगा क्यूरासाओ के साथ। ये कह सकते हैं कि दिलचस्प मैच होने वाला है। और रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका, ईरान और मध्यस्थ देशों के नेताओं तथा वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित शांति समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये आश्वासन दिया है कि आज रविवार को इस शांति वार्ता पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कूटनीतिक वार्ताएं अब एक ऐसे समझौते पर केंद्रित हैं जो दोनों देशों के बीच जारी तनाव और संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि समझौता अभी अंतिम रूप से हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, जबकि दोनों पक्षों ने बातचीत में प्रगति स्वीकार की है। और स्पेस एक्स के शेयर्स में बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद आई भारी तेजी के चलते एलन मस्क के दुनिया के पहले खरबपति यानी कि ट्रिलियनेयर बनने का दावा किया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक वित्तीय और कारोबारी जगत का ध्यान आकर्षित किया है तथा एक बार फिर एलन मस्क की संपत्ति और उनके व्यावसायिक साम्राज्य को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। साथ रहिए, हम सुन पाएंगे शुभ समाचार। शुभ समाचार सुनिए। आवृनी लतानी कैट्रोबोन में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री मिथिलेश्वर बनी मांडब, श्री मिथिलेश्वर बेनी मांडब जिन्हें मिथिल सीनियर लेक्चरर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, जो MGI में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके घर कैट्रोपून से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडियर हॉफ पॉ 3 PM टेम्पल रोड रिविया जोरोंपा में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल असलम भोला जिन्हें असलम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 2:00 PM के मकान रिविया जोरोंपा से उठाकर दफनाने के लिए का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

इंतहा नहीं। मेरे अज़ीज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। ये रेडियो मॉरिशस हैं और आपकी समागतों की नज़र है उर्दू प्रोग्राम बज़्म अकीदत। निसार अख्तर दिल की अता गहराइयों से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता है। आज माहे ज़ुलहिज्जा का 27वां दिन है, यानी ये महीना अपने अख्तिताम की जानिब रवा दवा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिन बाद नया हिजरी साल आने वाला है। दुआ है ये नया इस्लामी साल हम सब के लिए सलामती, खैर व बरकत और कामयाबियों का पैगाम लेकर आए, आमीन। सामईन, नए साल का मतलब ये भी है कि माह मुहर्रमुल हराम की आमद होने वाली है, वो माह मुकद्दस जिसे हुरमत वाले महीनों में शुमार किया गया। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस महीने के फ्यूज़ व बरकात से माला माल फरमाए, आमीन। और आपको ये भी बता दें कि आज हम यानी माह मुहर्रमुल हराम के कियामत की मुनासिबत से आज हम उन वाक़यात का ज़िक्र करेंगे जो इस माह मुबारक में पेश आए थे। सामईन, हस्ब रिवायत आज भी आप अपने पैगामात, अपनी दुआएं, अपनी फरमाइशें हमें इस नंबर पर ज़रूर भेज सकते हैं, 5251700 5251700। आइए बज़्म अक़ीदत का बाकायदा आगाज़ सूरा मुल्क की तिलावत से करते हैं। बाग़ौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को मुसलमानों के खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन की शहादत हुई थी। आप रदी अल्लाह ताला अन खौफ खुदा के पैकर और हकीकी इबादत गुजार थे। जो भी आप रदी अल्लाह ताला अन की सोहबत में रहता वो भी मुतकी परहेज़गार बन जाता था। हज़रत सैदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन ने दीन की सरबुलंदी के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन का दौर खिलाफत इस्लाम के बेहतरीन दौर में शुमार किया जाता है। यकीनन आप रदी अल्लाह ताला अन एक एहतसाज़ शख्सियत थे।

सामईन कराम, माह मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख को अल्लाह तबारक व ताला के औलिया कराम में से, अल्लाह पाक के दोस्तों में से एक अजीम वली कामिल सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैदना अस्सैयद अस्सन्नद पीर जमाल शाह बिन मुर्तुज़ा रहमतुल्लाली का विसाल हुआ था। आप रहमतुल्लाली सन 1848 में हिंदुस्तान से मॉरिशस इस गरज से आए थे कि मुस्लिम कौम की रहनुमाई, उनकी इस्लाह और रूहानी तरबियत हो। जब आपकी वफ़ात हुई तो उस वक्त आप रहमतुल्लाली की उम्र मुबारक 45 साल थी। आपने आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर की कि आप जामा मस्जिद पोटलवी के इहाते में दफन होना चाहते थे। बिलाखिर हज़रत सैयद पीर जमाल शाह रहमतुल्लाली का मज़ार जामा मस्जिद पोटलवी के इहाते में मरजाए खलाइक हैं, जहां अक्सर व बेशतर अकीदतमंदों का हजूम रहता है। सामईन, आइए चंद पैगाम लेते हैं। सबसे पहला पैगाम हमें पोटलवी से मौसूल हुआ है, मोहतरमा बीबी आयशा जिहान अली बुकस की तरफ से। दरअसल उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हैं, ख़राब हैं, तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अच्छी सेहत अता फरमाए। अगला पैगाम हमें गुडलैंड से मौसूल हुआ है, मोहतरमा बिल्किस और नायाब ने एक कलाम की फरमाइश की है। आप दरअसल ताहिर कादरी की नातें सुनना पसंद करती हैं, तो आइए ये अगला कलाम आप दोनों के नाम।

मोहतरम सामईन, उर्दू प्रोग्राम बज़्म अकीदत में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता है। आमद मुहर्रम उल हराम के मुबारक मौके पर आज हम इसमें पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। माह मुहर्रम उल हराम का दसवां दिन यानि आशुरा हमें शहदाए करबला बिलखसूस इमाम आली वक़ार हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनकी याद दिलाता है। मैदान करबला में करबला वालों का इस्लाम की खातिर

निजान का नजराना पेश करना रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। सामईन, अगला पैगाम हमें पोविदांस से मौसूल हुआ है। मोहतरमा शमीमा हमें लिखती हैं कि उनके शौहर जनाब अली वजीद अली ने इस साल सवाब की दरख्वास्त की है अपने चंद रिश्तेदार के लिए। सबसे पहले उनकी अम्मी मरहूमा फातिमा वाजिद अली, उनके अब्बू कासम खां वाजिद अली, उनके दादा मरहूम अब्दुल वाजिद अली और उनकी दादी मरहूमा अमीरुन तिलावन खां के लिए। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरहूमीन के लिए को की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, माहे मुहर्रम उल हराम की 14 तारीख को शहज़ादा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाही यानी हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान कादरी रहमतुल्लाही का विसाल हुआ था। आप रहमतुल्लाही ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, उलूम दीनिया की तरवीज और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने में सर्फ फरमाई। आप रहमतुल्लाही ने अपने वालिद मोहतरम की इल्मी और रूहानी मिरास को आगे बढ़ाते हुए उम्मत की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया। सामईन, अगला पैगाम। बंधु और कौमाली फैमिलीज़ में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आखिर में उन्होंने एक कलाम की फरमाइश की है, मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी की ज़बानी। आइए ये खूबसूरत कलाम मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, आपको याद दिला दें कि आज हम माह मुहर्रम उल हराम के मौके पर इसमें पेश आने वाले वाकयात का ज़िक्र कर रहे हैं। अब हम जिस अजीम शख्सियत का ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के साबिक रुकन मुफ्ती मुहम्मद फ़ारूक अत्तारी मदनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपका विसाल माह मुहर्रम उल हराम की 18 तारीख को हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दावत इस्लामी में दीन की इशात, इस्लाह उम्मत और नेकी की दावत को आम करने में भरपूर किरदार अदा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह तो बाहयात नहीं, मगर उनकी दीनी और तंजीमी खिदमात दावत इस्लामी के सफ़र को रोशन किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफ़रत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

मिसाल हज़रत सैदना बिलाल हबशी रहमतुल्लाली का विसाल हुआ था। यूं तो तमाम सहाबाए कराम के अपने अपने दर्जे हैं, मगर उन मुकद्दस हस्तियों में हज़रत सैदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख़ास मकाम व मरतबा हासिल हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन इस्लाम की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त की। खौफ खुदा हो या इश्क रसूल, तकवा व परहेजगारी हो या इबादत व रियाजत, करामत व शराफत हो या इस्तकामत, आजजी हो या हुस्न अखलाक, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात में इन तमाम खूबियों की झलक दिखाई देती थी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा ये है कि ग़ुलामों को सीने से लगाने वाले आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान फरमाते थे।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिन बुज़ुर्गों के फैज़ क़ुदूम से शमग़ इस्लाम फ़रोज़ा हुई, उन मुक़द्दस हस्तियों में से एक महबूब यज़दानी हज़रत सैयद अशरफ़ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाही की ज़ात बाबरकत है। माह मुहर्रमुल हराम की 28 तारीख को आप रहमतुल्लाही का विसाल हुआ था। आप रहमतुल्लाही ने अपने इल्म की रोशनी से लाखों दिलों को जगमगाया। आप रहमतुल्लाही ने अपने इनकलाबी ख्यालात और अंदाज़े फ़िक्र से फ़लसफ़ाए तसव्वुफ़ को नई बुलंदियाँ अता की। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसे बुज़ुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। आइए आज का आखिरी पैगाम लेते हैं। वालिद प्रित पोर्टली से मोहतरमा सकीना हमें लिखती हैं कि उनके फूफा समा और उनकी फूफी जाहिदा केबान हज के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सलामत अपने घर लौटे हैं, सब अच्छे से गुज़रा। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके हज को, बल्कि तमाम हुज्जाज कराम के हज को कबूल फरमाए। उनके बच्चे वसीम, ताहिर, समीरा और ऐमन की तरफ से ढेर सारी दुआएं।

सामईन कराम, इसी आखिरी कलाम के साथ हमारी आज की बज़्म-ए-अक़ीदत महफ़िल अख्तिताम पज़ीर होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने माह मुहर्रमुल हराम में पेश आने वाले वाक़यात का ज़िक्र किया। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस माह मुक़द्दस के फ़ुयूज़ व बरकात से मालामाल फ़रमाए, अहले बैत और औलिया कामिलीन की बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। सामईन, आज भी आपके पैगामात और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर।

फरमाए, आमीन। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए, दिल नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मर यही रस्में दुनिया हैं। अब हमारी मुलाकात अगले इतवार को होगी। जाने से पहले आप सभी को नया हिजरी साल बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

0: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
1: मॉरिशस से वाले पढ़े सरिया के काले 11 मणि आगे रहते.

0: शक्ति ओम शक्ति ओम पर शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम पर शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति
1: हॉलीवुड टॉप 10 Hollywood Top 10 with Sundaram.
2: Hollywood Top 10 சிறந்த தமிழ் பாடல்கள். உங்கள் விருப்பமான பாடல்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். SMS மூலமாக 5718567757 5718567 Hollywood Top 10 சிறந்த தமிழ் பாடல்கள்
3: Number 10.

0: Number four.
1: ஆல்பம் நோவால வரும் அடுத்து வரும் பாடல்.

การดูแลของเราเองเราอยู่ในโลกของเรา

你快乐吗，朋友？但愿你天天健康平安，开心快乐。好，接下来为大家送上的是心语。

听众朋友，今天的汉语普通话好歌送给您的节目将要接近尾声，主持人又要跟大家说再见了，非常感谢您的陪伴。

0: 生了，往后咱好好干活，多多挣钱，把这几个孩子培养成人，咱俩人幸幸福福，快快乐乐的寻找咱俩人从前的影子。大爹，这不好吗？
1: 好，孩子们，我也不止一次在想，你说在这人生地不熟的，这要抓到不就麻烦了吗？
0: 可不咋的，
1: 尤其城市人多，找街。孩子们，小点分机队上来了。
0: 他爹，撤！
1: 你先撤，我掩护。
2: Radio Mauritius 89 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius. मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग

0: नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए इस समय शाम के 4:09 हो चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। वैसे हर हफ्ते कोई ना कोई मैं विषय अवश्य लेकर आती हूँ, पर आज का जो विषय है सोचने वाला है और आप सभी का जो विचार है उसका स्वागत है। और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 4028085 पर कचौंदे 80 85 पर, या फिर 5251 7005 पर। अगर लाइन नहीं मिले तो आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। यह विषय बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ट्विस्ट हम डालेंगे इसमें। विषय कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। क्या 50 साल पहले का जीवन आज के आधुनिक जीवन से बेहतर था, या सादगी भरा कल, या सुविधाओं से भरा आज, कौन सा जीवन बेहतर है? आज हम और आप कार्यक्रम में इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या 50 साल पहले का जीवन आज के आधुनिक जीवन से बेहतर था, या सादगी भरा कल, या सुविधाओं से भरा आज, कौन सा जीवन बेहतर? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सभी के दिल को छू जाए। क्या 50 साल पहले का जीवन आज के आधुनिक जीवन से बेहतर था? जब हम अपने माता पिता या दादा दादी की बातें सुनते थे तो अक्सर एक वाक्य सुनने को मिलता था, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हर दादा दादी यूं ही ऐसे ही कहते हैं, और सच कहें तो कभी कभी लगता है कि शायद वे सही कहते हैं। 50 साल पहले लोगों के पास ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वक्त, समय। समय अपने परिवार के लिए, समय अपने रिश्तों के लिए, समय अपने पड़ोसियों के लिए। उस दौर में घर छोटे थे लेकिन दिल बड़े थे। आज घर बड़े हो गए हैं, लेकिन कई बार दिलों के बीच की दूरियां भी बढ़ गई हैं। पहले शाम होते ही लोग घर के आंगन में बैठकर बातें करते थे, आज एक ही घर में रहने वाले लोग मोबाइल की अलग अलग स्क्रीन में खोए हुए हैं। पहले बच्चे अपने दादा दादी की कहानियां सुनते थे, आज कहानियां मोबाइल के माध्यम से हम सुनते हैं। पहले लोग कम कमाते थे लेकिन चैन की नींद सोते थे, आज सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन तनाव भी बढ़ गया है। पहले रिश्ते निभाए जाते थे, आज कई रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए नहीं बल्कि समय मिलने पर याद किए जाते हैं। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। कि क्या 50 साल पहले का जीवन आज के आधुनिक जीवन से बेहतर था, या सादगी भरा कल, या सुविधाओं से भरा आज, कौन सा जीवन बेहतर था? तो चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सब कोई की।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: सब चल रहा है, मेरा गाड़ी चल रहा है, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक सब चल रहा है। और हमने सब एगो छोटा से सब मान कर कि सच्चे के चला पूजा के सच्चे का चला पूजा करे के जब हर जिमोस के मीठी वाणी बोली।
0: धन्यवाद।
1: आले हाँ, तो आगे

0: लेपोक सैकड़ बनाने आवो बहुत अच्छा रहल, सत्संग बहुत अच्छा रहल, सत्संग रहल मिये रहल और मला जो ताने रहल, दादा दादी से सब कोऑपरेशन, अति से वाजन से सब कोऑपरेशन रहल, कबो खाना पीना सब कमती रहल, पहले देवत हर मतलब मोबाइल तो नहीं रहल, मिस्र में कम्युनिकेशन जस्ती में यह रहल, हब्बी के लेपोक डिसएडवांटेज ढेर बा, जितना चीज सब बनल बा सब कल कंटा से बनल बा, पोजिशमिक से बनल बा और घास भूसा से बनल बा और हबी मोबाइल हो गला, मोबाइल तो धरल एगो अच्छे हो गल बा, धरल एगो एडिक्स हो गल बा, सब आदमी लोग संगे एडिक्ट हो गल बा और एगो दीपांश है ना, एगो मोबाइल जब चलावत होता दीपांश बहुत ना और वो कर में रेवेन्यू नहीं बना हाउ प्लस वन में जो यहाँ मोबाइल अथी कर ला ते सकते को तरह खाना पीना रोटी कपड़ा और मकान सकता की नहीं, तब में ये रहल समझ ना। हाँ तो अभी वाजा लोग को मजा घर बना हुआ था तब बड़का मिराई डाला था, पहले के लिपुक नहीं रहल है आले विनी सब रहल है, सब ऑब्जेक्शन कूटने रहल, अभी तो नहीं सकब अभी और आगे के आदमी मुंह जबानी रहल, बिन पापिये से कुछ पैसा उसा सब देवत है, माटी उटी सब सब अतिकरण सब आई देवत हरण सब, मैं हबी के लेपोक नहीं, हबी के लेपोक का मैं कागजो बनाव चोरी चपाटी ढेर हो जाता और हबी चोरी चपाटी ढेर हो गल बा, बस ये जस्ती हबी इंटेलिजेंट आदमी जस्ती चोर चपाटी हो गल बा, हमने देखा थे इसे हबी ना डे टू डे लाइफ में देखा था, मोरिस में क्या होता ना बहुत अन्याय होता, अन्याय अन्याय होता और अभी पॉपुलेशन बहुत बीमार बा, बहुत बहुत बीमार हो गल बा, ओकरा चाहना इलाज करे के तके इलाज करी, ऑथोरिटी सब मिल के लताब में सब कोम लोग के बैठ के चाहना देखे के है कैसे मलाड बेकरा कैसे चाहना एक गिरी करे के, तो है हमारे को छोटा संदेश बा, सब कोई के नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभ संध्या आपको। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको उनसे हम बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते विजय जी, कैसे हैं आप?
2: कैसे हो समाचार? अच्छा बना,
1: सब कुछ ठीक। और आपका क्या विचार है विजय जी सर?
2: भाई ने सच्ची बोल रहा, चल आता करिए थोड़ा पूजा अच्छा पूजियो करेगी अच्छा बोल रहा नहीं अच्छा बनी मन में विचार लेके आवेला जितना जाना सुना तो सके बोले प्रणाम नमस्ते। इतना बहुत पीछे हमने करा देना 50-40 साल पीछे, हाउ जन अगाड़ी की अगाड़ी के जमाना रहल औसन जमाना तीन से नहीं है, हाउ जिंदगी जिए के जितना अच्छा रहल धले अभी के जीव अभी तो सब फास्ते बात समा सुकून नहीं बा, चैन नहीं बा, हाउ के प्यार नहीं बा, हाउ के जिंदगी नहीं बा, बाप माँ के प्यार, भाई बहन, भाई चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, काम हम तो जहाँ रही जो लौदा में रही तो लिपुक में कुआ नहीं रहा, एक किसी नहीं रहा, हाउ लिपुक से जल नहीं सही पड़ी, कितना प्यार अपन परिवार में, अरे छोटा मोटा जब गांव में शादी रही तो जाके सब बाबा नाम से बम्बुआ नाम से लतना नाम से देखो आशो कर, हम दूसरे जीवन रहा, अभी देखो शादी में जाते धन्यवाद शादी में गए जाके बैसा चुचाप खा के अपन से मुनीत से रोनी देखे चला, वो शादी रही तो एक दो महीना से यहाँ गानी से जोगे तो होता थे जोगे तो होता है वो शादी बुझा कर गाँव में वो शादी बाटे और जो प्यार रहा दोस्त संगे माता पिता सब संगे नहीं हाउ सब छिनागल अभी तक चैनवे नहीं बाकी बोलते अभी तक तोहर परिवार बखर में नहीं जहाँ तो घर में बाकी नहीं बाटे ताकि वरना सामने अपन पोताप से बहुत हम आगे चला बहुत आगे दुनिया चला बा शर्मा हमी बहुत पीछे रह गई सर, दुनिया आगे चलता हमनी बहुत पीछे आती सर, आज नहीं जान सर जिंदगी में आर का आ रहे 10-25 वर्ष में का हुई कितना पीछे चल जाब सर, धले भी बहुत पीछे चल गई सर हमी आर से खिलार पीछे सर इतना ले दुनिया आगे चल बटे मैं हमार विचार है हथियार के बचाए गए सर गाड़ी के जिंदगी जो रहा औसन जिंदगी फिर से लूट के नहीं आई आर मतान कहते हैं जिंदगी भगवान हमारा बोले कौन चीज चाहे ले तम बड़ा रे तुने करेंगे 50 वर्ष पीछे फिर से अपन जीवन जी अब सर बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आर कोई नेता बच्चा की तो ढेर बटे जितना दूर बस सबके नमस्ते बोलते सब परिवार के नमस्ते आपके भी नमस्ते
1: आपको भी नमस्ते और शुभ संध्या आपको। चलिए एक और

0: श्रोता है लाइन पर, उनको सुनते हैं। हेलो राधा जी, नमस्ते।
1: हेलो पूजा जी, नमस्कार। आपने तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है आज।
0: धन्यवाद।
1: बहुत एकदम टॉप। मैं ये बोलूंगी कि आप जो जिस विषय पर आप बोल रही हैं, देखिए मैं अपने हिसाब से, मैं मेरा अनुभव मैं बोल रही हूँ। मैंने पिछले हुए कल को भी हमने देखा, हमें बीते हुए कल में भी हमने जिया है और हम अपने आज में भी जी रहे हैं। मानते हैं जमाना बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन आज बहुत दीवारें खड़ी हो गई है रिश्तों में पूजा जी। और पहले ऐसा नहीं था, पहले पता ही नहीं चलता था कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन क्रिश्चियन। एक शादी होती थी तो वो माहौल देखना होता था, पता नहीं चलता कि वो शादी किसके घर में है। इतने सब बराबर चावल चुनना, अचार डालना, पंडाल बनाना, जाकर बांस ढूंढना, वो सब करना, आपसी प्रेम। एक मृत्यु भी होती थी तो वैसे ही, एक बच्चा का जन्म भी होता था तो ऐसे ही, सब मिल मिलाकर अभाव था उस जमाने में, अभाव था, मानती हूँ अभाव था, लेकिन प्रेम बहुत था, आपसी प्रेम। ये महसूस ही नहीं होता था कि हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। नदी पर जाना, कपड़ा धोना, मेल मिलाकर नहाना, खेलना पानी में, घर, वो एक दूसरा ही जमाना था, वो लौट कर आएगा नहीं। देखिए देखिए, ऐसा हम नहीं कहते कि अभी तकनीकी जमाना है, अभी अभाव नहीं, अभाव तो अब भी है। हम नहीं कह सकते कि अभी हम सभी लोग परिपूर्ण हैं, बड़े मजे से जी रहे हैं। अभाव, कमी तो हमेशा ही रहेगी, होगी समय के साथ साथ जैसे वक्त चल रहा है। लेकिन पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और मुझे तो अपने, मेरा जो अनुभव है, मुझे तो अपना वो पुराना ही दिन बहुत पसंद है।
0: मुझे भी
1: उसी को याद करके हम जीते हैं। और अभी जितनी दीवारें खड़ी हो गई है, हो सकता है पड़ोस में एक मृत्यु हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा।
0: नहीं चलेगा, ये तो
1: नहीं चलेगा। और लेकिन पुराने जमाने में वो और ही था, जिसने जिया है वो ही समझ सकता है वो कैसा जीवन था। यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, सबका अपना बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। और जिसने बोला भी, उन लोगों ने भी बहुत सही कहा।
0: सही कहा, बहुत बहुत
1: धन्यवाद पूजा जी। शुभ संध्या, शुभ रात्रि
0: आपको भी। चलिए अंगिरा जी को हम सुनते हैं। प्रणाम दादाजी
2: जी। नमस्ते बेटी।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: अच्छा है बेटनी, बेटी दो लोग के कृपा से। और आज तो विषय तनी कड़ा बा। गेल समय जो चल गेल, बड़ा दुख के समय रहल, बहुत बहुत दुख। जनला खाई के मिजेर रहल, लुगा के माँ जे नदी में धोई लुगा तो सूखी तब पहनब, तब ही बगारी। इस तरह से जल है सा। एक चीज अच्छा रहल कि परिवार में सांझ के बखत सब कोई जुटल रहे।
0: हाँ।
2: अच्छा, बहुत अच्छा रहल। और अभी के समय में बेटी सब चीज मिलत बा, कुछ कमी नहीं बा। परिवार के खुशहाली जो है, कमी हो जात बा।
0: हाँ।
2: कमी हो जात बा। और ऐसा करे चाहे कि सब कोई के मिला के कि परिवार के टूटे के नहीं, परिवार में जुटे के, सबके मिल के रहे के। बाकी अभी के राज बहुत बहुत सुखी है बेटी। जितना भी बोलबा कमी बा,
0: कमी बा।
2: जब जब मट्टी कोड़े बेटी, जे माँ के बोले तब जिन्हें बोलते तू मट्टी की तरी रह जाए बा, उजर माटी के घर लिपे के, बहुत दुख रहल बेटी,
0: बहुत दुख रहल। हाँ।
2: यही हम कह गए, अभी बहुत अच्छा बा, चल माँ समय ना, सब बदले ला,
0: बदले ला। हाँ।
2: नमस्ते बेटी।
0: नमस्ते दादाजी, नमस्ते। आपके विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता को हम सुनते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? हेलो।
3: हाँ हेलो।
0: हाँ जी, आपका शुभ नाम?
3: हाँ, मैं नंदिनी नेपोल हूँ।
0: नंदिनी जी, आपका स्वागत है। और आपका क्या विचार है?
3: मेरी विचार तो बहुत, हम लोग ने जिया है ऐसे पहले के जमाने में, आयो दुख लगती है बहुत अभी, बहुत

0: लगती है कि पहले के जमाने में परोस जितना थे तो हम परोस को अपने दादी के समान, हमारी माता जी बोलती थी ये आपकी दादी है छोटे से है, बड़ी हो गई, हर हर नया साल में जाकर अपने दादी को नहीं भेंट करते थे, वे दूर रहते थे, लेकिन जो समीप वाजा है वो एक्स्ट्रा बहुत खुशी, बहुत खुशी वाजा, अभी के वाजा नहीं भाभी थी, नहीं भाई सन, बहुत दुख भाभी, अभी के संस्कार भी नहीं बा हाँ, और हमने के दादा हाउ लिपोक तो सन कातोजों के हई, हम कैजों के रली कातोजों के, हमारे दादा हम निया रहे, दादा रोज सांझ के बोली आवास आवास बाबू लोग समझा करे लिली पर चढ़ के बैठ जायन, एगो लोटा में पानी लेके हाथ डाले, अभी हम के याद पर
1: हमारे तो हमारे दादाओ ऐसने बोले डांट डांट के बोले संध्या के बखत हो गलवा संध्या ने कर बे हाँ डांट डांट के
0: डांट की हाँ सच्ची की हाँ हवे सब भाभी हमने के संस्कार हवे मानिए भाभी जितना जना भाई लोग बतेरक सब कोई के बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा बात बतेलन रोज के सुनीला बेटी तोहर सब विचार सुनती रहीला कब लाइन नहीं मिले आज मिल गया
1: मिल गया लॉटरी मिल गया आपको
0: बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको भी
0: लेकिन अभी के जमाना अभी के केवल कैसे कहते हैं अभिमान में अभिमान में
1: जरा ढेर
0: जरा तो ईर्ष्या और झूठ जब छूट जाएगा तो संसार तो स्वर्ग हो जाएगा ये दो चीज नहीं छोड़ सकते हैं बहुत धन्यवाद
1: आप
0: दूसरों को मौका दें
1: धन्यवाद एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं कमला जी नमस्ते
2: नमस्ते पूजा जी
1: कैसी हैं आप
2: ठीक हूँ आप कैसे हैं
1: मैं भी ठीक हूँ और आज का हाँ जी बोलिए
2: आज का जो विषय है आपने बहुत अच्छा रखा है और मैं अभी अभी आराम फरमा रही थी तो मैंने जाके उठ के रेडियो डाला
1: अच्छा धन्यवाद
2: तो मेरा ध्यान आप ही पर थी मेरी ध्यान आप ही पर थी कि आज आप किस विषय पर बात लाएंगे अभी अभी तो सबको अपन अपन विचार दिलन जा और सबको के भी प्रणाम बोले थे और जुन जुन सैकड़ों के आगे हमने भी जियल है सा हम भी जियल है तो हमने के मेमोर वापस आन दिला हाँ 50 साल पहले के जमाने के कितना दुख रहल जंगल चारों बगल सबके लापाई के घर माटी के घर टीन के घर तब बाद में आल बेटों के घर हाउ जमाना में चपरत हल माँ बाप के बात सुने के जहाँ बोली बैठे के बैठ बस जहाँ बोली उठे के चाहे उठे के और कहूँ उलो के मर्ज के खिलाफ नहीं जाएगी
1: नहीं जाएगी हाँ
2: हाँ और ये कपड़ा धोई जाता लिसा नदी में मामा दादी चाची सबके संग हाँ और हुए नहा भी लिसा
1: हाँ
2: नहा के लुगा सुखावत लिसा
1: और जैसे मान ला है नदी के बोर जाइबा अभी हमार तो हमार याद में हमार नानी जात रहल हो जा नदी बोर तो तोरा बिठा के बोली चुपचाप बैठ अब वो लुगा धोई हाँ पटक पटक के लुगा धोई मान ला खीसो बात या खीसवा निकाल दी
2: पिट के गोली धोवाई पिट ना लेके जब सब मामा लेके जाए हाँ और ये लकड़ी भी आने जाते ली सब मामा के संगे एक दिन मामा बोले तू घरे रहो ए मुश्किल के वो बुटेई रहा तो हम पीछे से जीते पिया लेके गयी बुटेई में हम कुत्ता हमार पीछ पर गिर गरली अभी ले हमार निशानी बा हमार हाथ में बुते के काटा अभी ले निशानी बा हाँ और लकड़ी पाकी बने तो सरिया सरिया के पाकी बंधाई और हवे लकड़ी आन के खाना बनी हाँ और हो जमाने में माँ के स्वाद के खाना दादी के हाथ के स्वाद के खाना दूसरे रहल पूजा की एगो मालाद में रहल के खाना बनावल में हाँ आज सब कुछ ऐसा स्वाद से बने लकड़ी में चूल्हा में और अभी कहाँ बा अभी अभी कहाँ बा ये सब हाँ और आगे के जमाना में कहाँ ये थी हम

0: अच्छा लगता है लिसा जुजू में ना, हाँ कुजें कुजिन सब मिलके हमारे साथ दो चार सब कोई जुजू खेलब सर। अभी कहाँ बा जुजू, अभी तो सब कोई मोबाइल, लड़का सब मोबाइल में रहेला। हाँ कहाँ गल उ दिन बोले ला ना, राही नए नए रस्ता नया नया, हम न बदले तुम न बदले मगर सब कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया आज।
1: बदल दिया।
0: हाँ आज सब कुछ धन्यवाद बोला था। और ऐसे तो ढेर बात बोले के 50 साल के जमाने के पूजा जी, अभी तो और कोई के मौका दे सर और कोई के सुनब सर। धन्यवाद सबको,
1: धन्यवाद धन्यवाद, शुभ शाम को आपको भी, शुभ संध्या। चलिए हरीश जी को हम सुनते हैं। नमस्ते हरीश जी।
2: नमस्कार पूजा जी।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: मैं कहूँगा हमको पूजा नहीं करना चाहिए कि पूजा अच्छी बात करे, मीठी बात करे, वो तो हमेशा से मिठास है उसकी आवाज में। ये तो पूजा है, उसकी सादगी हमको अच्छा लगता है, उसकी फ्रैंकनेस होनेस्टी, जब आप जैसी बात करते हैं, जैसे आदर करते हैं बुजुर्गों को पूजा जी। हैट्स ऑफ टू यू,
1: गुड।
2: तो आज के विषय जैसी है, जैसे कि कमला आप अभी अभी उसने कहा बचपन में कैसे वो पुपित खेलते थे मिलकर, लड़कियों जो खेल खेलते थे, लड़कियों लड़कों भी सब सिवाय खेलते थे, कलेट खेलते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ये कमला की बात है, आपके विषय है तब कैसे बीते थे, अब कैसे हम जी रहे हैं। आपने कहा 50 साल पहले, पूजा जी फर्स्ट थिंग आई विल से 50 साल पहले मेरा शादी हुई थी, तो हम 1976 में हमारे होनीमून था। अब समझ जाएगी इतनी खुशियां ही खुशियां था। उस 1976 50 ईयर्स बाद तो कुछ किसे बोलते हैं परिवार साथ थे, हम सब इंटेग्रेटेड फैमिली थे। तो कुछ साल बाद कि हमने डिसाइड किया हमको बच्चों के खातिर, उसके एजुकेशन के खातिर हमको गांव छोड़ना पड़ा और शहर में आना पड़ा। तो उस वक्त जैसे जैसे बोल रहे हैं तब के जब 1950 ईयर्स बाद 50 साल पहले, तो जब एक बच्चा आ रहे थे फैमिली में पैदा होता, तो बहुत से बड़ा खुशियां मनाते थे सब परिवार इंटेग्रेटेड फैमिली। लेकिन उस वक्त जैसे हम भाई बहनों बोल रहे हैं, बहुत से दुख थे, बहुत से गरीबी थी, कमियां थी, लेकिन उस दुख उस कमियों के बीच में हम सब सुखी से रहते थे एक परिवार के जैसी, चाचा मौसी पुपू सब मिलते थे। अब आज के बात कर रहे हैं, तो अब के बात कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट जो हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम प्रोग्रेस ये हम रोक नहीं सकते, वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है, हमको अडाप्ट होना चाहिए। तब हम जवान थे, शादीशुदा अभी हुआ था, तो अब आज हम एक दादा हूँ, ग्रैंडफादर हूँ, जैसे कि राजा ने कहा 74 ईयर्स के, तो हम बुजुर्ग हैं, हमारे वक्त बोलते हैं एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस के बात कर रहे हैं, तो हम अपने परिवार में हम सुखी हैं। ये टेलीफोन जो है, जो व्हाट्सएप है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, हमको कुछ सेपरेट कर देते हैं। कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं या सोलिट्यूड है, लेकिन उस वक्त हम हमेशा साथ रहते थे। तो ये डेवलपमेंट हमको मानना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, हमको ये वक्त जो है हमको अडाप्ट होकर खुशियां ढूंढना चाहिए। हम खुश हैं क्योंकि कैसे बोलते हैं, वी आर रिच, सब कुछ है हमारे, सब सुविधाएं हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने पास्ट को जब सोचते हैं, दादी माता जी दादा पापा जब रहा था, कैसे हम खेत में काम करते थे, खेत में हम अब अपने भाई बहन से कमा से हम बिस्किट में हम लामे जाते थे, ऐसे तरह तरह तो यह कुछ याद आते हैं, तो हम कुछ सैड हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, हमको इस वक्त में जीना है और हमको खुशियां हमेशा ढूंढना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई जी

0: सिचुएशन हो पूजा जी, ये मेरा विचार था। थैंक यू वेरी
1: बहुत
0: मच।
1: बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी
1: मैं
2: हो?
1: भी ठीक हूँ। चलिए आपका,
2: मैं संगीता हूँ मौड़ालवे से।
1: संगीता जी आपका स्वागत है, बताइए आपका क्या विचार है।
2: हाँ हाई, आप हम तो सुता रही, सुनते सुनते तो और अच्छा विचार चले रही चले, सुने मन का दम बताया कि हाँ आगे के जमाने की बात बतिया थो ना।
1: हाँ
2: हाँ देखा, बहुत देख ले ऐसा कैसे पासे उल आगे के आगे, कितना सब कोई बड़ी खुशी, सब कोई बहुत प्यार से जिया था घर में सब कोई, फामी दादा अति मौसी मामू सब भिड़िए भिड़िए सब रहन था से, लेकिन सब कोई बहुत प्यार से सब कोई रहा था। अब भी कहाँ, और जहाँ एगो शादी रही तो वहाँ से हाँ तमन के माता जी जाए तो हम यो संगे संगे जाप सब काफी कुटाई सब पौली पोक चल गए, बहुत अच्छा लगा था शादी में कि कहूँ प्यार से। और शादी रही सब कोई नीचे बैठ के, ढेर आदमी नहीं रही थोड़े, सब कोई पत्ता नीचे डाल के बनान के पत्ता में और उसे भोजन करत रहन जा।
1: ये सच्चे
2: हाँ
1: रहा। हाँ
2: हाँ बैठ के सब कोई खाना। और अभी तो देखा बहाज उगास नहीं रहल, अभी तो सगरे सगरे बहाज सगरे तो जाने ला, अभी जाने ला वहाँ सब कोई यानी निश्चय बा डाले के वहाँ बहाज वहाँ चाहे ला डाले के अभी के आदमी लोग जैसन बात है। हाँ से माँ आगे ना बहुत प्यार प्रेम से सब कोई जिया था, स्वास्थ्य आवा के बाद बोला था सब देख ले है कैसे कैसे पासल बा। आ चूल्हा बारब सा लकड़ी, हमने के माता जी सिको कान के सिको लकड़ी उही में पकाब सा, हमने नहीं आगा से वजली सा उही में पकाब सा खाब सा। आ तकारी एक गो
1: एक
2: तकारी पकी एक गो से खाब सा,
1: हाँ निमन से खाप सो
2: निमन से कठहर
1: चटकार
2: के
1: रही।
2: तकारी हाँ
1: हाँ
2: बैगन का रोटी सब कोई खाई।
1: हाँ
2: और हई सब चाव नहीं हो, मुटका चाव नहीं मथल जे मांगलो
1: हाँ
2: हो पकाप सा, हमार
1: हाँ
2: माँ के
1: पका।
2: तो माता जी के 10 गो लैका वही पकाप सा सब कोई खाप सा, प्यार से सुटप सा। एगो दीदी में सब बहन 6 गो बहन रही सा, सब दीदी में सब बहन लोग एक एक गोली में बैस के बतिया आप सा प्यार देख ला कितना रहल,
1: बहुत रहल।
2: बहुत प्यार रहल आगे
1: हाँ
2: के बहुत। हाँ तो हाँ तो कोच बोलो
1: सटके
2: हम
1: सटके सब रहत रहल।
2: सब कोई
1: हाँ
2: साथ के। हाँ बहुत
1: हाँ
2: प्यार से अब नहीं लौके ला
1: अब
2: उसे,
1: नहीं लो के
2: अब
1: लाए, नहीं
2: अपन
1: बा।
2: अपन बहनिए भाइयों में तो दिखबा तो दूर दूर तरी मन सब जाने ला आगे ने। अब तनी झालू झालू बोल बस करो।
1: ई सच
2: हाँ
1: है।
2: हाँ तनी झालू आदमी करेला
1: ऐसे बोला था कि हाई सब बहिन एगो एगो लीली में सुतत रलंजा। हमरा तो
2: हाँ
1: याद दिला दिला, हम तो अपन फुफू संगे सुतत रहनी, नीमन
2: हाँ
1: से सुतावत रहल और बड़ी प्यार से। और हमर तो याद बा उस समय जब हमनी के कुजें कुजिन अयन जा, तब मातला बिछावब सा कि पा एगो एगो, हाँ एगो नाथ
2: नीचे
1: जैसे।
2: नाद बिछा के
1: हाँ
2: हो
1: उ पहले जैसे मोबाइलवा नहीं रहल,
2: नहीं रहा
1: नहीं रहल।
2: मोबाइल। हाँ
1: हाँ
2: नहीं रहा तो जस्ती ये सब नहीं रहा। अब
1: हाँ
2: हमने हो दूसर पियासी में रही सा ना, दूसर
1: हाँ
2: लेमोन में रही सा। हाँ अच्छा लगा था नीचे सब कोई बैठ के, हाँ सुध बा बतियाई बा
1: हाँ कहानी
2: जोन
1: सुनाई
2: मिलल जोन
1: बा।
2: मिलल। हाँ कहानी बोल बस जिसको
1: हाँ हाँ
2: जनदे
1: सच्चे
2: कोल
1: रहा।
2: में कहानी गुरुजी वो बोले बा वही सब बोलब सा।
1: ऊ सब रहा उ दिन। हाँ उ दिन तो बीत गल बा, अपने आए फिर से
2: और फिर
1: सच्चे।
2: ना यार
1: हाँ
2: सागे लगेला कबो
1: सागे।
2: बतियाई ला सामने बहन बहन में
1: हाँ
2: मिला सा वो दिन वहाँ अब नहीं आई ना, बहुत अच्छा लगा था
1: हाँ हाँ
2: बहुत अच्छा लगा था जिए के। हाँ हाँ से मैं चाहे ला खोजे के चाहे ला करे के तो
1: हाँ
2: हम अपन लड़का लोग संगे तीन गो मैं बीता मन मिल के खूब पत्तों से सबसे खूब मिल के रही ला, हम खुशी रही ला, हम नहीं खुशी है हमारे लड़का लोग के लुआ करे के।
1: हाँ ये सच्ची
2: हम
1: बात है।
2: पका उका के खाए के सब में अपन अपन घर हम दे दे ला लोग के, हम खुशी है उसे रहे के, हम नहीं खुशी है अकेले अकेले रहे के।
1: एक ये सच्ची
2: बस
1: बात
2: हम
1: है।
2: इसे नहीं बात हमारे मारे बेटा लोग के संगे रहा मत पत्तो मत वाज है वाजीन का बोले ला।
1: हाँ ई सच बात। बहुत बहुत
2: हाँ
1: धन्यवाद आपके
2: आगे
1: इस
2: पूछा
1: विचार के
2: जी।
1: लिए।
2: हाँ
1: धन्यवाद,
2: अच्छा
1: नमस्ते।
2: धन्यवाद।
1: चलिए धनी जी को हम सुनते हैं। हेलो, नमस्ते धनी जी।
2: नमस्कार पूजा
1: हाँ पहले पहले
2: जी।
1: आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, जो भी अभी लाइन पर हैं उन सभी से धैर्य की मांग है, मैं सभी को ये अवसर दूंगी।
2: जी,
1: चलिए
2: ये
1: अभी
2: शुरू ही
1: धनी जी
2: से
1: को सुनते हैं।
2: ऐसे शुरू अच्छा बोल रही है,
1: हाँ हाँ
2: ये शुरू ही से बोलना करना चाहिए।
1: चलिए बोलिए।
2: देखिए सभी तो बोल दिए हैं, सभी लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, जो जैसे होता था वैसे ही। तो पहले के समय ज्यादा अच्छा था, आज

0: बहुत से लोग वृद्ध माता पिता रो रहे हैं घर में, बड़े बड़े घर बन गए हैं परंतु उसमें रहने वाला कितने ही घर है जिसमें उसमें रहने वाला कोई नहीं है। क्यों? कि वे विदेश चले गए हैं, बच्चे विदेश चले गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, वही काम कर रहे हैं और वही जीवन बिता रहे हैं, तो यहाँ वृद्ध माता पिता को देखने के लिए कोई नहीं है।
1: कोई नहीं है।
0: बड़े बड़े घर बन गए हैं, पैसे हैं, बहुत पैसा है, अभी देखते हैं कोई घर बना रहा है उसमें टाइल, दीवारों में टाइल्स साट रहे हैं, तो सोचते नहीं है अगर बादल गरजेगा तो ये सारा टाइल्स गिरने लगेगा, फिर भी ऐसे ही रह सकती हैं, तो मतलब कि पैसा बहुत है आज लेकिन प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, एक ही घर में एक ही परिवार रह रहे हैं। जैसे दोस्तों ने बताया कि पहले के समय में अड़ोस पड़ोस में कितना मिलाव था, कितना प्रेम था, आना जाना, दीवार नहीं था, तो अभी एक ही परिवार में नीचे रहे हैं ऊपर रहे हैं, तो कुछ हो जाएगा आपको तो ऊपर वाला नहीं जानेगा, तो ऐसा बीत रहा है आज। प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, आंसू बह रहे हैं वृद्ध माता पिता के, तो यही कलप है जीवन। और पहले के समय में, पहले का जो जीवन था, किसी को पता नहीं था कि इतना बदलाव हो जाएगा, इतना बदलाव हो जाएगा, किसी को पता नहीं था, ये सोच में नहीं था। गाज आएगा, गाज मिलेगा पकाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, पानी के लिए इतना सुविधा होगा, देखिए आज तालाब सूख रहा है, तो न जाने क्या क्या होगा आगे में, ये अभी पता नहीं है।
1: नहीं है।
0: जी
1: तो आपके इस
0: जी जी
1: विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको। चलिए और भी श्रोता हैं लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो,
2: हेलो, प्रणाम बहन जी, कैसे हैं आप?
1: प्रणाम, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ।
2: हाँ, आज का जो विषय है बड़ा ही बढ़िया है, बहुत सुंदर विषय है बहन
1: धन्यवाद
2: जी, क्योंकि आज के दुनिया और कल के दुनिया में बहुत फर्क है बहन जी। पहले के जमाने में कितना कठिन था, लेकिन फिर भी हमें तनाव नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, लेकिन ये तो बीमारी आज बहुत गहराई हो गई है। क्यों? क्योंकि आज का जो जमाने, जीने की तरीका बदल गई है बहन जी। पहले हम लोग साधारण जीते थे, लेकिन जीवन बहुत सुखी था। माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन संस्कारी था, उसमें ज्ञान था, उसमें जीने का तरीका था, अपने बच्चों को संस्कार देती थी। पहले के जमाने में लड़की 15-16 साल का विवाह हो जाते, मेरी ही तो 16 साल की मैं माँ बन गई थी, विवाह हो गई थी, लेकिन फिर भी हम संस्कारी थी। जब हम लोग का विवाह हुई थी दो बहन का, तो माँ बोलते थे कैसे हमें जाकर पराया घर को कैसे अपनाना चाहिए, कैसे सुखी परिवार होना चाहिए, कैसे सहनशीलता होनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रेम से बोला। तो ये सब हम में था। हम 6 कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन छोटे से हम बैठका जाते थे वहां पर। देखिए बहन जी, अभी रेडियो के माध्यम से हम ज्ञानी बन गए हैं आप लोगों की कृपा से। पहले के जमाने में जब हम लोग छोटे थे, माँ बाप हमें बैठका ले जाते थे, तो वहां से भारत से कोई ज्ञानी आती थी, तो रात को हम जाते थे 6-7-8 बजे ले, हम सुनते थे। वो लोग हमें जीवन के बारे में कहते थे। हमें याद है, माता पिता भाई बहन हम सब जाते थे रात कर, हम बैठ कर आते थे 10 बजे। लेकिन आज जो सुविधा है, तो भगवान का कोटि कोटि प्रणाम है और MBSC के भी कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि ज्ञान हमें ढूंढना नहीं चाहिए। घर बैठे रेडियो हम काम कर रहे हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान के ना कारण ना मिलने के कारण हम भटक जाते हैं बहन जी। अगर ज्ञान पास है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, छोटी उम्र में हम लोग विवाह किए थे, लेकिन माँ, जब हम लोग छोटी छोटी थे, हम भाई बहन में लड़ते थे कि उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया, तो मामा

0: बोलते थे क्यों लड़ते हैं, जमा मैंने ये किया वो नहीं, नहीं किया। माँ बोला नहीं वो बीमार है वो इसीलिए नहीं किया, आप अच्छे हैं तो करना, वो अच्छा रहेगा तो वो करेगा। संस्कार सिखाते थे कि ऐसे करना ऐसे करना। तो फिर मामा बोलते थे जब सास ससुर के घर में जाएंगे वहां पर देवर रहेंगे, ननद रहेंगे, सास ससुर रहेंगे, तो आप लोग ऐसे लड़ेंगे नहीं अच्छा है। तो हमें सिखाते थे कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और बोला था कि अगर आप लोग शादी करके जाएंगे मुंह तोड़ जवाब दे के मेरे घर लौटेंगे, मेरे लिए दरवाजा, आप लोगों के लिए दरवाजा बंद। तो ये एक पत्थर की लकीर बन गया बहन जी, क्योंकि बोला प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, तब जाके घर बसता है। पहला घर में, परिवार में, भाई बहन में प्रेम होना चाहिए। हम लोग स्कूल जाने से पहले झाड़ू लगाते थे, अंगना बहारते थे, थोड़ा छोटा छोटा बर्तन था मंच का, तब हम स्कूल जाते थे बहन जी। बैठका जब आकर हम बैठका जाते हैं 3 बजे, तो हम लोग चाय पीकर जो जो जो कप है उसे धोकर तब हम बैठका जाते थे। ऐसा छोटा छोटा काम करते थे। तो माँ बोलते थे जीवन में मेहनत करना चाहिए, सब कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो आप लोगों को यह ज्ञान मिलेगा कि जीवन में कुछ करो, पढ़ाई करो और घर के भी कुछ कार्य संभालो। लेकिन आज के बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर कुछ कपड़ा धोना ये करना वो करना नहीं चाहते हैं। वही जब विवाह कर जाते हैं तो कैसे हम बोलते हैं तलाक हो जाते हैं, घर घर परिवार टूट जाते हैं। तो ये सब संस्कार पर आता है ना बहन, हमें सीखना चाहिए। तो यही मेरा संदेश है बहन जी कि पहले के जमाने में अभी के जमाने में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी के माँ बाप के पास समय नहीं है अपने बच्चों को सिखाने के लिए और संस्कार देने के लिए, क्योंकि समय ढूंढना चाहिए, छोटी छोटी काम बच्चे को सिखाना चाहिए। आज बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि सब फैसिलिटियाँ उन्हें जानती है पैसे कैसे मिलते हैं। मेरी माँ बोलते थे अगर ये काम अच्छा से करेगा मैं सुंदर सा एक झगड़ा आपको खरीदूंगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैं बहुत बड़े प्रेम से काम करती थी क्योंकि मुझे कुछ मिलने वाला है। आप लोग ये करेगा तो मैं आपके सुंदर सा मिठाई पकाएंगे, भोग पकाएंगे, आटा भूंज कर भोगने, मन भोगने बोलते हैं, मामा बोलते मैं पकाऊंगा। मैं बहुत पसंद करती थी तो मैं जल्दी जल्दी सब काम मामा को करते थे, तो हमें बहुत आनंद मिलते थे। छोटी छोटी बात आज हमारे घर परिवार को मैं संभाल सकती हूँ क्योंकि प्रेम है।
1: उस समय की बात थी और ये बहुत ही सुंदर समय था। चलिए आपके इस विचार के लिए बहुत बहुत अच्छा और अच्छा मेरी जी।
0: हाँ जी, और आप बहन जी, मैं आपको कहूंगा आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ आप हमसे बात कर रहे हैं, अगर आपका बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं होता, तो आप हम आपसे बात नहीं कर सकते और ना हम आपसे बोल सकते थे। ये आपका माँ बाप का प्रेम है बहन जी, ये मेरा प्रेम है जो मैं आपसे बोल रही हूँ, जो मैंने किया है। आज मैंने डट कर अपना घर संभाला, क्यों? क्योंकि माँ ने संस्कार दिया था कि बेटी जाओ मुंह तोड़ जवाब मत देना, घर में एक सहल सीता बनकर आगे बढ़ो। तो ऐसा घर हमेशा बनता है ना बहन,
1: बनता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार के लिए, और भी लोग हैं उनको भी हम अवसर देते हैं।
0: अच्छा,
1: धन्यवाद चमनी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए, और दो लोग हैं लाइन पर। श्यामा जी नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा, कैसी हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: अच्छी हूँ पूजा। आपने गुजरे समय की बात कर रही है, कहते हैं ना गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। आज आपने पुराने जख्मों को छेड़ा है और ताजा किया है। यह सच है कि हमारे पुराने समय आज से बेहतर था। एक साथ मिलना, एक साथ जीना, एक समय एक साथ ही उठना बैठना, यह सब कुछ लुप्त हो गया है पूजा। आज सभी लोग अपने लिए जीते हैं। जो प्यार हमें अपनों से मिला था और हमने जिया है, अब कहाँ है वो प्यार? सब कुछ लुप्त हो गया है। वह खेल खिलौने, वह मिट्टी का घर, वह मेल मिला, वह घर आंगन, सब छूट गया है। जिसमें हम अपने बड़ों से घुल मिलकर रहते थे, छोटा सा रोटी का टुकड़ा जिसे हम बांट बांट कर आपस में खाते थे, चारे के समय चूल्हे के साथ के पास बैठकर यानी शाम के वक्त आग सेंकते थे, माँ बाप अपने बच्चों को बटोर कर उसे गर्मी पहुंचाते थे, ये आग जलाते थे या अंगूरे जला

0: लगाते थे अंगीठे में, वो एक समय था। हालांकि वो सवेरे उठते थे, काम करने जाते थे, फिर भी शाम के वक्त अपने बच्चों को एक साथ बटोर कर रखते साथ में, जैसे कि चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे रखते हैं। लेकिन उस समय हमारा जीवन जो था ना, सादा जीवन था, विचार उच्च था।
1: ये तो है।
0: क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अच्छे अच्छे विचार देते थे और हमें उन

0: दस बारह तेरह बच्चे होते थे, उनको सभी को पका कर खिलाना, उनके कपड़े धोना, दिन भर उनके साथ रहना, कभी नाकुर नुकुर नहीं करते थे। आज वह घर तो काटने को डरता है, क्योंकि वह घर तो घर नहीं रहा, उसमें प्यार नहीं रहा, वह घर तो खंडर बन गया है ना। आपस का प्यार अब मिट गया, केवल तकरार है पूजा, केवल तकरार है, और किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नया जमाना आ गया है ना, पुराना दौर तो चला गया ना। किसी को क्या समझाएंगे, वो अपने अपने लिए जीते हैं और जीना चाहिए, क्योंकि जमाना ही ऐसा आ गया है, बदल गया जमाना, और माँ बाप को अपने बच्चों को छूट देना पड़ता है ना, कितने दिन अपने साथ रखेंगे उन्हें, क्योंकि उन बच्चों की भी जिंदगी है, उसे संवारना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, लेकिन आपस का प्यार नहीं मिटाना चाहिए पूजा
1: जी। ये तो है,
0: आपस में जो प्यार होते हैं बांटना चाहिए, मेल मिला कर रहना चाहिए, जो कुछ हम खाते हैं उसे बांट कर खाना चाहिए, और सोच समझ कर कुछ बोलना चाहिए। बात बातों में किसी क्रोधित होना ये ठीक नहीं होता है,
1: ठीक नहीं,
0: तभी तो माँ बाप का दिल दुखता है ना। मेरा यही विचार है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी इस विचार के लिए, और हमेशा आप मेरा दिल छू कर चली जाती है। धन्यवाद।
0: कभी आना मेरे यहाँ
1: जी, अवश्य
0: आप भी मेरा दिल छू लेना। हम बांट लेंगे, दिल दिल को बांट लेंगे, काश दिल बांटने की चीज होती तो हम बांट लेते आपस में ना।
1: जी जी जी, अवश्य अवश्य, धन्यवाद धन्यवाद। आइए, एक और श्रोता है लाइन पर, धनेश्वर जी भी है लाइन पर, उनसे हम धैर्य की मांग करेंगे।
2: हेलो बहन,
1: नमस्ते।
2: हेलो बहन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
2: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: ठीक हूँ बहन जी, तब तो फोन लिया हूँ ना, कब से ट्राई करी हूँ, नहीं मिल रही। जो 50 साल पहले थे और जो अभी बहन जी, कहाँ आएगा वो, हम भी जिए हैं उस 50 साल जो थे, पहले के जो जमाना थे, अभी कहाँ है? अभी तो मोबाइल का जमाना है, अभी तो परिवार आपको बुलाते हैं, जब आप जाते हैं तो मोबाइल में रहते हैं, बात नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है
1: जी।
2: अभी के तो जो समय है ना,
1: कलयुग का
2: ये सच ही है। अभी का समय बहुत अभाव है
1: जी,
2: हमें समय निकालना चाहिए, लेकिन हम निकाल नहीं पाती है, क्योंकि हम काम पर जाते हैं, काम से आते हैं, खाना कुछ बनाते हैं, फिर मोबाइल में चले जाते हैं। हमारे बच्चों से हमें समय नहीं मिला कि हम एकजुट करके खाने पर उनसे बातें करें
1: जी,
2: अच्छा अच्छा विचार बच्चों को दूं, पूछूं कि स्कूल में क्या हुआ, काम में क्या हुआ, ये नहीं होता है
1: जी।
2: तो इससे लगता है कि अभी तो हम पीछे हट रहे हैं ना, आगे नहीं बढ़ रहे हैं,
1: आगे नहीं
2: बढ़ लगता है। आधुनिक काल है, टेक्नोलॉजी का समय है, सब कुछ आगे आगे है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, पहले के जो प्यार था वो अब नहीं है। अभी देखते हैं तो बच्चे प्रणाम नहीं करते हैं।
1: ये तो है,
2: प्रणाम करके आशीर्वाद नहीं लेते हैं,
1: तो बड़े ही नहीं करते हैं। आप कह रही हैं कि बच्चे प्रणाम नहीं करते, कुछ ऐसे भी मैंने स्थिति देखी है जब आप नमस्ते करते हैं या फिर प्रणाम करते हैं तो कुछ ऐसे लोग जो हैं वो मुंह फेर लेते हैं, क्यों? जलन के मारे। जलन के मारे,
2: और जो नमस्ते करना चाह रहा था वो नमस्ते नहीं करता,
1: नहीं
2: वो हंस देता है,
1: हंस देता है,
2: तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो नमस्ते कर रहा है।
1: कोई कोई कहता है कि आप पुराने दौर के हैं, क्यों नमस्ते बोल रहे हो, ये तो जवाब नहीं देते हैं वापस। पर ये जो प्रणाम शब्द आपने अभी हाल में कहा है, ये मेरी माँ ने सिखाई थी, ये बचपन से सिखाई और बड़े तक ये रह गई।
2: पहले माता पिता हमें
1: संस्कार देती थी,
2: टेबल नहीं था, नीचे बैठ कर
1: हम पढ़ाई करते थे,
2: माता पिता सिखाती थी क्या करना चाहिए, हम बैठका जाती थी, वहाँ क्या सीख मिली थी, उन सब सीखों के हमने अपने भीतर हमारे भीतर समाया हुआ है
1: जी,
2: ताकि हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बच्चों की साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार,
2: धन्यवाद आपको बहन जी, आपने ऐसा विषय रखा,
1: अच्छा जी,
2: हम लोगों के मौका दिया,
1: धन्यवाद धन्यवाद,
2: शुभ शांति आपको,
1: शुभ संध्या आपको भी। एक और श्रोता है लाइन पर, हेलो,
3: शुभ नमस्कार पूजा जी।
1: शुभ नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक

0: आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। आपको सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आज जो है
0: अरे
1: मेरी इस
0: देर से
1: कार्यक्रम में भाग
0: देर
1: ले
0: से
1: रहे हैं।
0: देर से हाँ धन्यवाद, देर से भी आ रहा हूँ।
1: जी
0: सुन रहा, मोटर में भी सुन सुन कर मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ आपसे।
1: जी
0: देखिए पूजा जी,
1: जी नवीन जी
0: आज
1: बोलिए।
0: का इंसान इंसानियत भूल गया है। आज का इंसान बहुत गिर गया है। विज्ञान ने हम सब हमें बहुत कुछ दिए हैं, पर हम एक यंत्र की तरह काम कर रहे हैं, आगे पीछे बिना देखे कर रहे हैं। जमाना तो जटिल है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हमें परिवार या दोस्त या सभी से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अपना जो मानव का गुण है उससे वंचित न रहे। अपनी सफलता के लिए कोशिश करे, पर कोशिश करे सभी की भलाई के लिए। मैं आपसे कहूंगा अपने अनुभव से कि पूजा जी, आज कोई किसी का दुख नहीं समझता है।
1: हाँ ये तो है।
0: ये जानती हो, ये क्या कहूँ आपसे, ये दुनिया जो है इतना उलझन में पड़ गया है, धोखा पर धोखा, झूठ पर झूठ, अधर्म धर्म, ये इन सब का बोलबाला है। और कहूंगा आपसे कि आदमी जब गलती करता है आज, माफी कोई नहीं मांगता है, कोई मांगता नहीं, और सभी लोग बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। जानते हैं, इस दुनिया में हम आए हैं, सभी को कुछ कहना है, कान बांटना है। कान बांटना का मतलब कान खट के नहीं, यानी कि सुने ध्यान। देखिए आप 50 वर्ष पूर्व की बात, की दिन की बात दिलाई आपने, ये दिन जो है मुझे याद है। मैं 50 वर्ष से ज्यादा हूँ, लेकिन ये बड़े सरल और आसान दिन थे। चारों तरफ खुशहाल का माहौल था, हाथों हाथ का काम होता था, किसी भी क्षेत्र में, शादी में, किसी खुशहाली क्षेत्र में, चाहे किसी के यहाँ मृत्यु भी हो गई है, हाथों हाथ सब काम बिना पैसे दिए तब हो जाते। प्यार प्रेम ज्यादा था, लेकिन ये सब गायब है आज। देखिए कभी उस समय की बात, परिवार जिसको अतिथि अतिथि भी बोलते हैं, अचानक परिवार आ जाते थे घर पर, और इस जब वो लोग आते थे इतनी खुशी बढ़ जाती थी देख करके, वो है नानी मौसी चाचा चाची सबको देख के इतनी खुशी बढ़ती थी, और सबके खाने पीने और रात बिताने का प्रबंध हो जाता था। चाहे नीचे सुता, घर के ऊपर सुता, घर के नीचे सुता, सबके लिए जगह था, और इस स्वागत तो सुस्वागत था।
1: वो तो समय ही कुछ अलग ही
0: द्वार
1: था।
0: पर लिखा लिखा गया था आपका स्वागत है। आजकल द्वार पर क्या लिखा है जानते हो? कुत्तों से सावधान।
1: जी, ये तो मैं बोलने वाली थी, चुप रह गई
0: जी। अभी किसी ने नमस्कार की बात कही, मेरे ख्याल से वो बाबूजी वाली बहन है, प्रभा या नाम भूल गया
1: जी।
0: वो आजकल तो हाथ, यानी कि हम अंजलि मुद्रा में, यानी कि हाथ जोड़ करके नमस्कार नहीं करते हैं। तू हवा, अभी हम निकलने वाले थे, निकलने वाले थे, और पूछते हैं कुछ मिनटों के बाद आप जाएंगे कब? पहले तो बोलते थे रहो, चाहे किसी भी तरह से सब कुछ हो जाएगा, खाने सब प्रगति तो कर रहे हैं, नाम मात्र का केवल पाना चाहते हैं। देखिए पैसे के लिए पागलों की तरह इस देश से उस देश में भाग रहे हैं। देखिए पूजा जी, पहले शुद्ध खाना शुद्ध पीना जो जो कुछ हमको मिलता था ये बहुत शुद्ध था। आज जानते हो क्या बात है? मैं तो कहीं पर भी खाना पीना उतना नहीं खरीदता, सब में मिलावट है। जब मैं नौकरी

0: था मुझे याद है, जो जो एक ये लेखनी का एक टुकड़ा मुझे मिला था दालपूरी में। तब से मैं सोच रहा था कैसे कहूँ, कैसे करूँ, रोज रोज खाना चाहिए, काम में कैसे करेंगे। मेरे भाई ने कहा देखिए मैं भी शहर काम करता हूँ, तुम्हारे चिला दूंगा। तो ऐसा था, सिर्फ और सिर्फ एक काम हमने सीखा है रखा है, जानते क्या काम है, व्यवसाय, बिजनेस, पैसा कमाना। पैसा तो अति जरूरी है, कमाना चाहिए ईमानदारी से, चाहे इंसान की जान चली जाए, चाहे बच्चों का भविष्य से लेकर बनता हो, चाहे वो किसी भी तरह से, पैसा बनाना है। हमारी सोच कितनी गंदी है इस वैज्ञानिक युग, इस कलयुग में। तो मैं कहूंगा किसी ने शुरुआत में कहा था पूजा, वो कहने का तात्पर्य यह था कि हम प्रार्थना करें, ईश्वर को याद करें। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात, जिला नाम है उसका मेरा ख्याल से। तनिक सोचो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, समझ में नहीं आता क्या करें, किसी क्या करें। तो हम कहूंगा कि हमें पीछे लौटना है, हमें सिर पीछे कर देखना या तो आगे देखें, तो और हम प्रगति करेंगे। इसके साथ साथ प्रेम और प्यार के साथ आप मुझे कुछ कहने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, और आपसे एक बात कहूंगी कि आपका जो गरम गरम नाश्ता है जो आप तैयार करके देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो है ये गर्मा गर्म नाश्ता है,
0: जब चाहे मुझसे कुछ मदद की मांग करोगे जी, तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। आप तो जानते हैं आजकल परिस्थिति कैसे है, मैं बोल दूं मेरे घर में कुछ गड़बड़ी है, कोई बीमार है, लेकिन मैं जब किसी, मैं समय ढूंढता हूँ, निकालता हूँ, जब कुछ करने की इच्छा है तो समय मिलेगा अवश्य, इसीलिए मैं तैयार करके आपके लिए भेज दूं। बहुत धन्यवाद, ये आपने कहा भी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, मैं भेजता रहूंगा आपको।
1: धन्यवाद, धन्यवाद नवीन जी, शुभ संध्या आपको भी, नमस्कार आपको भी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं 50 साल का जो समाज है, जो जीवन था, किस प्रकार आधुनिक समाज से बेहतर है। और जिन जिन लोगों को लाइन नहीं मिला वो अभी भी फ़ोन कर सकते हैं। धनेश्वर जी ने शायद फ़ोन काट दिया, आप अभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आज का जीवन हमें अनेक सुविधाएं देता है, दुनिया हमारी उंगलियों पर है, जान पहले से कई अधिक उपलब्ध है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, युवाओं के पास अपने सपनों को पूरा करने की अनगिनत अवसर हैं। समस्या आधुनिकता नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम सुविधाओं के पीछे भागते भागते संवेदनाएं भूल जाते हैं। हेलो,
2: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
1: नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। चलिए बताइए आपका क्या विचार?
2: आपका आवाज सुना और भी ठीक हो गया।
1: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया, बहुत बढ़िया बात कह दी, बहुत बड़ा बड़ा बड़ा बात कह दी। 50 साल हमें पीछे ले जा दिया, कितना बड़ा विचार आपने रखा है, कितना धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारे सोए हुए याद को जगा दिया। बहुत बहुत बहुत बहुत दुख सहे हैं हम, छोटे छोटे से थे, लपाई के घर, पानी बारिश होता था है तो बहुत बर्तन डालते थे, जगह जगह पर डालते थे, रात भर बैठ कर गुजारा करते थे, बहुत सुकून था उस समय, बहुत सुकून था, हंसते बोलते सब परिवार एक घर में, एक घर में, लपाई का घर जब टूटा था तोड़ के घर में रहते थे, फिर भी जहाँ तहाँ कुल्लू मारते थे तो वो छूते थे, लेकिन फिर भी सभी

0: परिवार एक साथ मिलजुल कर रखते थे। पड़ोस अड़ोसिन पड़ोसिन लोग चिराग बार करके एक पावा था आगे बैठ करके कहानी सुनाते थे। हमारे अड़ोसिन पड़ोसिन लोग बहन लोग चाचा चाची लोग सब कोई आकर फूफू लोग बैठ करके कहानी बहुत अच्छा से गुजरा। अब भी तो कोई कोई के कोई अपने पड़ोसिन के मुंह नहीं दिखते थे दिखेंगे। मेरा इतना भी ऊंचा है कि कुछ हो जाता है मृत्यु हो जाता है तो हम नहीं जानते कि इस घर में मृत्यु हुआ। ऊंचा ऊंचा मेरा कभी उसको दिखा नहीं। एक बहू शादी करके अभी आते हैं तो हमने हम दिखा नहीं हम चिंते नहीं है। लेकिन आगे के जमाना में सब पड़ोसिया लोग चार चुनते से सब कुछ काफे कुटते थे सब सब्जी सब काट करके देते थे। मिलजुल कर शादी होता था मिलजुल कर गरीब थे सलमान के मिलजुल कर पैसा नहीं थे लेकिन बहुत प्यार था बहुत प्यार था बहुत। अब वो प्यार कहाँ मिलेगा पूजा जी अब नहीं मिलेंगे किसी जन्म में नहीं मिलेंगे अब कहाँ मिलेंगे। जो हमें मिला बहुत बहुत हम बच्चों को कहते हैं फिर भी बच्चों नहीं मानते हैं कि इतना दुख आप लोग ने सहा। फिर भी कुछ मालाद नहीं थे हम जौन मिलते थे खाते थे बांट करके एक ही सब्जी एक ही भात चावल हवे मोटका चावल के भात और दाल बोयो ये चटनी पीस करके सील पर सील में आग में भूंज करके ये खा करके गुजारा करते थे। कभी हमने अभी के समाना में तक कौन से बहुत बहुत कलीते मलादी चल रहा है लेकिन उस जमाना में कुछ भी नहीं था पूजा जी बहुत प्यार से रहते थे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमारे तो ये हुए याद जगा दी बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको भी शुभ संध्या आपको
0: शुभ संध्या
1: अच्छा नमस्ते।

0: चलिए मैं तो बस यही कहूँगी कि जो यादें मैं लेकर आती हूँ हमेशा हमर आप कार्यक्रम में विषय के तौर पर के द्वारा हम लेकर आते हैं, आप लोगों से बात हो जाती है मेरी, और मैं तो कहूँगी कि ये खोया हुआ पल कहीं गया नहीं, यादें बनकर हम सभी के बीच में आज जो है हमने फिर से जिया है। किसी ने अपने समय की बात कहा खाने के बारे में, किसी ने अपने नाना नानी या फिर दादा दादी उस समय को याद कर ली, अपनों को याद कर ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ जिन जिन लोगों को जो है लाइन नहीं मिला। चलिए धनेश्वर जी आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं, दो मिनट के लिए बात कर लेते हैं, उनको समय नहीं मिला था। हेलो नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते धनेश्वर जी, चलिए आपके पास दो मिनट है, बात कर लीजिए।
1: ओके बहन जी, मैं अपना विचार दे रहा हूँ।
0: चलिए बताइए।
1: जो कुछ मुझे जैसे मैंने जिया पहले और अभी, मैं अभी के जीवन ज्यादा पसंद करता हूँ।
0: हाँ।
1: क्योंकि अब बहुत फैसिलिटी है और हमारे बड़ों का मेहनत हमें मिल रहा है। जैसे कि देखिए मोबाइल या यूट्यूब के माध्यम से हिंदी दोहा कबीर भजन ये सब, और अच्छे अच्छे घर है। तो अभी हम नहीं खुशी है रे से जाके कान काटे के बहन जी, सवानाज करे के बेपायाज करे के, अभी हमारे लावी जोड़ी बा हमारा लोग कहता हमारे विचार से ये चाहे ना तनी ज्यादा ध्यान डाले के संस्कार लड़का लोग में भरे के ये से माँ हमारा हबी दसिया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ई विचार खातिर। और जैसे बोलल गल बातें धनेश्वर जी की, विज्ञान के लाभ भी हैं और हानि भी हैं। ओकरा जोन जितना हमनी प्रयोग करब स अच्छे तरीके से तो लाभ बन जाए, गलत तरीके से तो हानि हो जाए। तो सबको के हम बोला बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो चला अब हमनी बढ़ब सा तो हर पसंद कार्यक्रम की ओर, तब तक

जन प्यारा गीत बाते जितना कोई हमनी संगे जुड़ल हवन लोग सब कोई के भुलब जा तो हर पसीन में हार्दिक स्वागत बाते गीत सुने छाइबा तो सकबा जा हमनी के टेलीफोन करे 4028085 नहीं तो सेकंड अकाउंट से 005 पर सकबा जा हमनी के मिसाजो भेजे तब लेख चला है गीतवा जितना कोई हमनी संगे जुड़ल हवन जा खास तौर पर बायाबू जी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा इतना प्यार देवे लंजा

ई गीतवा खास तौर पर कमला जी जनहा मोताबा के हवन प्यारी आरोही और रोकर प्यारी जन नातिन हवन आरोही और साथ में सीता और यान चा खातिर और हमनी संगी अभी जुड़ल हवन चेतवीर चेतवीर जनहा एक छोटा सा लड़का बाती और बड़ी पसंद करेला जनहा भोजपुरी गीत और खास तौर पर रोकर मौसी खातिर और रोकर चाचा खातिर है गीतवा के जनहा की मांग कर ले बातें तो चला है गीतवा हमनी सुनी रासा। कब से बोला था कित मोहिस आली हमरा तक कुछ बुझात नहीं बा अब तो समझ आल छोड़ के मोरिसवा है गीतवा के मांग कर रहा था।

तो छोड़ के मोरी स्वा और ही गीतवा के मांग ले रहा चेत वीर अब हमनी के बिस्वानी जी जुन्हा अभी हमनी के सुना था वन और बोला था ढेर एक्सीडेंट हुआ था गे चला अभी सड़क दुर्घटना खातिर ई गीतवा के मांग ले बातें सब कोई के जितना ई गीतवा के पसंद करे लंजा।

0: तो चला अभी जो ना आफिस जी बोला था वन लावीनिया से कि बड़ा मन बाते ओकरा सुने के आज के गमट को तो चला गमट के गीत हमनी सुनी रासा और हये गीतवा के मांग कर ले बाते महीन जी पालमा से खास तौर पर दीदी मान और ओकर सब परिवार खातिर और नाम जोरब सा नानी सुखलाल जी हवन और बड़े प्यार से सुना था वन ओकर सब सुखलाल परिवार
1: आज के गमट

0: तो चला हाई गीतवा खास तौर पर धनेश्वर जी जिन्हा द वेल से सुना थवन और साथ देवा थवन नवीन नचमन जी खास तौर पर चित्रा चाची खातिर रोकर अच्छे स्वास्थ्य खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जिन्हा धन्यवाद बोला जा नवीन जी और साथ देवेलन और चित्रा जी जिन्हा भी ओकर स्वास्थ्य खातिर कामना करी ला सक नीमन से और अच्छा से स्वस्थ हो जइन जा और खास तौर पर चित्रा जी मौदालबे से सुना था ना और ललिता जी खातिर जिन गीत गई ले हवन
1: से लोटा मंगाइलासन से लोटा मंगाइला
0: और अभी सुना था वन शोभा जी पॉम्पलेमुस से।

तो चले अभी जनहा आशा जानू जी चलाल हवन जा पर सभी जानू परिवार खातिर खास तौर पर का मामा कुमारी और ओकर सब जनहा भतीजे जनहा ऋषभ और ओकर सब जानू परिवार और खास तौर पर जनहा वीना रामफल जी और श्यामा रघुनंदन जी खातिर है गीतवा हमनी जनहा चलावत हैं जा और शैला जी हवन गान हव्या सुदेश से और बसंती जी हवन बोबा सें से और बड़े प्यार से सुनत हवन शोभा जी हवन वाकवा से और शोभा जी हवन पॉपले मूज से तचरा है गीतवा ओलो खातिर रा हाई हाई ठंडावा में मच्छी मार के बुयो कर देबा सुरुक सुरुक के पी लेबा तचला है गीतवा हमने सुनी रा सा जय हरलाल जी के गावल गीत मच्छी मरवा हमार नाम है।

से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

गीतवा खास तौर पर सुनान चिरंगी जी सुना थवान हमनी के और खास तौर पर इंदिरा जी जो हमनी के अभी सुना थवा ना तो चला अभी जितना कोई अपन जन्मदिन मनावत हवा ना खास तौर पर शांति सुकारी जी से जमील फुगैसाइद से उकर बेटा अशोक उकर जन्मदिन के अवसर पर सुजीत पावेश पावीन सुदेश श्रेया परी पूनम और उनका सब परिवार देने से उकर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजा थवन जा और साथ में बातें रेणुका जी क्यूपिप से और जन्मदिन के अवसर पर और प्यारी सी परी अग्नि बुदू ममा येशना पापा कुशल के देने से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे एमबीसी टीम के देने से जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा हैप्पी बर्थडे।

हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बधाई। जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा तो चले क्रेवे संगे हमनी तोहार पसीन कार्यक्रम के अंत तक चलाल हैं। जानतीम गीत हमनी चलाव सा सुनीता जी गौगुप से, खासतौर पर होकर बहिन विमला जी खातिर। और पूजा के देने से सब कोई के नमस्ते और ही प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद तोहार पसीन और हमारा आप कार्यक्रम में भाग लेने खातिर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं। रविवार 14 जून 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेन कोपे मुटु के अनुसार अगले महीने से शुरू होने वाला एल नीनो लगभग 8 महीने तक मॉरिशस के मौसम

0: को अप्रत्याशित बना सकता है। इसके कारण सूखा, भारी बारिश और कृषि, समुद्र और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है, जिससे निपटने के लिए उन्होंने समय रहते तैयारी करने पर दिया है जोर। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताहांत देश भर में कई रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। फिनिक्स, फ्लक और मोका में बड़ी संख्या में लोगों ने किया है रक्तदान। यह एक छोटा परंतु जीवन बचाने वाला कदम है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 710 हो गई है विदेशी स्तर पर, और अब तक इस बीमारी से 149 लोगों की हो गई है मौत, जबकि करीब 300 मरीज अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में उपचाराधीन है। और ट्रंप द्वारा रविवार को हस्ताक्षर किए गए अनुमान के बावजूद ईरान का कहना है कि अमेरिकी समझौते पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो बड़ी खबर है। एक महीने से कुछ अधिक समय में एलनीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर देगा, जो 8 महीने तक चल सकता है और इसका असर मॉरिशस पर भी पड़ेगा। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेन कोपे मुतु के अनुसार इस अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकता है, जिसमें लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक भारी बारिश और कृषि, समुद्र व खाद्य सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव शामिल है। उन्होंने कहा कि इस घटना का सामना करने की दिशा में हमें अपने संसाधनों को तैयार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही यह दूर की घटना लगे परंतु यह हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्रशांत महासागर में होने वाले उतार चढ़ाव का मॉरिशस की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमारा द्वीप एलनीनो घटना से प्रभावित हो सकता है। समुद्र वैज्ञानिक वासेन कोपेमुतु के अनुसार प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की इस घटना का प्रभाव जुलाई से शुरू होकर लगभग 8 महीनों तक बना रह सकता है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। जुलाई अगस्त तक इसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ेगा। संभव है कि गर्मी के पूरे सीजन में बारिश ही न हो। मॉरिशस में इस जलवायु परिवर्तन के दौर का पर्यावरण, कृषि और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी के कारण कोरल्स प्रभावित होंगे, तापमान ज्यादा होगा, सूखा होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकता है।
2: Et la sécheresse importante qui va être là va créer beaucoup d'impact sur notre sécurité alimentaire.
1: समुद्र वैज्ञानिक का कहना है कि इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गर्मी और नमी एक साथ होगी तो हमारा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
2: 45-50 degrés, donc l'effet ce qu'on appelle wet bulb. Donc notre pays sera grandement affecté.
1: Basen Kopaimutu के अनुसार एलनीनो कोई असाधारण या नई घटना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और तीव्रता में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इस पर पहले से कहीं अधिक सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा हर जगह इसकी चेतावनी दी जा चुकी है। इस बार एलनीनो के कारण एक ही समय पर कई प्राकृतिक प्रकोप एक साथ होंगे, व्यवस्था करनी चाहिए। एलनीनो हमें याद दिलाता है कि हमारा छोटा टापू देश भी वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के बड़े प्रभावों से अछूता नहीं। इसकी अवधि लगभग 8 महीने तक रह सकती है, इसलिए इसके संभावित प्रभावों का समय रहते आकलन करने और उससे निपटने के लिए निरंतर निगरानी बेहद आवश्यक है।
0: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गैस गीजर से होने वाले हादसों और कार्बन मोनोक्साइड के जहर का खतरा बढ़ जाता है। गलत तरीके से इंस्टॉलेशन, वेंटिलेशन की कमी और पाइपों का सही रखरखाव न होना, बाथरूम जैसे बंद स्थानों में

0: पलक झपकते ही कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सिंचा मोटू की रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का।
1: साल की शुरुआत से अब तक देश में गैस वाटर हीटर के कारण कार्बन मोनोक्साइड इंटॉक्सिकेशन के 6 मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक प्रमुख गलती है उपकरण को बाथरूम के अंदर स्थापित करना। स्टेशन फायर ऑफिसर जोवानी गिजाना कहते
2: हैं,
1: इस उपकरण का इंस्टॉलेशन एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा किया जाना चाहिए। बाथरूम के अंदर कम से कम एक ओपनिंग और उचित वेंटिलेशन होना आवश्यक है, चाहे वो खिड़की के माध्यम से हो या दरवाजे के। कुछ लोग अपार्टमेंट्स में या ऊंची मंजिलों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर खिड़की लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में एक मैकेनिकल एक्सट्रैक्टर स्थापित करना चाहिए जो वायु को अंदर से बाहर भेजे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये उपकरण घर के बाहर लगवाना बेहतर समझा है। आंसोफी मारीजान कहती हैं, हमने हीटर बाहर लगवाया है ताकि जब गैस जले तो धुआं बाहर ही रहे और हम सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकें। कुछ दुकानें अब ज्यादा सुरक्षा की सुविधाओं वाले नए गैस वाटर हीटर के मॉडल प्रस्तावित कर रही हैं। व्यापारी शबनम बंधु कहती हैं, हमारे पास एक नया मॉडल है जिसमें मोनोक्साइड डिटेक्टर स्थापित है। इससे अगर मोनोक्साइड गैस की मात्रा बढ़े तो उपकरण अपने आप ही सप्लाई बंद कर देता है। कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसा गैस है जिसका कोई रंग या गंध नहीं है और इसे ज्यादा सूंघने से चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी भी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये जानना आवश्यक है। जोवानी रिजाना कहते हैं, सबसे पहले बाथरूम खोलकर व्यक्ति को घर के बाहर खुली हवा में लाना चाहिए, उसे वेंटिलेशन मिलना चाहिए और हमें 114 या 115 पर फोन करना चाहिए। वाटर हीटर की लौ के रंग पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर वो नीली है तो ठीक है, अगर पीली या ऑरेंज है तो ये खराबी का संकेत है। इसलिए हर साल किसी योग्य टेक्नीशियन द्वारा गैस वाटर हीटर का निरीक्षण और मेंटेनेंस करवाने की सलाह दी जाती है।
0: डिक्रिमिनलाइज करें या फिर लीगलाइज करें या फिर नहीं, कैनाबिस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। क्या यह वास्तव में अन्य नशीले पदार्थों की ओर ले जाने वाली एक शुरुआती ड्रग है जैसा कि कुछ लोगों का दावा है, या फिर उन लोगों की मदद करने का समाधान है जो हार्ड ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स की लत के दलदल में डूब चुके हैं। जो लोग पहले ही इस नर्क को झेल चुके हैं वे इस पर अपना नजरिया समझा रही है। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
3: गांजे
1: से लेकर सिंथेटिक ड्रग तक शेरा ने हर तरह के नशीले पदार्थों का सेवन किया है, लेकिन आज 8 साल हो चुके हैं जब से 46 वर्षीय ये व्यक्ति पूरी तरह से नशे से मुक्त है। उसे ड्रग्स की दलदल से निकालने में कई अन्यों के साथ जोजे भी शामिल रहे। वो खुद पिछले 40 सालों से नशे से दूर हैं और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित किया है। मैंने कई लोगों की मदद की है, मैं समाधान देता हूँ जो एक मजबूत मेडिकल उपचार से गुजरता है, लेकिन साथ ही मनोवैज्ञानिक समर्थन जरूरी होता है। व्यक्ति को ट्रीटमेंट देकर छोड़ देना उचित नहीं होता। आज के तेज पदार्थों के कारण हमें नियमित फॉलोअप करना जरूरी होता है। सामने आने वाले सवालों में ये मुद्दा भी है कि क्या उसके द्वारा प्रस्तावित थेरेपी में गांजे का इस्तेमाल शामिल है। जोजे कहते हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सिंथेटिक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष के लिए गांजे का वैधीकरण आवश्यक है, लेकिन इस पर मेरा विचार अलग है, क्योंकि ड्रग्स का नशा करने वाले बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी थोड़े गांजे के साथ शुरू किया था। असल में यही लत की शुरुआत है, क्योंकि थोड़े नशे के बाद लोग ज्यादा की तलाश करने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गांजा एक गेटवे ड्रग की तरह है, यानी उसी से शुरू करके लोग ज्यादा खतरनाक मादक द्रव्यों के सेवन तक पहुंचते हैं, लेकिन इस मान्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। गेटवे ड्रग की थियोरी को लेकर ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम्स की तरफ से 2018 में प्रकाशित 23 अध्ययनों के अनुसार गांजे और तेज मादक पदार्थों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया जाता। कलेक्टिव कत्सोवे के अनुसार समाधान स्पष्ट रूप से

0: गांजे के लीगलाइजेशन में निहित है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है और किस संरचना को प्राथमिकता देनी है ये अभी देखना बाकी है। खुद ड्रग अधिक रह चुके इमानुएल के पास कुछ प्रस्ताव हैं। वे कहते हैं, मेरे हिसाब से बेहतर होता कि हर एक के यहाँ गांजे का एक पौधा होता, और दूसरी तरफ से मैं सरकार से मांग करूंगा कि गांजे को लेकर सभी नियंत्रण प्रणालियां लागू की जाए। इसका कंट्रोल एएमबी की तरह ही हो सकता है, जो लहसुन प्याज आदि का नियंत्रण करता है। स्थानीय कलाकार स्काई टूबी के शब्द भी दिल से निकली पुकार की तरह है, एक मदद की गुहार। हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। ड्रग्स के माहौल में रहकर उससे बचे रहना बहुत मुश्किल है। मेरी मांग यही है, मानसिकता बदल कर हमारी मदद कीजिए। सफर में कई रास्ते हैं तो कई दृष्टिकोण भी, सबका केंद्र एक है, ड्रग्स की दलदल और एक अनसुलझा सवाल, इस नर्क से कैसे छुटकारा पाया जाए।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि आज 14 जून को मनाए जा रहे विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश भर में कई रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। फिनिक्स, फ्लैक और मोका में बड़ी संख्या में मॉरिशनों ने इस नेक काम में हिस्सा लिया। यह एक सरल परंतु बेहद महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, विशेष रूप से कुछ दुर्लभ ब्लड ग्रुप्स और प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए। सगा उनो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
0: कई लोगों ने दूसरों की मदद के उत्साह में अपने दिन के कुछ मिनट रक्तदान के लिए समर्पित किए। विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में सप्ताहांत देश के कई इलाकों में रक्तदान अभियान आयोजित किए गए। देश के स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 140 पाइन खून की आवश्यकता पड़ती है। जमा किए जाने वाला खून किस समय किस मरीज या आम व्यक्ति के काम आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। कभी दुर्घटना में घायल तो कभी सर्जरी करवा रहे मरीज या तो नियमित ट्रांसफ्यूजन करवाने वाले पीड़ित। सभी ब्लड ग्रुप्स की मांगे रहती हैं, लेकिन विशेष रूप से ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव की ज्यादा मांगे होती हैं, जिनका स्टॉक अक्सर कम रहता है। ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नलाया कहते हैं, सर्दियों के दौरान लोग घर पर रहते हैं और हमें तभी बड़े वृहद अभियान चलाने चाहिए। इन दिनों ही हमें भीड़ जमा करके जनता की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद करता है। हमें अभी ओ नेगेटिव तथा ग्रुप ए की जरूरत ज्यादा है। हमें प्लेटलेट्स तैयार करने के लिए ताजे खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स 5 दिन से ज्यादा नहीं रखे जा सकते। जहां देश के अस्पतालों में खून की मांगे हमेशा रहती हैं, वहीं अधिकारीगण मॉरिशन जनता से ब्लड डोनर्स बनकर दूसरों की मदद के लिए सक्रिय बनने की मांग करते हैं।
1: तेजी से बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के सामने मॉरिशस के कपड़ा क्षेत्र की एसएमई नए संतुलन की तलाश कर रही है। आर्थिक दबावों, जरूरी बदलावों और प्रतिस्पर्धा बने रहने की मजबूरी के बीच ये कंपनियां निर्यात बाजार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए विशेषज्ञता, लचीलेपन और विशिष्ट बाजारों पर दांव लगा रही है। इस वर्ष लकाज आ एनजीओ अपने अस्तित्व के 40 वर्ष

0: पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी वर्षगांठ को मनाने के लिए और ड्रग्स की बुराइयों का सामना कर रहे परिवारों के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डालने के वास्ते साल भर कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को एक गिरजाघर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं साल 2026 के विश्व कप प्रतियोगिता के बारे में, जहां पर ब्राजील और मोरक्को के बीच हुआ मुकाबला इस रविवार की सुबह न्यूयॉर्क में अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा। साल 2026 विश्व कप का यह पहला बड़ा और हाई प्रोफाइल मैच था, जिसने शुरुआत में ही रोमांच का एहसास करा दिया और इस दौरान दोनों टीमों के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसकी रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ी। अरविंद बिसेसो की रिपोर्ट।
1: ग्रुप सी वाला कांटेदार मैच ब्राजील और मोरक्को के बीच फुटबॉल के नजरिए से देखें तो बहुत बेहतरीन खेल देखने को मिले। मोरक्को की टीम ज्यादा आक्रामक रही। द एटलास लायंस की दमदार शुरुआत, जाज के पास पर इस्माइला साइबारी गोलकीपर अलिसन को लॉब करके गोल स्कोर करता है। ब्राजील काला सिलेसाओ तुरंत उल्टा प्रहार करता है, विनिशियस जूनियर का इक्वलाइजिंग गोल। सेकंड हाफ में दोनों टीमों ने खेल का रफ्तार बढ़ाया, मोरक्को को काफी अच्छे मौके मिले, ब्राजील को भी, पर एक भी गोल नहीं बना। हिसाब बराबर। इस ग्रुप के दो फेवरेट के बीच स्कोर 1-1। इसी ग्रुप में स्कॉटलैंड ने आईसी को 1-0 से हराया।
2: I think in the end you would say a draw is a fair result.
0: और आज रात साल 2026 विश्व कप में हाई लेवल के मुकाबलों की एक श्रृंखला के साथ रोमांच और भी बढ़ने वाला है। दिग्गज टीमों और उलटफेर करने का दम रखने वाले बाहरी देशों के बीच अमरीकी मैदानों पर आज की शाम एक शानदार और रोमांचक तथा मनोरंजक खेल का वादा करती है। ज्यादा विस्तार अरविंद बिसे सर के साथ।
1: वर्ल्ड कप 2026 का पहला सप्ताहांत जिसमें ग्रुप ई की बारी है, यहां पर जर्मनी के द नेशनल मैनचेस्टर मैदान में उतरेगी। उसके सामने है कुआसाओ। ह्यूस्टन स्टेडियम में ये मैच 9 बजे खेला जाएगा। 2018 और 2022 में जर्मनी की टीम ग्रुप स्टेज से ही रफा दफा हो गई थी। इस बार जूलियन नागेल्समान के खिलाड़ी ऐसी गलती नहीं करना चाहते, मैच जीतकर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। सामने होगी कैरेबियन आइलैंड की टीम कुआसाओ, जो पहली बार विश्व मंच पर कदम रखेगी। फिर 12 बजे मिडनाइट किक ऑफ ग्रुप ई में नेदरलैंड्स का सामना जापान से होगा डलास में। नेदरलैंड्स के लिए जोरांज 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जा पाए हैं, पर वर्ल्ड टाइटल अभी तक हाथ नहीं लगा है। इस बार स्क्वाड में वर्जिल वान डाइक जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, तो ग्रेवेनबर्ग को दी गाकपो के जोश भी है। जापान को अब वर्ल्ड कप का छोटा बच्चा नहीं मानते, पिछले वर्ल्ड कप में जर्मनी और स्पेन को सबक सिखाया था। और कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट का सामना इक्वाटोर से होगा फिलाडेल्फिया में। 12 साल बाद आइवरी कोस्ट के हाथी वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं, पर उनके नामी खिलाड़ी बहुत हैं। टक्कर है एक ऐसी टीम से जो सॉलिड है, खासकर डिफेंस में। पिछले 19 मैचों में इस टीम की हार नहीं हुई है। दक्षिण अमरीकी क्वालिफिकेशन में इक्वाटोर की टीम दूसरे स्थान पर आई थी, अर्जेंटीना से पीछे पर ब्राजील से ऊपर। इन मैचों को आप देख पाएंगे स्पोर्ट्स 11 पर। मैच से पहले स्पेशल प्लाटू ऑन रूट वेर न्यूयॉर्क 9:30।
0: कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशेल्स की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोर्ट ने पिछले सप्ताह लातुकेनिक स्थित एनटीसी डिपो का दौरा किया। मॉरिशस के आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के साथ उन्होंने जनवरी में अपनी पिछली यात्रा के बाद से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हुई प्रगति का जायजा लिया। ये यात्रा टिकाऊ गतिशीलता के क्षेत्र में

0: मॉरिशस के अनुभवों से प्रेरणा लेने की सेशेल्स की इच्छा का हिस्सा है। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: अपने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर पहले से ही विचार कर रहा सेशेल्स गणराज्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में मॉरिशस द्वारा की गई प्रगति पर करीब से नजर रख रहा है। ये तकनीकी दौरा दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता साझा करने और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। वेरोनिक लापोर्ट ने कहा, हम मूल ढांचे पर काम कर रहे हैं, हम आपके अनुभवों और चुनौतियों से सीखेंगे, हम ऑनलाइन सीखते रहते हैं।
2: Learn from the experiences, the challenges. So,
1: एनटीसी के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में सेवा में मौजूद बुनियादी ढांचा 63 इलेक्ट्रिक बसों तक को चार्ज करने की अनुमति देता है। कई चार्जिंग स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं, जबकि बेड़े और नेटवर्क के क्रमिक विस्तार के सहयोग के लिए अन्य स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इस परिवर्तन की लागत के सवाल के साथ साथ मॉरिशस के यात्रियों और बस कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर भी चर्चा की गई। अंदरूनी परिवहन मंत्री उस्मान माउमेद बताते हैं, डीजल के दाम बढ़ने पर बस कंपनियों ने हमें पत्र लिखा और बस टिकटों पर फिर से गौर करने का आग्रह किया। ये सरकार का एक फैसला होगा। चूंकि मॉरिशस अधिक हरित गतिशीलता की ओर अपना परिवर्तन जारी रख रहा है, मंत्री उस्मान माउमेद याद दिलाते हैं कि अकेले एनटीसी की बसें सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के कुल CO2 उत्सर्जन का 31.6% हिस्सा है। उनके अनुसार ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बसों के बेड़े के विद्युतीकरण में तेजी लाने के महत्व को दर्शाता है।
0: विदेश स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर युद्ध रोकने के समझौते पर रविवार को ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। तेहरान ने इस समय सीमा पर असहमति जताई और उसका कहना है कि आने वाले दिनों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उधर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनके आगमन को लेकर भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दूसरी ओर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 710 हो गई है। और अंत में मौसम का हाल।
3: पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद भी ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 18 से 20 और अधिकतम 24 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइक्यूबिप में, लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइक्यूबिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी नसीसा करिम्बकसा, मिसिज बीबी नसीसा करिम्बकसा, जिन्हें सब लोग नसीसा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज रात के सात बजे उन्हीं के मकान लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइक्यूबिप से निकाल कर दफनाने के लिए बिगाहा का कब्रस्तान

Ajay Chaiga. Funeral tonight at 7. Prince of Wales Cinema Kasi Triolime. Prince of Wales Cinema Kasi Triolime. 65 साल की, 65 years old की, श्रीमती जेनेगी मुतु, पैदाइशी नाम पम्बियन, और जिन्हें सब लोग रागिनी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पति श्री रामास्वामी मुतु के घर प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासी त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। कॉम्बानन ग्रांबोआ में 46 साल के 46 years old के श्री महेश्वरनाथ सिंह सुंदर, जिन्हें सब लोग सचिन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती लीलावती सुंदर के घर कॉम्बानन ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रोबर्ट केनेडी स्ट्रीट रुन्यो मुरेल पेटी राफ्रेमें 81 साल के 81 years old के श्री भोरद्वाज सुकन, जिन्हें सब लोग लाल सुकन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निशी सुकन के घर रोबर्ट केनेडी स्ट्रीट रुन्यो मुरेल पेटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 49 साल के 49 years old के श्री विनय रघुबाव, जिन्हें सब लोग विकास के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉल रोड रुश्ते में 86 साल की 86 years old की श्रीमती परमावती पुरंग, पैदाइशी नाम दुबरी, और जिन्हें सब लोग परमावती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री तुलसी सीतल पुरंग के घर रॉयल रोड रुश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांगोप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। रॉयल रोड लावोंचिया में 43 साल की 43 years old की श्रीमती रमेश्वरी सीतल, पैदाशी नाम जोहल, और जिन्हें सब लोग मनीषा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनकी पति श्री मदन सीतल के घर रॉयल रोड लावोंचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। लापोत प्रोविडेंस पोज दे फ्लैक में 89 साल के 89 years old के श्री हरि सुकन, जिन्हें सब लोग गंतो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री नितेश सुकन के घर लापोत प्रोविडेंस पोज दे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 2 PM। रामपलमुआ मंडालबेया में 59 साल के 59 years old के श्री गोपाल श्यामलोल, जिन्हें सब लोग सूरज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सपहर के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती देवयानी श्यामलोल के घर रामपलमुआ मंडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 4 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 15 जून को पीतों आर्य समाज में शाम के 5:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

毛里求斯广播电台听众朋友您好，夜深人静，欢迎守候周日的音乐时光。首先请欣赏我的最爱。

刚才的几首歌有没有接住晚风的暖？是不是也发现最近的风也开始慢慢的变凉？接下来我们来继续欣赏歌曲。

机船友，今天的晚风歌单就到这里跟您说再会了。下次节目我们继续让晚风歌单陪您等风听歌，我们下周见。

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: श्रोतृंदर की हृदय पूर्वक नमस्कार।

0: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
1: ரேடியோ மொரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபி கா.
2: रजनी गंधा द रोज रात्रि रेडियो मॉरिशस वर रजनी गंधा.
3: नमस्कार श्रोत्यांनो, शेरी सोबत आपण आहात ते रेडिओ मॉरिशस वर रजनीगंधा कार्यक्रमात. मी तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करतो.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: श्रोताओं,

हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। कहते हैं जब मन में विश्वास हो तो प्रार्थना में भी अपार शक्ति का अनुभव होता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं श्रोताओं इसी शुभ विचार के साथ। शुरुआत जो है हम हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं। भगवान गणेश जो है विघ्नों को दूर करने वाले देवता है।

भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, जब मन में श्रद्धा होता है तब भय कम हो जाता है, धैर्य बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए अध्यात्म का मूल संदेश यही है कि स्वयं पर, अपने कर्मों पर और ईश्वर की कृपा पर विश्वास हमें बनाए रखना है।

भजले प्रभु का नाम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं, तो चलिए गीतों का ये सुहाना सफ़र, भक्तिगान का ये सुहाना सफ़र, इसे हम जारी रख रहे हैं। कहते हैं जहाँ विश्वास होता है वहाँ भक्ति खिलती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ मन को सच्ची शांति प्राप्त होती है।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम ये प्रोग्राम आपके लिए हम सजा रही है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कहते हैं विश्वास वह दीपक है जो अंधकार भरे समय में भी आशा की रोशनी बनाए रखता है। तो चलिए अगले भक्ति गान की ओर हम

श्रोताओं, विश्वास वह शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी जीवन को नई दिशा देती है। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम को हम समाप्त करने वाले हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक डोमिनिक को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मोहतरम सामीन, कुरान करीम इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है और ज़िंदगी के हर मामले में रहनुमाई फराहम करता है। कुरान सुनने या पढ़ने से दिल को इत्मीनान और रूह को सुकून मिलता है, गम व परेशानी कम होती है। हर हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है, इसलिए तिलावत इंसान के नामाए आमाल को नेकियों से भर देती है। कुरान की तिलावत से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। कुरान इंसान के ईमान को मज़बूत करता है और बुराइयों से लड़ने की

जहाँ कुरान पढ़ा या सुना जाए वहाँ बरकत, रहमत और फरिश्तों की मौजूदगी होती है। कुरान की तालीमात इंसान को हिकमत, समझ और बेहतर फैसले करने की सलाहियत अता करती है। कुरान इंसान के दिल को नर्म करता है और उसे अच्छा अखलाक, बर्दाश्त और पाकीज़ा किरदार सिखाता है। कुरान पाक कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। कुरान पर अमल करने से इंसान दुनिया में इज्जत और आखिरत में कामयाबी पाता है। सामिन मोहतरम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता करे। मौला करीम तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत अता करे और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब बख़ैर और खुदा हाफिज़।

0: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर।
2: सब संगतियों के जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात के 9 बजे तक और अभी से लेकर रात के 11 बजे तक के पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का और आज है दिमाग की रात। खूब गमत कर अब सा ढोलका बजाओ अब सा नाचो अब सा गाओ अब सा झूम अब सा अभी से लेकर रात के 11 बजे रे। नंबर वा थोड़ा पता बना काज जगह दे वो जगह वो सैंक पर सक बजा टेलीफोन करे और अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत सुने। जून के महीना बाद नाचब सा गावब सा झूमब सा तो लोग संगे संगे और ये पहल का गाना। जी हाँ पहल का गाना है सास बहू तुलसी। सास बहू क्योंकि सास भी कबू बहू थी है टीवी सीरियल के जाने रह पौके है। MBC टीवी पर आवत हरियाल भाई को जमाना में शाम के 6 बज के आधा से 7 बज के आधा ले तो गीतवा सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के सुनने वाले श्रोता लोग के नाम सास बहुत तुलसी। चला सुने

संगता लोग हमनी के पूर्वज जो है लोग भारत के ढेर मना जगह से आ रहा सर तो लोग के बुला रहा कि वो लोग जब मॉरिशस आयन सर तो माटी कोरियन सर तो वो लोग के माटी के नीचे सोना मिली ये खातिर वो लोग मॉरिशस आ रहा कोलोनाइजेशन के दौरान थोड़ा याद माना तो वो लोग आ रहा सर लोग के बुला रहा कि माटी मॉरिस के माटी जब कोरबत तो सोना मिली खातिर वो लोग आ रहा यहाँ पर ही पर जब अलन से तो लोग बहुत दुख सहलन सर अंग्रेज लोग बहुत दुख दिला को लोग के फ्रेंच लोग लोग के स्क्लाव बना के काम करे लग फजी से शान ने काम करे तलन सर बेचारा लोग और थोड़ा सुन पैसा मिला था इतना मेहनत करके मॉरिशस देश के आज इतना सुंदर बने ना हमने के पूर्वज हमने के बाप दादा लोग तो हमने के एंसेस्टर्स के हमने के पूर्वज के कबू नहीं छा भुला के तो एम जी आई कॉलेज में एगो म्यूजियम वहाँ पर ही तो खुद तो जाने के कि तुम्हारे पूर्वज लोग कहाँ से आलबा तो अपन कागज चीते पर नाक देने से वहाँ ले ले जाइए और वो म्यूजियम में जाके देखिए कि तुम्हार फॉर फादर्स तुम्हार पूर्वज कहाँ से आ रहा इंटरेस्टिंग बात बा कि सकबर जा जाने कि तो लोग के दादा के दादा के दादा कौन देश भारत के कौन जगह से आ रहा है तो लोग के फोटो सब वहाँ पर ही तो लोग के पहली दादी पहला दादा के फोटो बा तो एक दिन जाए जाए एम जी आई कॉलेज वहाँ पर ही मिजे बा जाके पूछा मिजेवा में कि जो हमने के पूर्वज लोग कहाँ से आ रहे ऐसे में चलो गीत सुनब दादा के कहानी सुनब दादी के कहानी और गीत चलावती से खासम खास संगीता अमीरन के नाम है गीत तोहर खातिर तोहर मामा तोहर भाई दान आजी बहन हेमा शांति वंशिका रक्षिता और तोहर सब परिवार के नाम है गीत चलावती से रीता सीतालू की रसकर बेटा शैलेश बेटा शैलेन बहु रानी बहु रेशमा पोती अनुष्का और पोती परी तो गीत तो लोग दादा के कहानी सुन दादी के कहानी।

एक से एक बढ़िया भोजपुरी की त्योहार प्रोग्राम भोजपुरी तड़का में दिमाग की रात के और रंगीन बनावती सब के संगे संगे नाच गाव। और जब भोजपुरी भाषा की बात करी जा सकता है, भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में MBC हमेशा से नंबर वन रहल। का टीवी से लेके और रेडियो से लेके हमने हमेशा भोजपुरी भाषा के प्रोत्साहित कर रही सर, काहे कि हमने के देश में ढेर कोई भाषा बोलेला, ये भाषा में बात करे रहन सा, ये भाषा में दिखे रहन सा, ये भाषा में कहानी दिखाला, कविता नाटक सब होला। हाँ, आजकल थोड़ा नौजवान लोग उतना ध्यान नहीं दे हुए रहन सा, पर हमने सब कब सब आपको आज करी हमने के जनजानों के हमने के जवानों के कि भोजपुरी जो भाषा है एक चेहरा हमने के आगे ले जाए के कहे कि वो भाषा के जब बोलब तब भाषा जीवित रहे, जब भाषा के नहीं बोलब तो वही भाषा मर चला। तो जानी रह सर न तब भोजपुरी भाषा बोलिया नैर सरमैया भाषा बताया कि हमनी के भाषा है, तो लोग के भाषा सब कोई की भाषा है। और भोजपुरी जन भाषा है तो ऐसा जोड़ी से ओकर में थी मुहावरा भी बा, एक्सप्रेशन सब रहे रहा ओकर में, कहानी तो जोड़ी जोड़ी कहानी बा भोजपुरी में का बोलबा भैया। और बेशक अगला गीत है पनिया बरसेला अविनाश लक्षण गीत गए थे वन। और गीत हमने चलावत ऐसा चाची ललिता कुशल अप्रहरण त्रियोले और चाचा आत्मा राम खातिर, साथ में

ये गीत चली सब हमने के भोजपुरी लवर्स के नाम जितना कोई भोजपुरी बोलेला भोजपुरी में लिखेला भोजपुरी में नाचीला स गावीला स झूमीला स तो जितना कोई भोजपुरी पसंद करेला तो ये गीत लोग के नाम साथ में है ये गीतवा चलावत स सुरेश की रोसेकर पत्नी खातिर रविराज है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर बेटा और सब बिछुक परिवार के नाम आप हवन लाल माटी से हमके साथ दे होता बहुत बहुत धन्यवाद हमके साथ दे खातिर बड़ी खुशी होता और है कि तो हमने चलावते ऐसा तो लोग खातिर भी जो हमने की बहुत प्यार से सुनाता हुआ अपन रेडियो के अपन कान की भिरी डाल के सुनाता हुआ जा तो चला सुने पनिया बरसेला

हाँ तुम तो अंदाज़ा लगा लेला कि बढ़िया बल से लगी तो नहीं रहा, माफ़ी चाहते हैं कि दूसरा गीत चल गए, संगे संगे चल जाए कोई बात नहीं, पर अब चली पनिया बरसेला। पर आजकल दिक्कत ऐसा पानी नहीं बरसता, और जहाँ तक कि आने वाला दिन में जो है पानी की जिसके विषय में कटौती हो सुनाल बा कहे कि है बरिश जो है तूफान नहीं आल, तो तूफान नहीं आल और पानी नहीं बरसल। गर्मी के मौसम में अभी चीबा पानी बरस के देसाम के महीना से लेके मौज के महीना ले, पर अचरज की बात है कि देसाम दे मिल वैंसैंक से जन दे मिल वैंसी से उतना पानी नहीं बरसल भाई खातिर हमने के जलाशय में पानी की मात्रा कम हो ली जाता, तो गजियाबाद में पानी कमती हो तो जिसके विषय में भी होकर लिफे पड़े रहा ये खातिर बोला तो इस जनता लोग के पानी गास्पिए नहीं करिए, पानी सही इस्तेमाल करिए, पानी के पानी खुले नहीं छोड़ दिया। कबू ढेर कोई टेलीफोन में बताता पानी हो भी नहीं खुलल बा, पानी हराहर बहता, कबो शादी में देख कोई गीत गावत हम देखें सब बाथरूम सिंगर बाप रे बाप हो जगह गीत गावत उनसे एक घंटा ले उनसे नहाए के सब पानी गास्पिए हो जाए, तो कहाँ से पानी है भैया, पानी जीवन है, जीवन पानी है, पानी से कुरों भी बने रहते दुग असर पड़ी, एगो पानी हमने के नहीं मिली पिए के और कुरों नहीं लेते कैसे अंधार में रह बजा, ये खातिर बोले थे सब पानी ज़ाया नहीं करे के पानी गास्पिए नहीं करे, उतना पानी नहीं बरसल बा जितना पानी चाहत बरसे के खातिर हमने के जाना सावधान रह के कहे कि जी अरे पानी जो है पानी से सब काम होला, पानी से खाना बनेला, पानी से नेतवायाज होला, पानी से कुआँ बनेला, तो लोग समझदार हो सर पानी गैस पिए नहीं करिए, सब पानी के सही उपयोग करिए जा। तो गीत वचन ही अविनाश लक्षण के गावल पनिया बरसी, आशा करे से पनिया ज़रूर बरसी है, गीत हमनी चलावत ऐसा खासम खास नवीन लक्ष्मण जी के नाम रहिरन रोज बिल्कुल सब परिवार खातिर, सेंटोबा SSS कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक के नाम, इमानुएल ऑंगचिल SSS कॉलेज जो मीबर्ग में बा वहाँ के अध्यापक वहाँ के रेक्टर स्टूडेंट्स के नाम, शास्त्री बनमाली है गीत और खातिर सुधीर जसवा है गीतोहर माँ राजकुमारी चिबुक लोंग राजा स्टीप नानो और प्रवीण भैरव है गीतोहर नाम, राजमन्ना की ओर से और सब परिवार के नाम, सावन और जिमी दुखिया है गीत के नाम और सब दुखिया परिवार के नाम, अविनाश लक्षण गया गीत पन्या बरसेला।

आज का वर्ल्ड कप फीफा 2026 चलता 11 जून से शुरू हो गल बा और ये वर्ल्ड कप के जो नशा है सब कोई पर छाल बा छोटा से लेके बड़ा लेके सब कोई बोलता ए किले की पु गए दो कौन पे के जीत हो हा 11 जून से 19 जुलाई ले चलते रही अमेरिका कनाडा में सब हुआ था और 48 टीम 48 देश भाग गए तो मैं कहाँ पहुँचू इतना और देश कर में भाग ले और फ्रांस बा कनाडा बा अंग्लेटर बा अमेरिक बा अब कौन पे के मिली तो बोले कि जीवसिल बा और आजकल मैगजीन सब बेचाता है वो मैगजीन है ना वर्ल्ड कप फीफा 2026 ओकर में सब पे बा और पे के अनुसार ओकर में फोटो बा जो है लोग के सगवा फोटो किन के कोले करे लेका लो खातिर एगो फन है हम नहीं जब कॉलेज जाता रिचा था एगो लीव कि ना तरीसा लीव हमें वर्ल्ड कप फीफा लिखा था लोकर में और सब पे वजह से ऑस्ट्रेलिया सब पे जन जन पे भाग दे लग बन कि वर्ल्ड कप फीफा में तब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा इंग्लैंड ये सब तो आजकल दिक्कत है कॉलेज में भी लड़का लोग पैसा रमासा था पर मैगजीन किने खातिर और वर्ल्ड कप फीफा 2026 हाई का जोश है वो एकदम अलग है और ढेर कोई माइटी पर भी जाते हैं सर एमबीसी पर भी बा आप सब एमबीसी आप डाउनलोड करें और एमबीसी के काउंटर में यहाँ पर ही अब जा तो थोड़ा बोलियन सा कैसे चहला तो एमबीसी आप अच्छी करे के और कितना छा पे करे के ताकि तू सकब एमबीसी आपके द्वारा ये सब मैच देखे ओए होए क्या बात है ऐसा जोली सी मार्ज में रहता है एमबीसी के एमबीसी आप में हम तो दले है और अयह जा एमबीसी के काउंटर खुला रहा फजीर के 7 बजे से रात के 7 बजे ले अपन संगे अपन आईडी कार्ड ले ले अपन पोताब ले ले अयह और आईडी कार्ड पोटा पर पैसा भी छेला और ढेर पैसा नहीं है थोड़ा बोले काट जगह दे हुई जगह जगह जगह पर कासों ने बिल पर सकब जैसो ने करे कितना पैसा छाने के कुछ कुछ धोखी मचाने के ताकि सकब अपन पोता आपके जरिए सब वर्ल्ड कप फीफा के मैच देखे अभी खातिर एगो गीत चले था लिवरपूल लोय होय होय नीरज गुप मधु गैले वन और गीत तो हम नहीं चलावती से सब संगत चालो के नाम मिस्टर साजू है गीत और खातिर साजू खुशी रह नाजे करे के गुब्बर का नाजिया है साजू मिस्टर साजू गंगू एदू प्रतिमा दीना व्यापेन अपाया मालिनी मेविशा है गीत तो लोग के नाम लिवरपूल जितना कोई खुशी रह रहा है वर्ल्ड कप फीफा देखे के और फुटबॉल खेले के तो है गीत तो लोग के नाम

भोजपत्र का प्रोग्राम चला था तलो के रेडियो पर, यानी कि रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर, रात के 9 बजे से रात के 11 बजे, रात है दिमास की रात 14 जून साल 2026। आज की रात तक गमटवा हो भी करी, और जब हमने ऐसे था खूब गमट होगा हों कि नहीं। और संगतिया लोग आजकल कोई आज कोई कोई की बात नहीं सहल जाला, सब कोई अपन अपन तरीका से जीला हों कि नहीं। कोई की कौन चीज़ बोल बता मूवी हो जाए, कोई की अच्छा भी बोल बता वो आदमियाँ बुरा मान जला का, जिन्हें कहीं आज के इंसान नहीं समझेला। आगे के ज़माना में जब कोई कोनो काम करता

निमन से नहीं होता कम हो तो बोला तलीसा को सुझाव दे तलीसा आपको कि बोल बात निया बोलेगा माइंड योर ओन बिजनेस मुँह पर बोल देवेला खातिर आज कोई के सलाह नहीं देवेला कहे कि सब कुछ चला लोग अच्छा से करेला पर इंसान से गलती होला सब इंसान से गलती होला खातिर हम मानीला अगर कोनो काम अच्छा से नहीं होलबा कोई हमने के समझावा था तो चाहेला लोग के बात सुने के कहे कि नहीं सुन बा कमा बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए हो कि नहीं तो ऐसे मैं बोल चला कि ऐसे ढेर थिएटर नहीं करे के कबू जब कोनो कौंसिल देवा था सुझाव देवा था तो सुझाव के अपने या और कमवा जोड़ी से हो जाए और अगला गीत नाच हो गाव हो कमर व डोलाव हो हम है गीत जन है संजय हरिजन के गावल गीत है और है गीत चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत चली अश्विन बच्चन जी के नाम रहेलन अखबिया जी पोस कर भाई कर सब बच्चन परिवार के नाम उदय धनी राम वैसे हवन कर पत्नी बेटा पतु बेटी दामाद किशन गुड़िया भग्गी तोहर खातिर भी बहुत बहुत प्यार के साथ प्रीतम राज जिमिला और सब जिमिला परिवार खातिर एक गीत चली और किशन गुड़िया बरा जो नाचते हमने के संगे संगे और फिर है गीत हमने चलावा थी सा वो सब संगतियालो के नाम जे कोई भोजपुरी गीत पर भरा जोर अभी नाचत वंश गावत वंश झुमत वंश कमरवा डुलावत वंश और है गीत चली नाच हो गाव हो कमरवा डुलाव हो है गीत चलावत इस प्रशांत की रस्य कर बहन शिल्पा कर बुफे कर माँ राधा और है गीत चली सब सी बालक परिवार के नाम चंपा और देविका रामगतिया लोगों को बड़ा जोर नाचता हमने के संगे संगे गीता तलो खातिर और तलो के घरोला और लड़का लोग खातिर सब रामगतिया परिवार के नाम वंदना गुमानी गीत तोहर और से तोहर माँ और सब गुमानी परिवार के नाम राविश मंडो भी बड़ा जोर नाचता नाचा हो गावा हो कमरवा डुलावा हो चल एक साथ सबको नाचे

0: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: गमक धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक।
3: Music.

रात के 10 बज गए बा और 1 घंटा बा तो लोग के साथ बिताए का देर भोजपुरी टर का कार्यक्रम और जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ली। और आजकल दिखिला से ढेर कोई फैशन फॉलो करे था, अच्छा बात बा, ढेर कोई अपन अंक जोली बड़ा खातिर कॉन्टैक्ट डाले लें सबके लॉन्थी बोला ला। तो कॉन्टैक्ट डाले से पहले को ऑप्टिशियन की सलाह ले लिया कि तो हर अंक के कौन नीमे हो जस्ती अच्छा रही अपन से कॉन्टैक्ट इनके नहीं दलिया है गो डॉक्टर से गो डॉक्टर की सलाह से। तो हर प्रकार के कॉन्टैक्ट बा जैसे हॉनी नीला हरा ब्राउन आदि आदि जो आई कॉन्टैक्ट है जो कॉन्टैक्ट डाले जैसे अंक में जोली देखी खातिर वो अंक सुंदर बनावेला। नीली नीली नजरिया हाँ तो लामोद है भाई काहे दुआने में डाले कि का तो जैसे ढेर कोई बार में कोई लौंग डालेला कोई पियसिंग करेला ढेर कोई मेहंदी डालेला तो है जो है कॉन्टैक्ट ये आँख में डाले ला दोनों तरह से पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों डाले लें से पर चेहरा एगो ऑप्टिशियन एगो डॉक्टर की सलाह पर कि तोहर आँख के कोनी में वो जस्ती थी। अब दीपों हाँ की तलों के रंग कैसे बा अब दीपों हाँ तो कौन कुलिया के कॉन्टैक्ट हो संग जगह सांवला रंग के हवा तो दूसर कुलिया के कॉन्टैक्ट से भी कर बा। अब गोरा रंग के हवा तो दूसर कुलिया के हर प्रकार के कॉन्टैक्ट रहेला। तो आँख में कॉन्टैक्ट डाले से पहले ऑप्टिशियन के देख लिया तब कॉन्टैक्ट वा डाल के नचिया नीली नीली नजरिया है कि तो चलावत इस निशान सिंह चुबा के नाम और पत्नी बेटा बेटी तमादा सब चुबा परिवार के नाम उमा जगनायक तो रहना निष्कालिए है गीत तो बेटी दृष्टि और कर दामाद बहादुर और सब जगनायक तो और बहादुर परिवार के नाम नीली नीली नजरिया।

0: You're listening RM3 Radio.
1: 7 days a week, 24 hours a day.
2: Live.
1: This is
3: Radio Marxis.
4: Radio Marxis, Radio Manoranjan, Parchalata, Karkram, Bhojpuri, Terka. टरका भोजपुरी के टरका क्या बात है। और बेशक अभी रात के ढेर को हमने की सुना था बहुत बहुत प्यार से और अमृतन सर प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम चकाचक वह सब कहीं नाचता है। संगत लोग हम मौके कल आज कल एक ढोल कहते रीतों कर था फजीर के ठंडा करेला दिन के गरम करेला और रात के ठंडा तो ठंडा गरम के जो मिश्रण है इसे आजकल ढेर कोई मलद हुआ था सर्दी खांसी जुकाम तो जितना सकब पनफोते जे करिया त्रिको जाके तुकित पुल पासकोले सब दल ले रही कभी कभी तू घर से निकले ला घर तो जहाँ रहे ला वहाँ से केला थोड़ा गर्म कर तो ही पर जाइब मौका बगल रेजवी बगल तहाई सैंपिया बगल तहाई सब ठंडा के था आप लोग आ गाँव भाई सब जगह में ठंडा करे रहा तो तू फजीर के घाम देखबा तो नहीं सोचा कि हाँ दिन की गर्म करी नहीं कभी कभी घामा एक कुछ बुझाला फोन हो जाला और ठंडा मौसे करे रहा। और अभी बुझा था मंगल से ग्वांटी साइक्लोन आई मॉरिशस के पास और है मंगल से काफ़ी ठंडा करी मंगल बूझ भी फेरे सकेला दो तीन डिग्री से तापमान में गिरावट आई तो ये खातिर ठंडा के मौसम सर्दी के मौसम अपन अपन संगे अपन जैकेट अपन त्रिको हमेशा ले रही है कुछ छत्ता ले रही है कहे कि कभी कभी एक पानी बरसे लगे रहा हो कि नहीं। और बेशक यहाँ पर यहीं से अमनी तुल के साथ देख खातिर और अगला गीत खोज खोज के जोरी गीत है गीत भोजपुरी बॉयज कुणाल बाबूलाल गए थे वन बहुत बहुत प्यार के साथ और यही गीत हमने चलावा थे इस रंभाजी जुन रहे स्विट्जरलैंड गीत तो कर खरुला को तीन को लेकर लुखातिर अजय और पूनम

चिंताराम हवंजा ऑस्ट्रेलिया में, अजय और पूनम उनकर बेटा बाल गोपाल मॉरिशस में, उनकर बहन सलोनी, फिर माँ इंदिरा चिंताराम और हई गीत हमनी चरावती सा दीपा तिवारी दुखित के नाम, माँ प्रहेलन कनाडा में उनकर पति केविन उनकर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम, तीना बुदना रहेन गाँव बे तीत तोहर खाते तोहर पति तोहर दुगो बेटी और सब बुदना परिवार के नाम भी, और जितना कोई कभी रात की नींद नहीं लगता गेट थलो के नाम भी। अरे भाई नींद नहीं लगता करवट बढ़ रहा था इधर या उधर कोई बात नहीं, हमने हाई सा थलो के संगे संगे रात के 11 बजे रही। चलो गीता सुने खोज खोज के।

ओबेसिटी यानी कि मोटापा ये एगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बा दुनिया भर में। और जब इंसान मोटा रहेला तो ढेर मना बीमारी ग्रसित करेला, जैसे कि टेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। तब मोटापा से हमने के शरीर भी भारी हो जाला। मोटापा कम करे खातिर रोज के छह व्यायाम करे के एग्जरसाइज करके नहीं बोलिए कि ले तो नहीं मिलेगा, एक दिन में 24 घंटा बा। अक्षय कुमार खला एगो रिपोर्ट में बोले रहल, एगो टीवी रिपोर्ट में, कि सब कोई के बहन का खेतों मिलेगा। नहीं बोलिए कि एक घंटा थोड़ा नहीं मिला था एग्जरसाइज करके, चेहरा समय खोजे के एग्जरसाइज करिए, कसरत व्यायाम करिए, कमती खाइए और एक किली भर खाइए। ईट ए बैलेंस डाइट, गा के चीज नहीं खाइए, जैसे लाभियान होश है, चीनी नमक कमती खाए के है, गोश उस ढेर नहीं खाए के, जस्ती मच्छी सकबा खाए, अगर नॉन वेज हो वेज हो तो अच्छा बा, सब वेज सकबा खाए। पर ये मोटापा से जरा दूर रहे के कहे कि आजकल देखीला सा एगो ट्रेंड वाले का लोग खाली मोबाइल के आगे या टीवी के आगे बैठल रहे सा और टक टक टक टक टक टक होला दिन भर। त एक बगल मोबाइल में चलता, एक बगल चिप्स खाते वन सा।

अस्फुट खाता हुन्छ त्यसले कालो का हो भैया एकातिर बोलिरहेछ चहेला एको व्यायाम कुनो न कुनो व्यायाम जुन छोरा पसिनबाजेसी मर्निङ वक जगिङ साइक्लिङ नाटासँग कुनो बिल एक्जर्सिस चहेला गरेकी यी मोटापासे मुक्ति पाइ खातिर और बेशक स्वास्थ्य बात सब कुछ बा हेल्थ इज वेल्थ अगर स्वास्थ्य नहीं बा भैया तो कौन से चीज़ की हाँ हाँ कि नहीं तो हमने की काम हम लोग समझा कि अब तो लोग देखिया जाए अगला गीत जोली छोकरी से हम प्यार करीला कुणाल हिरीलाल गीत आ गई हवन और है गीत हमने चलावत इस प्रेम जी के नाम का संगत या अशोक खातिर प्रेम और अशोक बेस्ट फ्रेंड्स हवन सा और ये बखत हमने के सुना था सत्यम सुबोल मे बग से गीत और खाति सत्यम सुबोल गीत और खाति तोहर पत्नी तोहर लेकर सब सुबोल परिवार के नाम वीना कुपुसामी है गीत और खाति तोहर घरोला बेटी दामाद बेटा पतु और सुरमा दुखित है गीत और खाति तोहर घरोला तोहर दुगो बेटी नबीहा और बेगो बेटी खातिर साथ में है गीत चलावत तेईस विश्वानी बाबूलाल जुन रहे लागोजा है गीत थोरो नाम चले गीत सुने कुणाल हिरीलाल की आवाज में मन करता नाचे की गावे की कमरवा डुलाए की गपट करके जलसा करके तमने संगे नाचा रात के 11 बजे रे

संगते लोग जनद मी थितर रहेला अनपढ़ रहेला लोग के समझाए के बड़ी मुश्किल रहेला तू कितना भी बात प्यार से लोग के बोलबा पर लोग बिल्कुल नहीं समझे लंसा तई खातिर बोल जला कि दुनिया में सब कोई के चेहरा ज्ञान प्राप्त करे कि लिजकाशियों जो है बहुत जरूरी है जो ज्ञान है तो पढ़ लिखब तो कुछ जानब अपन जिंदगी में अब जब पढ़ लिखल नहीं रह तो कोई भी सकी थोड़ा क्यों नहीं कर दी पढ़ल लिखल रह तो लामोताज है कि कोई नहीं सकी थोड़ा क्यों नहीं करे लामों गैला गोलित मिलल लितवा सकब पढ़े एगो फॉर्म सकब भरे और पढ़ल लिखल हो कि ढेर लामोताज बा आगे के एगो जमाना रहा जहाँ पर माँ बाप लोग बहुत साल पहले की बात बोलते हैं 50-60 साल पहले ढेर माँ बाप लोग खाली छोकरा लोग के पढ़ावे पर धीरे धीरे जब स्वतंत्रता होल हमकी देश के और सर शिव सागर राम गुलाम आइलैंड तब बोलक नहीं सब कोई के चेहरा पढ़ाई लिखाई के छोकरा छोकरी दोनों बराबर एगो जमाना रह जब लड़का होता था छोकरा के बोलते साफ को मिलो सा या छोकरी दे जाए लो वो जमाना चल गए भैया आजकल छोकरा छोकरी दोनों फो मिलो है और अपन निकालो के पढ़ैया लिखैया कहे कि जैसे हम बोली कि पढ़ा लिखल नहीं रह तो बहुत मुश्किल बा जिए के खासकर आज के दुनिया जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बोलबाला बा एआई के बोलबाला बा चेहरा पढ़ल लिखल रह के ये खातिर हमने की सरकार ढेर मना रामोताज देवेला सब कोई के पढ़े लिखे के हाँ कि नहीं तई रामोताज के भरपूर तू फायदा उठैया पढ़िया लिखिया बड़ा आदमी बनिया और ऐसा में वो गीत सुनब जा बहुत ही प्यारा सन गाना मीरा मोहन गैले वन मुर्गा मिया आहा हा बहुत ही प्यारा सन गाना है हाँ गीत हमने चलावती सुमन जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ आशा जानू हवन कहते से थैंक यू जी और भाई हरीश बोबासे से आशा जानू और कर सब परिवार कर माँ कुमारी शुभम कर दीदी आरती कर जीजा जी और सब परिवार भाई हरीश बोबासे से कर सब संगतियालो के नाम है गीत चलावती से बहुत बहुत प्यार के साथ नोवेल फोन से हवन चाची प्रभावती गीत संगीता की ओर से चाची प्रभावती लोल खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और हे गीत हमने चलाव जाऊ सब संगत्यालो खातिर जो खुशी रहा मीरा मोहन की गीत सुने के आज मीरा मोहन हमने के बीच नहीं बा पर कर यादें हमने के साथ बा हमके याद बा मीरा मोहन जब MBC आ रहा था संगे संगे काम करते सर हम रली मीरा मोहन फिर किशोर खिमिया भोजपुरी प्रोग्राम करते सर बत्या तरी सर तेगो संगत्या रहल मीरा मोहन हमर हम के याद करी रहा भगवान का आत्मा के शांति दे तो चले गीत सुनब जा मुर्गा मियाँ का बोला था आज के रात बाप रे बाप कुकू चलो सुनब जा

समाचारों बोलता कैसे बुझाता हमने के कार्यक्रम में आशा करते जा कि तो लोग हमने के संगीत संगीत खूब गमत कर तो सर गीतों के मजा ले हुआ और ऐसा ऐसा गीत चलेला तो बड़ी अच्छा लगेला। अब जरा बात कर सर व्रत के बारे में। व्रत धारण करला अच्छा बात है। जो दिन हमने व्रत रखी रहा सर उस दिन बिसाइन नहीं खाई रहा सर उस दिन वेजिटेरियन खाई रहा सर या फिर फल या कोनो मीठा खाई रहा सर तो व्रत रखना से कौन सी होला हमने के शरीर के शुद्धि होला और जो हमने की ऑर्गन बबीते में हमने के लिए फुआ हमने के लिए के हमने के एंटिस्ट हैं तो जब व्रत रब और फजी से सान ले तो ये हमने के प्योरीफाई करेला मतलब हमने के शरीर के तो अच्छा है। एगो है रिलीजियस ओकर सिग्निफिकेंस कि भगवान के याद करी रह सब भगवान के नाम रही सब भगवान के जपी रह सब तो एगो है रिलीजियस एगो है फिजिकल तो दोनों बराबर दोनों लामोताज है कि फिजिकल रूप से हमने के थोड़ा सुन हमने के शरीर में से जो टॉक्सिन है वो सब दूर हो लगा है कि ऐसे तो सब कुछ खाई रहा सा पर जब व्रत रही रहा सा जैसे एक बार दुर्गा पूजा होला तो नौ दिन ले या महाशिवरात्रि ले एक महीना ले कायम रही रहा सा तो ओकर एगो एगो एगो इम्पोर्टेंस है व्रत रखे के। और कब व्रत रखते रखते देख बेर कोई विजिटॉय हिल जला ईमी बा हैं और बोली रहा सर कि विजेताओं जो नकर जे को विजेताओं बनेला और ढेर लाभ बा लाभोताज बा और दिखा तो यूरोप में अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रेलिया में बहुत से यूरोपियन लोग आजकल विजेताओं बनते बन सकते सबको क्या परम्पर पसंद है हम नहीं बोलते विजेताओं हैं लेकिन ढेर कोई खुशा गोश्त मच्छी खाए कि ढेर कोई खुशा विजेताओं सक सबको क्या अपन अपन चॉइस बा पर बोले चाहते कि जब विजेताओं जब ढेर कोई हेलेला तो लोग बोले से ढेर मारा मोहताज बा ई लोग के मान्यता है। अभी कहते सुनब जाए गो जोली गाना राधन राम साह और शर्मिला रघुनाथ के गावल गीत है गीत प्लेन मायों के डॉक्टर राकेश रामचंद की ओर से ओकर पत्नी आशा कुड्डू को बेटा और सब रामचंद परिवार के नाम जो नयन सब प्लेन मायों स्वीटी और स्विनी है गीत और खातिर मिस्टर चाटो गीत और खातिर नतराज रामकोरन हवन ओकर भाई अरुण ओकर बही

हीन और माँ बाप और सब रामकोरन परिवार के नाम रहे लंजा न्यूविल फ्रांस। और ग्रेड सेवन रेड के हमारे सब स्टूडेंट्स के नाम जोंजालन सर सेंट ओबे एसएसएस कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के ये सब लोगों के नाम जो बीए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एमए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू और जो पीएचडी फ्रेंच में एनरोल हवन सर हमने के सब लेक्चरर प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लोगों के नाम लुगारू

Sangatia Lug Shweta Babulal aur Kishore Kimia ke gawal geet O Balma ke sange Bhojpuri Tadka program yahi par hi samapt hua tha kuch hi seconds mein kuch hi minute mein raat ki 11 baj jaye raat ke 9 baje se abhi humne ke saath dila ja bahut bahut dhanyawad log ke phone ko uska dil bahut shukriya theek 11 baje sun baje sunari pal karyakram aur raat ke 12 baje se kal fajr ke 6 baje non stop filmi tarane humne ke log ki mulaqat yahi tak raha और एक मुलाकात तक अजय प्रताप सिंह सितालू की इजाजत हमने की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस हमने की तलुक की मुलाकात होती रही रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर बाय बाय

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। स्वीकार कर लीजिए, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बड़े प्यार से सारे म्यूजिक लवर्स का हम स्वागत करना चाहेंगे इन सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: कहो ना।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
2: कभी रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि घर का एक हिस्सा था। आज भी वही एहसास लेकर हम आपके साथ हैं, लेकर आए हैं वो गीत, वो पीढ़ियों को जोड़ने वाला, ऐसे खूबसूरत नगमे जो चुन चुन कर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में, आपका सुनहरे पल। आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो तो ये अगला नगमा सीधे हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।

एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए ये अगला गाना हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।

एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए ये अगला गाना हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस। आज का हर नगमा उन लोगों के नाम जो म्यूजिक को सिर्फ सुनते नहीं उसमें अपनी जिंदगी ढूंढते हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये महफिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मॉरिशस और गिनेश आपका साथ दे रहे हैं। कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो बस आराम से एंजॉय कर लीजिए ये अगला नगमा।

पुरानी बॉलीवुड के गीतों में जो मिठास है ना दोस्त, वो हर जेनरेशन को पसंद आ ही जाती है। तो चलिए इसी मिठास के साथ अपनी शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं। वैसे कभी किसी गीत ने आपको रुलाया है? सोचो, कभी किसी धुन ने आपको हंसाया है? आज के ये गीत आपके दिल के हर जज्बात को फिर से जिंदा कर दें।

आंखें जरा बंद कर लीजिए और इन गीतों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पलों को याद कीजिए। शायद आज का कोई गीत आपको किसी अपने के और करीब लेकर आए, और हम दिल से उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए आपके लिए। तो चलिए जी, सुरों में खो जाइए और गुनगुनाइए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं, दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का बस स्वागत करते हैं दिल से इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

हम दिल से उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आपने दिल से एंजॉय किया और आपकी यादों को आपने याद करते करते बस मुस्कुराते रहे थ्रू आउट दी होल शो। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। आप हमें प्यार से इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के शो में। शुभरात्रि, शब्बा खैर।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो